0: छोड़ूं?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है,
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है।
3: पहले तुम,
4: पहले तुम,
3: पहले तुम,
4: पहले तुम,
3: पहले तुम,
4: तुम,
3: तुम,
4: तुम,
3: तुम,
4: तुम,
3: तुम,
4: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
3: अच्छा मैं कहती हूँ

0: ठीक 5 बज रहे हैं।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आपकी सुबह की शुरुआत हुई होगी एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि आज है संडे, वीकेंड का दिन, आराम का दिन, अपनों के साथ समय बिताने का दिन, और सबसे खास बात, अक्टूबर महीने का पहला वीकेंड। लेकिन देखिए ना, वीकेंड की भी एक छोटी सी कहानी है। शनिवार आया अपनी सारी मस्ती लेकर और अब आ गया है संडे, यानी वीकेंड का आखिरी दिन। तो क्यों ना इस दिन को थोड़ा और खूबसूरत बनाया जाए, थोड़ा और जिया जाए और हर पल में खुशियों के रंग भरे जाए। मैं हूँ आपकी अपनी ही रिया आपके साथ और आप सुन रही है चिलैक्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती। और आज की सुबह का आगाज हमने किया एक ऐसे गाने से जो अपने आप में अलग ही जादू रखता है, पर्दा हटा दो, दैट्स ब्यूटीफुल वन, आशा जी और रफ़ी साहब की लाजवाब आवाज़ पे, क्या बात है। जब इन दोनों सुरों का साथ मिलता है तो दिल खुद ब खुद गाने लगता है। और अभी तो सुबह शुरू हुई है, आज के पहले घंटे में हम लेकर आए हैं एज यूजुअल आपकी सदाबहार गाने, वो नगमे जो समय के साथ काफ़ी पुराने नहीं होते, कुछ ऐसे गाने जो दिल को सुकून देंगे, कुछ जो चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे और कुछ जो आपको ले जाएंगे यादों की उन गलियों में जहां से लौटने का मन ही नहीं करता। तो चाहे आप अपने घर में चाय बना रही है, मॉर्निंग वॉक पर निकली हो, किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही हो, या बस कंबल में आराम से लेटे हुए रेडियो आप सुन रही हो, आपकी कंपनी में तो हम है। और इस खूबसूरत सुबह को हम बनाएंगे और भी हसीन अच्छे गानों के साथ, अच्छी बातों के साथ। चल कीजिए, रिलैक्स कीजिए और अपने संडे को दिल से एंजॉय कीजिए। स्टे ट्यून्स, क्योंकि रिलैक्स है तो संडे की सुबह में एक अलग ही बात है। नॉट टू फॉरगेट आपके डेडिकेशंस मैसेजेस ऑन 5499-1294।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: वेल अक्सर लोग सोचते हैं कि संडेज के दिन हम डेट से उठते हैं, तो हमने भी यही सोचा है कि आज तो उतने सारे लिसनर्स नहीं होंगे, लेकिन हम गलत थे क्योंकि सवेरे सवेरे हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं और उठते ही लगा देते हैं फुल वॉल्यूम पे रेडियो एंड एंट्रो करते हैं ये सदा बहार गाने। क्या है कि ये गाने आपको डाउन द मेमोरी लेन ले ही चलते हैं, तो कई यादें ताज़ा हो ही जाती है। तो चलिए आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ते हैं एंड व्हाट्सअप की ओर। पहले टेशन जी, वेरी गुड मॉर्निंग प्रणाम आपको एंड सभी को विश करते हैं टू हैव अ वंडरफुल डे। लगता है कि आज आप घर पर ही होंगे, सो नो काम, छुट्टी का दिन, आप एंजॉय कीजिए परिवार वालों के साथ, अपनों के साथ समय बिताइए। एंड यहाँ पर देवानंद जी, नमस्ते आपको देवानंद जी, हैप्पी संडे सभी को विश करते हैं एंड कह रहे हैं कि उठ चुके हैं टू लिसन टू दिस लवली प्रोग्राम चिलैक्स, थैंक यू सो मच। और डेडिकेट करते हैं नेक्स्ट गाना आपके लिए, बबीता, दर्शनी, क्रिस्टी, नकुल, अर्शया एंड रिया। और राइट, जरूर हम डेडिकेट करेंगे नेक्स्ट ट्रैक आप सभी के नाम। एंड हमारे साथ अब्दुल और सारा बानो जी है जुड़े हुए, गुड मॉर्निंग आप दोनों को। और अपने दोस्त नसरीन, शकील और केशव के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं नेक्स्ट गाना। वी गॉट अ ब्यूटीफुल वन जो हम नेक्स्ट चलाने वाले हैं। और सवेरे सवेरे ऐसे ही गाने बहुत भाते हैं। गुड मॉर्निंग रिया, गुड मॉर्निंग आपको भी दीपक। डेडिकेट करते हैं नेक्स्ट गाना टू विपिन, प्रवेश, बाविनी, एंजल एंड विदिता, इन सभी के नाम जरूर, क्यों नहीं, संडे का दिन है, डेडिकेशन जारी रखना ही चाहिए। सो आप सभी के लिए, आप सभी के दोस्तों के लिए, अपनों के लिए, आप खुद के लिए हम जरूर डेडिकेट करेंगे एक ब्यूटीफुल गाना। सो एंजॉय कीजिए आप चिलैक्स रिया के साथ।
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: कहते हैं कि कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। एक धुन बजते हैं और अचानक हम पहुंच जाते हैं अपने बचपन में। याद आता है वो पुराना घर, वो आंगन, वो रेडियो जिसके आसपास पूरा परिवार बैठ जाता था। याद आती है संडे की वो सुबह जब घर में नाश्ता बन रहा होता था और बैकग्राउंड में बज रहे होते थे फिल्म के खूबसूरत गाने। किसी गाने से पहली मोहब्बत याद आ जाती है तो किसी से दोस्तों के साथ बिताए हुए दिन। कोई गीत हमें किसी अपने की याद दिलाता है तो कोई हमें जिंदगी के उस दौर में ले जाता है जहाँ जिम्मेदारियाँ कम और ख्वाहिशें ज़्यादा हुआ करती थी। और यही तो कमाल है सदाबहार गानों का। जमाना बदल गया, सुनने के तरीके बदल गए, रेडियो से लेकर मोबाइल फोन तक का सफर हमने देखा, लेकिन इन गानों का जादू आज भी वैसा ही है। किशोर कुमार जी की मस्ती, रफी साहब की आवाज का जादू, लता मंगेशकर जी की मिठास, आशा जी का अंदाज और बहुत सारे और, इन सब ने हमारी जिंदगी के न जाने कितने हसीन लम्हों को अपनी आवाज दी है। और आज रिलैक्स के पहले घंटे में हम उन्हीं यादों को फिर से जी रहे हैं। आप ही सोचिए कौन सा ऐसा गाना है जिससे सुनते ही आपको अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। वो गाना जो आप कितनी भी बार सुन ले दिल नहीं भरता। अपनी पसंद का वो सदाबहार नगमा याद रखिए और

0: जब भी मौका मिले हमें जरूर बताइए, हम नंबर आपको बताते रहते हैं 5499-1294 पर आप हमें जरूर बता सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, क्योंकि गाने सिर्फ धुन और बोल नहीं होते, कभी कभी वो हमारी जिंदगी की डायरी के वो पन्ने होते हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। तो यादों का सिलसिला हम जारी रखेंगे और वो भी खूबसूरत गानों के साथ जो हम एक एक चुनकर लाए हैं आपके नाम। तो चलिए नेक्स्ट ट्रैक सुनते हैं एंड वी विल बी बैक आपके मैसेजेस के साथ।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: यहाँ पर हमने एक बर्थडे मैसेज देखा है एंड पापा धनम दुलम का जन्मदिन है सो उनको हम विश करते हैं वेरी हैप्पी बर्थडे बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम पत्नी गीता दुलम और आपकी दो बेटी है पूजा और मनीषा दामाद है सूरज एंड राजेश एंड टीन ग्रांडसन भी है सिद्धार्थ मिहिर एंड भीमेश दैट्स ब्यूटिफुल नेम एंड हम भी हैं यहाँ पर विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे आपका दिन बहुत अच्छे से कटे हम यही विश करते हैं विदुषा हमारे साथ सेबास्टोपोल से जुड़ी हुई है विशिंग एवरीवन हैप्पी संडे मॉर्निंग आपको भी वेल कह रही है कि यस्टरडे यू हैड जीविक पितर का फास्टिंग फॉर माय चिल्ड्रन डे जी हाँ हमने सुना था कि कल कईयों ने ये व्रत रखा था एंड यहाँ पर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं फॉर ब्रेकफास्ट एंड लंच और राइट आपको हम मुंह खाश कहते हैं आपके पति विमल ऑलरेडी आठ पर कभी पहुँच गए हैं ऑलरेडी मुंह धीरे ही चले जाते हैं काम पर मुंह खाश जो लोग सवेरे सवेरे चले जाते हैं उठते ही है ये बहुत बड़ी चीज़ है और आप उठ जाते हैं सो दैट्स अ वंडरफुल आप कहाँ पर पहुँच गए हैं विमल आपको बुकुराज और बहुत सारा प्यार आपकी पत्नी की ओर से एक गाना आपके लिए और ज़रूर आपके बच्चों के लिए एंड आपने जो गाने की रिक्वेस्ट की है ये हम ज़रूर चलाएंगे यही गाना हम चलाएंगे आपके नाम और आपके पूरे परिवार के नाम

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: राइट घड़े मिलाते चलिए पौने 6 बज रखे हैं और समय हो चला है आपको बताने का कि आज आपका दिन कैसे कटेगा क्योंकि इट्स योर राशि टाइम। शुरू हम करते हैं
2: एरीज मेष राशि।
1: आज का दिन आपके लिए उमंग और उत्साह से भरा रह सकता है। किसी अपने से अच्छी खबर मिल सकती है आपको जिससे मन प्रसन्न होगा। परिवार के साथ समय बिताने और पुरानी यादें ताजा करने का अच्छा अवसर है। लकी नंबर है आज आपका 3।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज मन में शांति और सुकून बना रहेगा। घर परिवार के साथ बिताए गए पल आपको खुशी देंगे। यदि कोई काम कई दिनों से अधूरा है तो आज उसे पूरा करने का प्रयास जरूर कीजिए। पैसों के मामले में सोच समझ कर कदम बढ़ाए और अनावश्यक खर्च से बच के रहे। लकी नंबर है आज आपका 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज आपकी वाणी और समझदारी लोगों का दिल जीत सकती है। किसी पुराने दोस्त से बातचीत होने की संभावना है जिससे मन प्रसन्न होगा। अपने विचार दूसरों से के साथ आप जरूर बात सकते हैं लेकिन किसी की बात को बिना समझे कोई निष्कर्ष कोई डिसीजन ना ले। आज कोई नया विचार आपके मन में जरूर आ सकता है। लेकिन नंबर है आज आपका 5।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताने से मन को खुशी मिलेगी। यदि मन में कोई चिंता है तो उसे अपने किसी करीबी से बांटने से आपका मन हल्का हो सकता है। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना बेहतर होगा। लेकिन नंबर है आज आपका 2।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और आप पूरे उत्साह के साथ अपने काम पकड़ पाएंगे। किसी पुराने प्रयास का अच्छा परिणाम मिलने की आशा है और परिवार के लोगों की सलाह आपके लिए उपयोगी हो सकती है। लकी नंबर है आज आपका 1।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आज का दिन अपने कामों को व्यवस्थित करने और अधूरे काम पूरे करने के लिए अच्छा रह सकता है। किसी छोटी सी बात को लेकर अधिक चिंता न करें। हर समस्या का समाधान धीरे धीरे निकल सकता है। लकी नंबर है आज आपका 5।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: आज आपके जीवन में प्यार और मधुरता बनी रहेगी। किसी प्रियजन के साथ दिल की बात साझा आप जरूर कर सकते हैं और अगर किसी से मनमुटाव चल रहा है तो पहल करके उसे दूर करने का प्रयास आप जरूर कर सकते हैं और घर का जो वातावरण है ये बहुत ही सुखद रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 6।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बच के रहे। अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें और दूसरों की बातों में से विचलित ना हो। परिवार का सहयोग आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और यदि कोई पुराना काम अधूरा है तो उसे पूरा करने की दिशा में कदम आप जरूर बढ़ाएं। लकी नंबर है आज आपका 9।
2: सजिटेरियस धनुराशि।
1: आज का दिन नई उमंग और प्रसन्नता लेकर आ सकता है। कहीं घूमने जाने या परिवार के साथ कुछ स्पेशल समय बिताने की योजना बन सकती है आप बना सकते हैं और आपके मन में कुछ नया सीखने या करने की इच्छा जाग सकती है। अपने उत्साह को बनाए रखें लेकिन किसी भी काम में अपनी क्षमता से अधिक बोझ न ले। लकी नंबर है आज आपका 2।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: आज आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाने का प्रयास करेंगे। हालांकि कामकाज के साथ आपके आराम के लिए भी समय निकालना आवश्यक है। परिवार के किसी सदस्य की से अच्छी सलाह मिल सकती है आपको और धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें और सोच समझ कर आप खर्च कीजिए। लकी नंबर है आज आपका 8।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: आज आपके मन में नए विचार आ सकते हैं और कुछ अलग करने की इच्छा होगी। दोस्तों या परिवार के साथ बातचीत से आपको नई

0: प्रेरणा मिल सकती है। किसी भी नई योजना को आगे बढ़ाने से पहले उसके सभी पहलुओं को आप अच्छे तरीके से विचार कर लीजिए। दूसरों की सहायता करना अच्छी बात है, लेकिन अपने समय और मन की शांति का भी ध्यान रखिए। लकी नंबर है आज आपका 4।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज आपका मन भावुक और कल्पनाशील रह सकता है। अपनों के साथ बिताए गए पल आपको विशेष खुशी देगी। किसी पुरानी परिचित से बातचीत होने पर पुरानी यादें ताजा हो सकती है। मन में चल रही उलझने को शांत करने के लिए थोड़ा समय या स्वयं को दीजिए। लकी नंबर है आज आपका 7। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की राशि आपके नाम। आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा जाए। चलिए तो रिया की ओर से आपको शुभ दिन और शुभ रविवार।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
3: RM2 Radio Musti.

0: वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को सुप्रभात घड़ी मिलाते चलिए सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का तो आइए इसे हम अभी के साथ है सुनते हैं नमस्कार आपको अभी
1: नमस्कार रिया श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है ये बात बार बार दोहराई जाती है कि हमारे जलाशयों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है मोहवाकवा में पानी का स्तर वर्तमान में केवल 36.8% है जबकि पिछले साल इसी अवधि में

0: है ये 90% था। हमारे पानी के भंडार को सुरक्षित रखने और पानी को यथासंभव लंबे समय तक चलाने के लिए अधिक सख्त उपाय अपेक्षित है। एक क्राइसिस कमेटी का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री पत्रिक आस्यावादन कर रही है। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के महाप्रबंधक श्याम तानू द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पहली बैठक अगले सप्ताह होने की उम्मीद है। मॉरिशस ने साल 2026 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 50वां स्थान हासिल किया है। ये वैश्विक रैंकिंग दुनिया भर की 139 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन को मापती है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस वैश्विक इनोवेशन रैंकिंग में 3 स्थान ऊपर चढ़कर साल 2025 के 53वें स्थान से अब 50वें स्थान पर पहुंच गया है। साल 2019 में ये 82वें स्थान पर था, यानी तब से अब तक इसमें 32वें स्थानों का सुधार हुआ है। बैंक ऑफ मॉरिशस में चलन में बताए जा रहे जाली नोटों के खिलाफ सतर्कता बरतने की अपील की है, विशेष रूप से करेंसी नोट्स के प्रभावित होने की आशंका है। सेंट्रल बैंक ने किसी नोट की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए सही तरीकों की याद दिलाई है और जनता से आग्रह किया है कि वे किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दें। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि इंडोनेशिया में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 5.2 थी। भूकंप सुबह के 5:07 पर आया। इसकी गहराई जमीन के करीब 10 किलोमीटर नीचे थी। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, देश के दक्षिण पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा, खासकर आज दिन के दौरान। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह थोड़े से बादल घेराएंगे और पूर्व तथा ऊंचे इलाके पर हल्की सी बारिश होगी। दिन के दौरान दक्षिणी ढलानों, पूर्व तथा सेंट्रल प्लाटू पर बादलों के घेराव के साथ थोड़ी सी वर्षा होगी, जबकि रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 5:49 पर, जबकि सूर्यास्त शाम के 6:08 पर।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
0: तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। 6:30 विस्तार के साथ प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। तब तक अभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार और आदाब।
3: Your news on MBC Play and MBC.MU.
1: Chillax with Radio Musti.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty. A very good morning आप सभी को एक बार फिर से आप सभी को संडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह की बज चुकी है 6:11 और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो रिलैक्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर। मैं हूँ आपकी अपनी ही रिया और उम्मीद करती हूँ कि आपकी सुबह अच्छे तरीके से गुजर रही है। अक्टूबर महीने का पहला वीकेंड का आज आखिरी दिन है, संडे की सुबह है और तो चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, दिल में सुकून होना चाहिए और दिन की शुरुआत होनी चाहिए खूबसूरत गानों के साथ। और इस दूसरे घंटे का आगाज हमने किया फिल्म आतिश की सब बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ। हसरते है बहुत मगर क्या खूबसूरत बोल है, क्या एहसास है। कभी कभी एक गाना दिल की उन बातों को भी कह जाता है जिन्हें हम लफ्जों में बयां नहीं कर पाते। जिंदगी में हसरतें तो बहुत होती होगी, कुछ ख्वाहिशें पूरी हो जाती है, कुछ अधूरी रह जाती है और कुछ ऐसी होती है जिन्हें हम अपने दिल में संभाल कर रखते हैं। लेकिन शायद जिंदगी का असली मजा भी इसी में है, कुछ पाने की उम्मीद, कुछ सपने देखने की चाहत और हर सुबह एक नई आस के साथ उठना। और आज का दिन तो एक नया मौका है, कल की फिक्रों को थोड़ा पीछे छोड़िए, आज के पल को वो खुल कर जिए और अपने चेहरे पर वो मुस्कुराहट सजाइए जो आपके आसपास के लोगों का दिन भी खूबसूरत बना दे। तो पहले घंटे हमने ये चलाए सदाबहार गाने एंड दिस आवर्स गोना बी सम ब्यूटीफुल मिक्स सॉन्ग्स, कुछ प्यार भरे गाने, कुछ दिल को छू जाने वाली ध्वनि, बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पर। आप सुन रहे हैं रिलैक्स रिया के साथ, डेडिकेशंस मैसेजेस ऑन 5499-1294।
1: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

Tracks with Radio Musty. चलिए आपके मैसेजेस की ओर हम फिर से बढ़ेंगे. हमारे साथ है जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग. सो वॉशिंग देवानंद एंड देवेना दुर्गा और रिश्मा फ्लैक, वेरी हैप्पी 45th वेडिंग एनिवर्सरी. शादी की सालगिरह अभिनंदन आप दोनों को. बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम भाभी दिया दुर्गा. बेटा है अनुप, बहू विनुषा, ग्रैंडचाइल्ड है यू पीटी दर्शनी और दामाद है सोनाक्षी, बेटी अनुषा, छोटी सी परी शेल्वी. वॉशिंग देवानंद एंड देवेना, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस और बहुत बहुत सारा प्यार हमारी ओर से भी आपको बहुत सारी बधाई. एंड यहाँ पर हमारे साथ है जुड़ी हुई है कौन, आपने नाम नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आपके लिए नेक्स्ट ट्रैक हम जरूर डेडिकेट करेंगे आपके पूरे परिवार के नाम. एंड संगीता हमारे साथ है जुड़ी हुई है. संगीता आपके नाम जरूर नेक्स्ट गाना डेडिकेट करेंगे. एंड यहाँ पर धनेश्वर जी और आपकी पत्नी सुनीता, आप भी 45 Yes, a wedding anniversary celebrate कर रहे हैं. That's wonderful. चलिए आपको भी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं. Happy 45th wedding anniversary and best wishes coming from the whole Davidos family and also normal messages. चलिए हम देखते हैं हमारे साथ कौन है यहाँ पर. Right, एक birthday फॉर अनिष्ठा बिसन. जी हाँ, आज आपका जन्मदिन है. सो हैप्पी बर्थडे टू यू अनिष्ठा. बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम मामा इंद्रानी, पापा जगदीश, सानवी, बिनीशा जो मीबर्ग से साथ निभा रहे हैं. जो भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे. RM2 रेडियो मस्ती.

वैसे आरती पैम भी है कोंची से जो आज अपना जन्मदिन मना रही है, सो आपको भी हैप्पी बर्थडे चंदा ऑफ कवियादी सॉन्ग ने आपको विश किया है, अ वेरी हैप्पी बर्थडे।

अपने घर में ला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 6:30 हैं। रविवार 4 अक्टूबर 2026 के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले

0: एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश के जलाशयों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। महोवाकुआ में पानी का स्तर वर्तमान में केवल 36.8% है, जबकि पिछले साल की तुलना में इसी अवधि में जल स्तर 90% था। एक क्राइसिस कमेटी का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आस्यावादेन कर रही है। मॉरिशस में साल 2026 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 50वां स्थान हासिल किया है। ये वैश्विक रैंकिंग दुनिया भर की 139 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन को मापती है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने चलन में बताए जा रहे जाली नोटों के खिलाफ सतर्कता बरतने की अपील की है, विशेष रूप से करेंसी नोट्स के प्रभावित होने की है आशंका। और विदेश में यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरामको की एक सुविधा को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। नमस्कार और आदाब। प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि ये बात बार बार दोहराई जाती है कि हमारे जलाशयों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। महोवाकुआ में पानी का स्तर वर्तमान में केवल 36.8% है, पिछले साल की तुलना में इसी अवधि में जल स्तर 90% का था। हमारे पानी के भंडार को सुरक्षित रखने और पानी को यथासंभव लंबे समय तक चलाने के लिए अधिक सख्त उपाय अपेक्षित हैं। एक क्राइसिस कमेटी का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आस्यावादेन कर रही है। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के महानिदेशक श्यामा तानु द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पहली बैठक अगले सप्ताह होने की उम्मीद है। वे कल रात एमबीसी टेलीविजन के फ्रेंच बुलेटिन में लाइव थे और विशेष रूप से उपभोक्ताओं के सहयोग पर भरोसा कर रही हैं। उनको सुनते हैं।
1: Nous pas pour gagner la bataille si les consommateurs pas pour collaborer. Depuis le mois de juin, côté n'a pas de mesures restrictions qui ne viennent de l'avant. La population ne collaborait pas parfaitement. Donc, nous faisons un appel à la population, collaborer encore. Nous sommes dans une situation de très grave de manque d'eau. Et si la situation de sécheresse perdurait au mois de janvier, février, mars l'année prochaine, ce sera très, très, très grave, probablement ingérable.
0: और जैसे कि हम बता रहे थे कि शुक्रवार 2 अक्टूबर को महोवाकुआ जलाशय का जल स्तर 36.6% पर गया था। जैसे जैसे पानी का स्तर कम होता जा रहा है, सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने परिवारों को वाटर टैंक एंड डोमेस्टिक वाटर पंप ग्रांट स्कीम की याद दिलाई है। इसका उद्देश्य है पानी के भंडारण के लिए वाटर टैंक और घरेलू पंप लगवाने में मदद करना। ये योजना डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा चलाई जा रही है और वे परिवार इसका लाभ उठा सकते हैं जिसकी कुल आय 60,000 रुपये प्रति मास से अधिक नहीं है। इसके लिए आवेदन डीबीएम की वेबसाइट पर ऑनलाइन या फिर देश भर में स्थित उनकी शाखाओं के माध्यम से किए जा सकते हैं। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के संचार निदेशक सुनील गोपाल से, जिनसे बात की है हमारी सहयोगी आशी बाचू ने। विवरण सुमेहरा अकबर अली।
2: Si ou revenu total, c'est-à-dire pour la famille, n'est pas dépasse 60,000 rupees par mois.
3: अगर आपके परिवार की कुल माहवार आमदनी 60,000 रुपए से ज्यादा नहीं है तो आप इस योजना के योग्य हैं। आपको वाटर टैंक, वाटर पंप और फिटिंग्स मिलेंगे जिनकी लागत 15,000 रुपए की है। कुछ दस्तावेजों की जरूरत है। प्रक्रिया बहुत आसान है। डीबीएम द्वारा मांगों को तेजी से प्रोसेस भी किया जाता है। हम सीडब्ल्यूए के ग्राहकों से मांग करते हैं कि वो इस योजना का फायदा उठाएं।
2: Pour qu'ils prennent avantage de sa scheme là, il permet tout et n'a un tank de l'eau sur la pompe et sur un accessoire et au capable au moins un peu de l'eau que tout.
0: इस स्थिति से निपटने के लिए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी

0: ने सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में जलापूर्ति बढ़ाने की दिशा में एक आपातकालीन योजना भी तैयार की है। इसमें शामिल मुख्य उपाय है निजी पानी के टैंकरों की मदद लेना, पेत्रें और रिविया पापाया का पानी सीधे लामारी ट्रीटमेंट प्लांट में भेजना और मोलोंग जलाशय तथा कुछ बोहोल्स का उपयोग करना। और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, खासकर मॉरिशस ने साल 2026 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 50वां स्थान हासिल किया है। ये वैश्विक रैंकिंग दुनिया भर की 139 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन को मापती है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस वैश्विक इनोवेशन रैंकिंग में 3 स्थान ऊपर चढ़कर साल 2025 के 53वें स्थान से अब 50वें स्थान पर पहुंच गया है। साल 2019 में यही 82वें स्थान पर था, यानी तब से अब तक इसमें 32 स्थानों का सुधार हुआ है। ये देश सब सहारन अफ्रीका में इनोवेशन रैंकिंग में पहले स्थान पर बना हुआ है और उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में 36वें से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इस प्रगति का मुख्य कारण मानव पूंजी और अनुसंधान मूल ढांचा और व्यावसायिक परिपक्वता के सेक्टरों में बेहतर प्रदर्शन है। मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर तिशान बाहोरन के अनुसार ये प्रगति मॉरिशस के लिए एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन हमें अपने प्रयास आगे भी जारी रखने होंगे। तफसील के साथ सुमहरा अकबर अली।
1: रैंकिंग दा जीआईआई कंसीडर अ पे प्रेस 7 ग्रैंड सेक्टर।
2: जीआईआई में रैंकिंग 7 बड़े क्षेत्रों को मद्देनजर रखती है। इनमें से 4 सेक्टरों में बेहतर परफॉर्मेंस है, अन्य पहलुओं पर बेहतर काम करना है। बहुत सारी कोशिशों और निवेशों की जरूरत है। आहिस्ता आहिस्ता ये मुमकिन होगा। गए 5 सालों में नवीनीकरण की दिशा में बढ़ने वाली संस्था के तौर पर हमें पहचाना गया है। MRIC और दूसरी संस्थाएं मिलकर एक साथ काम करती हैं ताकि हमारी रैंकिंग बेहतर बनी।
1: As being one of the fastest climbers of innovation for the last 5 years. Et ça, c'est très intéressant. Et au niveau du MRIC, avec les institutions, nous travaillons de concert, nous coordonnons nos activités pour qu'il y ait maximum de données pour être capable de répondre, pour être capable d'améliorer nos rankings.
2: अनुसंधान और नवीनीकरण में निवेश करना है। हमें और ज्यादा इंतजार करना बाकी है ताकि ज्यादा फलदायक नतीजे हासिल कर सकें। बहुत से देश बेहतर कर रहे हैं क्योंकि उनके पास साधन हैं, उनकी यूनिवर्सिटियों की बेहतर रैंकिंग भी है।
1: Mieux parce qu'elle a beaucoup plus d'investissement, elle a beaucoup plus la recherche, elle a pris beaucoup plus de patentes, elle a pris beaucoup meilleurs rankings de l'université. Ce pays petit à petit capable traverse nous. C'est pourquoi nous besoin nous garde et investir et toujours aller de l'avant en fonction d'un investissement dans la recherche et l'innovation.
0: और जैसे कि हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि बैंक ऑफ मॉरिशस ने सर्कुलेशन यानी कि चलन में बताए जा रहे जाली नोटों के खिलाफ सतर्कता बरतने की अपील की है। विशेष रूप से करेंसी नोट्स के प्रभावित होने की आशंका है। सेंट्रल बैंक ने किसी नोट की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए सही तरीकों की याद दिलाई है और जनता से आग्रह किया है कि वे किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दें। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर विवरण करुणा लालू का।
3: जाली नोटों से सतर्क रहे। कुछ कमर्शियल बैंकों ने बैंक ऑफ मॉरिशस को नकली नोटों के प्रचलन में होने की सूचना दी। ये समस्या पॉलीमर नोटों की तुलना में पेपर नोटों से ज्यादा संबंधित है।
4: Une demande détectée qui nous prend marché, nous checker, nous met un côté. C'est une acquisition anonyme de là nous faire un suivi sur là avec ça.
5: Nous déjà passé la semaine de l'expérience.
4: Oh oui, nous déjà passé la demande d'expérience. Hein, mais là nous déjà rapporté qu'avec la police.
3: बैंक ऑफ मॉरिशस के अनुसार मॉरिशियन नोटों पर पाई जाने वाली सुरक्षा विशेषताओं की सही जानकारी होना बेहद

0: आवश्यक है। अस्थि नोट को जांचने के लिए 3 आसान तरीके हैं। छूकर देखें, ध्यान से जांचें और नोट को झुकाकर देखें। इससे अस्थि नोट की कई विशेषताओं की पहचान की जा सकती है, जैसे उसकी बनावट, अंदर बनाए गए चित्र, छिपी हुई तस्वीर, छोटे अक्षरों में लिखा पाठ और अल्ट्रावायलेट रोशनी के नीचे दिखाई देने वाले चमकीले तत्व।
1: CNBA les fausses, en général, le boutoulier NCP plus épais qu'NBA qui est vrai. Parce qu'il fait, Benjamin qui fait contrefaçon, je peux prendre un recteur avec VSO billet là, je peux coller ensemble, après je peux essayer de mettre un élément de sécurité à l'intérieur qui fait que le billet là vient un peu plus épais. Ou autrement, le billet là est capable de venir un peu plus lisse aussi, surtout si je fais photocopie. Quand on prend billet là, on prend au pouce, on roule, disons, surtout le portrait de la personnalité qui a apparaître au billet là, vous sentez comme si dirait un relief, comme si dirait un petit lagrin, comme si dirait sur le portrait, qui donne une indication que le billet là livré. Et le billet là, un clean billet là. Et là, ce que nous pouvons trouver, surtout le billet en papier, c'est-à-dire un hologramme. Je nous un hologramme billet de 200. Il y a un petit motif et en haut à droite du billet. Vous trouvez, si quand vous bougez ou inclinez, le chiffre de 200 pour paraître. Ou soit et la tête de deux pour paraître. Right? Le billet 1000, pareil, aujourd'hui, vous trouvez soit vous trouvez le bâtiment de la Banque de Maurice, soit vous trouvez le chiffre de 1000.
0: अगर किसी नोट पर संदेह हो तो निर्देश साफ हैं, नोट स्वीकार न करें और तुरंत इसकी जानकारी नज़दीकी पुलिस थाने को दें। बैकमॉर्शिस ने कहा कि जालसाजी से निपटने के लिए वो संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं।
2: अल्जीरिया से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक तकनीक अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान ले रही है और अब महिलाएं इस बदलाव के केंद्र में रहना चाहती हैं। अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं और इसके बावजूद कई पहल युवतियों को तकनीकी क्षेत्रों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और ये भूमिका निभाता है वुमेन इन टेक, एक ऐसा अभियान जिसका उद्देश्य है तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं का समर्थन करना, उनके कौशल को विकसित करना और उन्हें डिजिटल दुनिया में अधिक अवसर प्रदान करना। मॉरिशस सहित कई अफ्रीकी देशों में ये प्रयास तेजी से विकसित हो रहे हैं और इस क्षेत्र में इन महिलाओं की उपस्थिति को मजबूत करने में मदद कर रही है। विश्व पशु दिवस के लिए 4 अक्टूबर की तारीख का विशेष महत्व है, यानी कि आज हम मना रहे हैं विश्व पशु दिवस। ये दिन असीसी के संत फ्रांसिस से जुड़ा है, जिन्हें पशुओं और प्रकृति के प्रति करुणा के लिए जाना जाता है। समय के साथ ये दिवस धार्मिक सीमाओं से आगे बढ़कर पशु कल्याण और संरक्षण से जुड़े वैश्विक अभियान का रूप ले चुका है। इसका उद्देश्य अलग अलग देशों, संगठनों और समुदायों को एक मंच पर लाकर पशुओं के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है। पशुओं के प्रति संवेदनशीलता को अक्सर केवल दया और करुणा से जोड़कर देखा जाता है, परंतु इसका दायरा यही कहीं बड़ा है। पशु कल्याण के उनके भोजन, पानी, आश्रय, स्वास्थ्य, सुरक्षित वातावरण और अनावश्यक पीड़ा से बचाव जैसे पहलू शामिल है। घरेलू पशुओं से लेकर वाणिज्यों तक हर प्रजाति की अपनी प्राकृतिक जरूरतें होती हैं। इन जरूरतों की अनदेखी न केवल पशुओं के लिए समस्या पैदा करती है बल्कि पर्यावरणीय संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है। मॉरिशस में सुअर पालन के सेक्टर को लगा है एक बहुत ही बड़ा झटका। पर्यावरण से जुड़ी किसी भी आपदा से बचने के लिए इस पूरे सेक्टर का पुनर्गठन किया जाएगा। कैबिनेट ने शुक्रवार को एक सलाहकार की नियुक्ति को हरा झंडा दे दिया है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से खेतों का आधुनिकीकरण, पशु स्वास्थ्य, जैव सुरक्षा, पैदावार की पूरी जानकारी का ट्रैक करने की क्षमता, पर्यावरण प्रबंधन, मूल ढांचा, साथ ही सुअर का वध, प्रोसेसिंग और बाजार तक पहुंच जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। ये कार्य योजना इस सेक्टर की मुश्किलों पर कई महीनों तक चली बहस के बाद आई है, खासकर सहमौते में कूड़ा प्रबंधन को लेकर।

यहाँ लगभग 4,500 सुअर पाली जाती हैं। त्रोदूस पुस्तक महोत्सव का पांचवा संस्करण इस रविवार को संपन्न होने जा रहा है। सुबह 10 बजे से छोटे और बड़े सभी लोगों के लिए इमेज यानी कि छवि से जुड़ी कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। और वास्तव में इस वर्ष का जो विषय है छवि का सम्मान यानी कि छवि पर विशेष ध्यान देना। साल 2026 का यह संस्करण रात के 7 बजे होने वाले एक चित्रित संगीत कार्यक्रम के साथ समाप्त होगा। विदेशी स्तर जो आज सुर्खियों में है, यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरामको की एक सुविधा को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। हूतियों का कहना है कि ये हमला यमन की राजधानी सना और दूसरे प्रांतों पर सऊदी हमलों के जवाब में किया गया है। खबरों के अनुसार रियाद में अरामको की सुविधा के आसपास धुएं और आग का बड़ा गुबार उठता दिखा। सऊदी अधिकारियों ने अभी तक इस हमले की पुष्टि नहीं की है और अरामको ने भी टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत जवाब नहीं दिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार रात देर रात तक फ्लाई दुबई फ्लाइट के हीरो भारतीय पायलट कप्तान स्मिथ मछार से फोन पर बात की। इस दौरान कप्तान स्मिथ मछार ने 30 सितंबर को कॉकपिट के अंदर बीते खौफनाक पलों के बारे में बताया जब ओमान को उनके कोपायलट ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कैप्टन स्मिथ मछार ने बताया कि उन्हें पहले लगा कि विमान को कोई नुकसान पहुंचा है, परंतु फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनका कोपायलट ही उन पर हमला कर रहा है। इंडोनेशिया में रविवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 5.2 थी। भूकंप सुबह के 4:07 पर आया और इसकी गहराई जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे थी। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके पर खासकर दक्षिण पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे इलाके को प्रभावित करने जा रही है, खासकर दिन के दौरान। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह दक्षिण तथा पूर्वीय ढलानों पर थोड़े से बादल घेराएंगे और हल्की सी बारिश होगी, खासकर पूर्व और ऊंचे इलाके पर। जबकि दिन के दौरान दक्षिणी ढलानों तथा ऊंचे इलाके पर बादलों के घेराव के साथ बरसात होने का अनुमान लगाया जा रहा है। रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 5:49 पर, जबकि सूर्यास्त शाम के 6:08 पर।

आखिर में फिर से डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश के जलाशयों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मोगोवाकुआ में पानी का स्तर वर्तमान में केवल 36.8% है, जबकि पिछले

साल की तुलना में इसी अवधि के दौरान जल स्तर 90% का था। एक क्राइसिस कमेटी का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री पैट्रिक असेवादन कर रहे हैं। मॉरिशस ने साल 2026 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 50वां स्थान हासिल किया है। ये वैश्विक रैंकिंग दुनिया भर की 139 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन को मापती है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने चलन में बताए जा रहे जाली नोटों के खिलाफ सतर्कता बरतने की मांग की है, विशेष रूप से करेंसी नोट्स के प्रभावित होने की है आशंका। और विदेश में यमन के ईरान समर्थित हूटी विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरामको की एक सुविधा को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। तो देश विदेश की नई खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही ये प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम फिजान को धन्यवाद देना चाहेंगे। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

आइए शोक समाचार सुनते हैं। नंबर बी के ए एक नंबर बी के ए एक सुजिए गली वाले पीटो में नंबर बी के ए नंबर एक सुजिए गली वाले पीटो में 75 साल के 75 years old के जनाब बशीर अहमद राजावाली, जनाब बशीर अहमद राजावाली जिन्हें सब लोग भाई बशीर के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गया है। उनका जनाजा कल रात के साढ़े 7 बजे उनके बेटे जनाब नादिम राजावाली के मकान से निकाल कर दफना लिया गया है रिश्ते का कब्रस्तान। फ्यूनरल यस्टरडे नाइट एट 7:30 Chemin Lagan Notre-Dame, 38 years old की श्री बिनेश कुमार बसावन जिन्हें सब लोग बेंजोल के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह के साढ़े नौ बजे उनकी माँ श्रीमती विदेशी माला के घर शमेलागांव नोत्रदम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोले किशमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM। रामकिशन लेन जेबेर रोड रोजबेल में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शांता कुमारी जिलोल जिन्हें सब लोग तारा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उनकी बेटी श्रीमती सुबहा रोशनी के घर रामकिशन लेन जेबेर रोड रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। नंबर 19 एवेन्यू डालिया बॉ प्योले तेरूज में 84 साल की 84 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सरोजिनी रंगासामी जिन्हें सब लोग मैडम पाया सारा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के घर नंबर 19 एवेन्यू डालिया बॉप्योले तेरू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वाले दे प्रेत की श्मशान भूमि ली जाए जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। नंबर एक ओलीहुद वाकवा में नंबर एक ओलीहुद वाकवा में 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती देविका सिबोरत पैदाशी नाम सुचिता और जिन्हें सब लोग सुदेवी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के

10:30 आज दिन के 10:30 उन्हीं के घर नंबर 1 ओलीखुद वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेल की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। ऋषि दयानंद रोड रिवे दे क्रियोल में, ऋषि दयानंद रोड रिवे दे क्रियोल में 72 साल की 72 years old की श्रीमती कमला देवी मंगरा, श्रीमती कमला देवी मंगरा पैदाइशी नाम बंधन और जिन्हें सब लोग शिवरानी के नाम से भी

बेतु वाकुआ में लिम्बेतु वाकुआ में 75 साल के 75 years old के श्री महादेव बापू जिन्हें सब लोग बाबू के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उन्हीं के घर लिम्बेतु वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेखिनो की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट द 12:30 PM। रॉयल रोड पे चिराफरे में 84 साल की 84 years old की श्रीमती सत्यवती बंधु पैदाशी नाम बगन और जिन्हें सब लोग सत्यवती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उन्हीं के घर रॉयल रोड पे चिराफरे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 1 PM। अले जैक रोड नुवेल फ्रांस में 78 साल के 78 years old के श्री लक्ष्मी प्रसाद अलहदर जिन्हें सब लोग दहीलाल गुरुजी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके बेटे श्री अमृत सिंह प्रसाद अलहदर के घर अले जैक रोड नुवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिजबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड कालबास में 85 years old की श्रीमती सती दमयंती बहादुर पैदाशी नाम तानु और जिन्हें सब लोग सती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उन्हीं के घर रॉयल रोड कालबा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनिस्त्रियलो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। मौसलमान एमडीए सेकुंस्टांस 5 PM 54 years old के श्री महेश केदू जिन्हें सब लोग सतीश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके भाई श्री प्रीतम केदू के घर मुसलमान एमडीए सेकुंस्टांस 5 PM से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड नुवियम मिल ट्रियोले में 77 साल के 77 years old के श्री धनराज सिंह सदा सिंह जिन्हें सब लोग बाबू के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के ढाई बजे उनकी पत्नी श्रीमती श्यामा सदा सिंह के घर रॉयल रोड नुवियम मिल ट्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ट्रियोले की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। रॉयल रोड सेंट जूलियन डुटमो में 81 साल के 81 years old के श्री नरेंद्र नाथ कावलेसा जिन्हें सब लोग धनराज के नाम से भी जानते थे और जो DWC के पूर्व कर्मचारी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपेर के तीन बजे उनके बेटे श्री विशाल कावलेसा के घर रॉयल रोड सेंट जूलियन डुटमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉन्डुमास का कृष्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 3। और सावन रोड नुवेल फ्रांस में 64 साल की 64 years old की श्रीमती शर्मा कुमारी रामकुरन पैदाशी नाम उदीन और जिन्हें सब लोग शर्मा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। ऐसे भी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। On NBC.

0: गुड मॉर्निंग सभी को सुप्रभात घड़ी मिलाते चलिए सुबह के ठीक 7:01
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one

0: Tracks with Radio Musty. गुड मॉर्निंग सभी को, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि नींद पूरी हो गई होगी, चाहे चुस्कियाँ भी हो चुकी होगी और अब चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आप तैयार होंगे इस खूबसूरत संडे को जीने के लिए। टाइम चेक अभी 7:07, दैट मीन्स द परफेक्ट टाइमिंग। एंड संडे का दिन है, अक्टूबर का के पहले वीकेंड का आखिरी दिन है और लेट मी टेल यू दैट सूरज भी पूरी तरह से निकल चुका है। अभी अभी चक्कर मार के आए हैं और देखा है हमने कि आसमान में रोशनी है, सुबह में एक अलग ही ताजगी है और समय आ गया है अपने अंदर की एनर्जी को भी पूरी तरह जगाने का। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी ही रिया और आप सुन रहे हैं रिलैक्स, द थर्ड आवर ऑफ रिलैक्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती। और देखिए आज के इस तीसरे घंटे का आगाज हमने किया बहुत ही जबरदस्त गाने के साथ, दिल चाहता है द टाइटल ट्रैक। जैसे ही इस गाने की धुन बजती है ना, दिल करता है कि बस गाड़ी उठाओ और दोस्तों को बुलाओ और निकल पड़ो किसी खूबसूरत सफर पर। दोस्ती, मस्ती, आज़ादी और जिंदगी को अपने अंदाज में जीने का नाम है ये गाना। और बस इसी तरह का जोश चाहिए हमें आज की सुबह में। पहले दो घंटों हमने खूबसूरत सा बाहर रंग नगमे सुने, यादों की बातें की और we've got mixed tracks as well, कुछ 90s के गाने। और अब रिलैक्स के इस तीसरे घंटे में लेकर आए हैं जबरदस्त गाने, धमाकेदार धनी और भरपूर एनर्जी। तो चाहे आप घर पर हैं, नाश्ता बना रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं या आज के संडे की तैयारी कर रहे हैं, वॉल्यूम आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और मूड को भी चकाचक बना ही दीजिए। आज फुल ऑन मस्ती होनी तो चाहिए, संडे का दिन है, कल की फिक्र कल करेंगे, आज हम मुस्कुराएंगे, गाएंगे और हल्का हल्का मजा लेंगे। दैट्स योर ट्रैक्स ऑन रेडियो मस्ती एंड इट्स मी, इट्स विद मी रिया। तो चलिए आपके डेडिकेशन मैसेजेस ऑन 5499-1294।
1: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Masti.
1: हाय हाय, क्या बात है. संडे की सुबह और ऐसे गाने हैं जिससे और भी बेहतर हो रहे हैं ये पल. एक बात बताइए, जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मूड कैसा होता है. कुछ लोग तो आंखें खुलते ही एकदम तैयार है, चलिए भाई दिन शुरू करते हैं, और कुछ लोगों को बिस्तर से उठने के लिए 3 अलार्म, 2 आवाजें और 1 कप चाय की जरूरत पड़ती है. लेकिन आज संडे है तो आज का फंडा बिल्कुल सीधा है, जो भी करे खुशी से करे. अगर घर की सफाई करनी है तो अपना पसंदीदा गाना लगाइए और काम को भी थोड़ा मजेदार बनाइए. अगर नाश्ता बनाना है तो गाने गुनगुनाते हुए बनाइए. और अगर आज आपका कोई खास काम नहीं है तो क्या बात है, आराम से बैठिए, धूप का आनंद लीजिए और अपनी पसंदीदा धुनें आप जरूर सुन सकते हैं. तो मूड कमाल हो या ना हो, जब हम ऐसे गाने चलाएंगे तो आम शो की मूड बन ही जाएगा और आपका ये संडे और भी फंडे जैसा हो ही जाएगा. तो आज एक छोटा सा वादा खुद से करते हैं कि बिना वजह परेशान नहीं होंगे, छोटी बातों पर अपना मूड खराब नहीं करेंगे और अपने आसपास के लोगों के साथ भी खुशियां हम ज़रूर बांटेंगे. और हाँ, जो लोग अभी तक पूरी तरह जागे नहीं, उनके लिए एक म्यूजिकल रिमाइंडर, आंखें खोलिए, मुस्कुराइए, क्योंकि रेडियो मस्ती पर रिलैक्स चल रहा है. आज की सुबह का जोश बना रहना चाहिए दोस्तों. गाने ऐसे कि पैर खुद हिलने लगे और दिल कहे एक और बजाओ. तो चलिए कुछ ऐसा ही रंग में घुलने वाला गाना हम लेकर आए हैं आपके लिए.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: राइट घर ही मिलाते चलिए 7:31 एंड स्टूडियो में वी हैव विकास जी. तो चलिए सुनते हैं कि आजकल स्पोर्ट्स जगत में क्या कुछ हो रहा है. वेरी गुड मॉर्निंग आपको विकास जी.
4: गुड मॉर्निंग रिया एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्पोर्ट्स फैंस. संडे का झटका, इट्स ए मैसिव ब्लो टू क्रोएशिया, पर इंग्लैंड के लिए सोने पे सुहागा. इंग्लैंड की न्यू लुक टीम अपने नए कोच, नई स्टाइल और नए खिलाड़ियों के साथ क्या

लगती है, बड़ी सुंदर लगती है। हैरी केन, जूड बेलिंगम और बुकायो साका आदि थ्री लायंस ने क्रोएशिया में बूढ़े लुका मोड्रिच और कोच स्लैवन बिलिच के प्रति कोई रहम नहीं दिखाई। एक रूफलेस बेरहम इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 7-0 से पछाड़ा। जी हां, इंग्लैंड 7-0, वो भी क्रोएशिया के रॉयका मैदान में। एलेक्स स्कॉट का ये पहला मैच था इंग्लैंड के लिए, डेब्यू मैच। जारेल क्वांसा का प्रदर्शन एकदम काबिले तारीफ और एलियट एंडरसन को भी मौका दिया गया खेलने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये क्रोएशियन फुटबॉल की सबसे भारी हार मानी जा रही है, उसके इतिहास की हैवीएस्ट डिफीट है। अब सवाल ये उठता है कि कल रात इंग्लैंड बहुत अच्छा था या क्रोएशिया बहुत खराब था। जो भी हो, इंग्लैंड ने इन बच्चों की जान ही निकाल दी। इट्स क्रोएशिया 0-7। खेल के 8वें मिनट पर ही किंग हैरी ऑन टारगेट, एक पहला गोल। इसी हैरी केन ने 53वें मिनट पर एक डबल स्कोर किया। जूड बेलिंगम ऑन टारगेट 21वें मिनट पर, उसने 3 असिस्ट भी किए। एंटोनी गॉर्डन का एक सुंदर गोल। बुकायो साका ने एक डबल स्कोर किया और रोजर्स का गोल खेल के 87वें पर मैदान पे कदम रखते ही क्रोएशिया 0-7। एक गोल और 3 असिस्ट के साथ 23-year-old जूड बेलिंगम बना मैन ऑफ द मैच, जो रॉय कीन के अनुसार वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एवर बन सकता है। अब अगले मंगलवार को, इसी मंगलवार को इंग्लैंड का मुकाबला चेक रिपब्लिक से है, तो क्रोएशिया खेलेगा एक बार फिर अपने होम मैदान पे वर्ल्ड चैंपियन स्पेन के विरुद्ध। अब स्पेन उसको कितना पेन देगा, देखते रहिए और सुनते रहिए। बाकी नतीजे इस प्रकार हैं। इसी ग्रुप में कल स्पेन ने, वर्ल्ड चैंपियन स्पेन ने चेक रिपब्लिक को 3-1 से परास्त किया। लामिन यामाल ऑन टारगेट खेल के 6वें मिनट पर ही रोड्री का गोल 35वें पर और 89वें पर मिकेल मेरिनो का गोल। स्पेन 3, चेक रिपब्लिक 1। ग्रुप 1 में कल स्कॉटलैंड ने एवे जाकर नॉर्थ मैसेडोनिया को 2-0 से परास्त किया। बोवी और जॉन मैकगिन ऑन टारगेट। इस मैच की बड़ी बात यह है कि कप्तान एंडी रॉबर्टसन ने अपनी सेंचुरी पूरी की, अपना 100वां मैच खेला स्कॉटलैंड के साथ और स्कॉटलैंड ये मैच एवे मैदान पे 2-0 से जीत गया। इसी में स्विट्जरलैंड ने स्लोवेनिया को 2-1 से हराया। ग्रुप 1 में फिनलैंड भी 2, अल्बेनिया 1, तो बेलारूस ने सैन मैरिनो को 4-4 बार बेला। बेलारूस 4, सैन मैरिनो 0। एस्टोनिया 1, लग्जमबर्ग 0 और आइसलैंड ने बुल्गारिया को 3-0 से परास्त किया। अब आज रात योगन क्लॉप की फिर परीक्षा ली जाएगी। आज यूएफए नेशंस लीग के और सारे मैच खेले जाएंगे। सो इट्स गोइंग टू बी ग्रीस वर्सेस जर्मनी, जिसने गत सप्ताह जर्मनी में घुसकर द नेशनल मानचाफ को 1-0 से हराया था। आज रिटर्न मैच है, बदले की घड़ी भी है या कंफर्मेशन फॉर ग्रीस, ग्रीस वर्सेस जर्मनी आज रात 11:45। उसी समय इसी ग्रुप में नेदरलैंड्स का मुकाबला सर्बिया से, फिर पोर्चुगल खेलेगा नॉर्वे के विरुद्ध, वेल्स टक्कर लेगा डेनमार्क से, कोसोवो वर्सेस ऑस्ट्रिया रात 8:00, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड खेलेगी इसराइल के विरुद्ध, तो माल्टा का मुकाबला अंडोरा से और अजरबैजान वर्सेस लिचुआनिया, ये मैच शाम 5:00 ही खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली मैचों में ब्राजील का पहला इंडियन एनकाउंटर सफल साबित हुआ। लासेलिसाओ ने कल भारत को 4-0 से हराया। गोल कर्टेसी ऑफ एस्टेवाओ पेड्रो और सैमुअल लिनो का एक डबल। भारतीय फुटबॉल के इतिहास में ये सबसे बड़ा मैच माना जा रहा है, क्योंकि ब्राजील की ये पहली भारतीय फुटबॉल यात्रा है जो एकदम सफल, सक्सेसफुल साबित हुई। अब यहाँ से इंडियन फुटबॉल टीम कहाँ जाती है, देखते रहिए और सुनते रहिए। फ्रेंडलीज में ही आज सुबह ही अर्जेंटीना ने बुर्किना फासो को 7-0 से हराया। मार्टिनेज, जियालो, प्रेस्टियानी, पाज, अल्वारेज, मास्टुआंटोनो और सिमियोन ने बारी बारी एक एक गोल स्कोर करके अर्जेंटीना को 7-0 से जितवा दिया। आज इसी समय यूएसए मेक्सिको को 2-0 से हरा रहा है। हॉल का एक डबल है। अभी खेल का ये सेकंड हाफ अभी अभी शुरू हुआ है और कल जो मैच खेले गए फ्रेंडलीज में ही पैराग्वे ने एवे जाकर कोलंबिया को 1-0 से हराया। यूनियन रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ रशिया 6, नमीबिया 0, कनाडा ने पेरू को 2-0 से हराया और आइवोरी को 0, कैमरून 1, ऑन टारगेट एनसोंगो फॉर कैमरून।

0: क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए कहीं खुशी तो कहीं गम। भारत की T20 टीम ने यदि कल पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर एशियन गेम्स से जीत लिया, गोल्ड मेडल हासिल किया, हार्दिक बधाई, तो दूसरी ओर वनडे श्रृंखला के तीसरे मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने अपना तेवर दिखाया और भारतीय टीम को 5 विकेट से हराया। भारत ने अपनी पारी में 351 रन अच्छा स्कोर बनाया, इतने रन बनाए जिनमें केएल राहुल ने 129 नाबाद रन बनाए और रोहित शर्मा के 92 रन भी रहे, किंतु जवाब के तौर पर वेस्ट इंडीज ने जमकर बल्लेबाजी की और शाई होप ने 162 नाबाद रन बनाकर भारतीय टीम की सारी उम्मीदें सारी होप पानी में फेर दी। ऐसे में वेस्ट इंडीज ये तीसरा वनडे मुकाबला 5 विकेट से जीत गई। अब इसी मंगलवार से इन दो देशों के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का पहला T20 मैच खेला जाएगा। फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप की बहरीन ग्रां प्री मलेशिया में लग रही है। मैक्स वेरस्टैपेन ने कल पहली दफा इस सीजन पोल पोजीशन हासिल की, आज वो पोल पोजीशन से रेस शुरू करेगा। कल की इस रेस में लेविस हैमिल्टन दूसरे स्थान पे आया। लोकल स्पोर्ट्स में स्थानीय तौर पर बैडमिंटन में मॉरिशस की अंडर 19 टीम अपनी झोली में इजिप्ट से अपनी झोली में अंततः 1 स्वर्ण पदक और 4 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ रही है। एल्जा और कियारा हाउहोंग बहनों ने डबल्स में गोल जीता, तो बाकी सब यानी जोनाथन निंग विंग लिट, न्यानेश चांगिया और प्रणव भागीरथी को ब्रॉन्ज से ही संतुष्ट होना पड़ा। और फुटबॉल में बता दें कि प्रथम मैच 3-0 से जीतने के बाद कल मंडे सोमवार रात 7 बजे कोच रुई पेड्रो और हमारा क्लब एम फिर से श्रीलंका का सामना करने उतर रहे हैं कुछ दो नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। सुनते रहिए और मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार और शुभ दिन।
1: थैंक यू सो मच विकास जी और शुभ दिन आपको भी।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर द फ्लो एक्सपर्ट।

0: Mornings with Radio Musty.
1: राइट आपके मैसेजेस की ओर हम फिर से बढ़ेंगे एंड यहाँ पर व्हाट्सएप पर हाय हाय आपने क्या भेज दिया किसी ने यहाँ पर चाय गर्मा गर्म चाय और साथ में गातू पीमा और बैगेट ये तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है और संडे के दिन ये बहुत ही जचता है सो यहाँ पर आप ने लिखा कि अली शाम आपने ये पिक्चर भेजी है एंड दैट्स वंडरफुल गुड मॉर्निंग आपको भी एंड चलिए आपके लिए नेक्स्ट ट्रैक हम ज़रूर डेडिकेट करेंगे आपके नाम आपके पूरे शाम परिवार के नाम जो है सो के नाम से एंड हैप्पी संडे आप पुश करते हैं सभी को चलिए एंजॉय योर ब्रेकफास्ट और अपनों का साथ भी आप एंजॉय करते रहिए एंड टुडे शालील गोकुल सिंह जो है मौदिस्तालिया से अपना जन्मदिन मना रही है सो हैप्पी हैप्पी बर्थडे आपको शालील बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेज कमिंग फ्रॉम पत्नी प्रियंका बेटा है नमीश बेटी पूर्वी आरती विशाल अवनीश मामा पूर्णिमा पापा है ईश्वरलाल आशली है साथ में आशनी आरोही आनवी आर्या राकेश रूपालीना ऋषि हेमा एंड हैरिस सभी भांजियों भांजे दीयू और सुखा परिवार की ओर से आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे एंड हमारे साथ ऑल्सो जुड़ी हुई है कौन स्वीटी स्वीटी हमारे साथ कनेक्टेड है

0: हेलो स्वीटी, होप यू हैविंग अ गुड गुड संडे. और ऑल्सो ललिता जीतन जी, हाउ आर यू? हैप्पी बर्थडे. आप विश करती है टू मिस सिमी एंड ऑल गुड विशेज कमिंग फ्रॉम कलीग टीचर्स प्रिया, सोनिया, पुष्टिका, दिशिता, अलियाना, प्रीता, सलोनी, सुरवी, श्याम एंड ललिता जीतन. आपके नाम भी यहाँ पर हैं, आप भी उनको विश करते हैं. सो अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू मिस सिमी. एंड ऑल्सो यहाँ पर चंदा है रिव्या दिजांगी से और विश करती है वेरी हैप्पी बर्थडे टू आरती दीदी जो है कवेंची से. सो जो भी आज बर्थडे मना रहे हैं, आपको हैप्पी बर्थडे. वेल, लग रहा है कि आज बहुत सारे लोग हैं जो जन्मदिन मना रहे हैं, तो बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेज कमिंग फ्रॉम हमारी ओर से भी. एंड नॉर्मल मैसेजेस पर एक नज़र हम डालते हैं. वनीशा उगा है कैरोलिना से और विशिंग पति नाविन को अ वेरी हैप्पी बर्थडे. एक और बर्थडे मैसेज यहाँ पर, नाविन आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेज फ्रॉम द होल फैमिली. वैसे यहाँ पर आपका मैसेज कट गया है. क्या है कि नॉर्मल मैसेजेस में अक्सर जब आप लॉन्ग मैसेजेस भेजते हैं तो ये कट जाता है, तो अगर हो सके तो व्हाट्सएप पर ज़रूर आप फिर से भेज सकते हैं. एंड वी ऑल्सो हैव प्रीति. प्रीति जुड़ी है हमारे साथ. गुड मॉर्निंग आपको प्रीति. आज आपके जीजू विनेशन पदयाची का बर्थडे है जो श्रमेघन्य रहते हैं, तो विनेशन को भी हैप्पी बर्थडे और गुड विशेज फ्रॉम द होल फैमिली एज वेल. चलिए हम नेक्स्ट गाने की ओर बढ़ते हैं एंड आई होप यू एंजॉय दिस वन.
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

राइट इसी गाने के साथ इट्स टाइम टू रिया टू से बाय बाय टू ऑल ऑफ यू टेल यू बाय बाय टेक केयर कीप स्माइलिंग और मेरी बात आपको मिलेगा परी का साथ इन योर टाइमलेस तड़का।

सब कोई के नमस्ते और आदाब। फजर के 8 बजे के भोजपुरी समाचार सुना जा। हर हला ई बतावल गल बाते कि हमनी के देश के जलाशय के स्थिति चिंताजनक बा। महोवाकुआ में पानी के स्तर वर्तमान में खाली 36.8% के है। अब अगर गल बड़ी से यही अवधि के दौरान वो 90% के रहल। हमनी के पानी के भंडार के सुरक्षित रखे और पानी के यथासंभव लंबा समय ले चलावे खातिर जस्ती सख्त उपाय अपनावे के जरूरी बाते एगो क्राइसिस कमिटी गठित करल गल, जेकर अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आसियावादन करत हवन। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के महानिदेशक श्याम तानू के बगल से करल गल घोषणा के अनुसार पहला बैठक आवत सप्ताह के लगावे के उम्मीद बाते। मॉरिशस इबरिस के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 50वां स्थान प्राप्त करलन। ई वैश्विक रैंकिंग भर्ती दुनिया के 139 अर्थव्यवस्था के नवाचार क्षमता और प्रदर्शन के मापिला। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के हालिया रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस वैश्विक इनोवेशन रैंकिंग में 3 स्थान ऊपर चढ़ के साल 2025 के 53वां स्थान से अब 50वां स्थान पर पहुँच गलबा। बैंक ऑफ मॉरिशस चलन में बतावल जाए होला जाली नोट के खिलाफ सतर्कता बरते के मांग करलन। खासकर करेंसी नोट्स के प्रभावित होवे के आशंका बा। सेंट्रल बैंक कोनो नोट के प्रामाणिकता की जांच करे खातिर

सही तरीका के याद दिलाईलन और जनता से आग्रह करलन कि अगर कोनो प्रकार के संदिग्ध मामला सामने आवेला तो तुरंत पुलिस के सूचना दे देवे के चाही। और दूसर देश में यमन के ईरान समर्थित हूटी विद्रोही ई दावा करलन कि उ सऊदी अरब के राजधानी रियाद में अरामको के एगो सुविधा के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनैलन। हुटी ई बी बोलन कि ई हमला यमन के राजधानी सना और दूसर प्रांत पर ही सऊदी हमला के जवाब में करल गल। देखरेवी संगे हमने के भोजपुरी समाचार समाभल ध्यान देवी खातिर धन्यवाद। नमस्ते और आदाब। Your news on NBC

0: Express तड़का
1: RM2
2: तो चलिए दोस्तों सुबह के 8:08 इट्स टाइम फॉर योर टाइमलेस तड़का संडे की ये खूबसूरत सी सुबह इट्स 4th ऑफ अक्टूबर मैं हूं परी आपके साथ लेकर आई हूं आपका अपना शो टाइमलेस क्लासिक्स के साथ आपकी इस मॉर्निंग को हम सजाने वाले हैं इट्स अ ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग सो बस आप भी हमारे साथ कनेक्टेड रहिए दिल का हाल दिल के मैसेजेस अपनों के नाम स्वीट संदेश से आप हम तक पहुंचा सकते हैं 5499124 पर दैट्स द मैजिकल नंबर दोस्तों जहां पर हमेशा हर घड़ी हर पल होता है आपका इंतजार सो वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट मैसेजेस और तब तक के लिए जानते हैं संडे का दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स
3: On est tous winners.
4: आम हालत देश के दक्षिण पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा खासकर आज दिन के दौरान अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज सुबह थोड़े से बादल घेराएंगे और पूर्व तथा ऊंचे इलाके पर हल्की सी बारिश होगी दिन के दौरान दक्षिणी ढलानों पूर्व तथा सेंट्रल प्लेटों पर बादलों के घेराव के साथ थोड़ी सी वर्षा होगी जबकि रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं प्रवाल रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच आज सूर्योदय 5:49 पर जबकि सूर्यास्त शाम के 6:08 पर
0: Your weather forecast on RM2.
1: Radio Musty.
5: Les prix malins débarquent chez Winners. Du 25 septembre au 8 octobre, profitez de super offres sur une sélection de produits du quotidien dans votre Winners préféré. Les 500 grammes de Boneless Mutton Trunk Greenfield à 334,95 € et à l'achat d'une penderie d'1m60 de haut, gagnez 150 points WIV. De nombreuses offres vous attendent dans le rayon. Alors remplissez votre caddie à prix malin et profitez-en chez Winners. Retrouvez notre brochure sur winners.me.
6: On est tous Winners.

0: Express Tadka
1: RM2
2: एग्जैक्टली दोस्तों, जब आप मिले हैं तो हमारा दिल भी तो ऐसे ही खिल जाता है हमारे लिसनर्स के साथ। जब हमें मौका मिलता है बस हम ये प्यारे प्यारे पल शेयर कर लेते हैं और ये स्वीट गाने आप तक पहुंचा देते हैं संडे मॉर्निंग्स। और आपके लिए लेकर आए हैं योर टाइमलेस तड़का, कुछ गाने जो कभी पुराने नहीं होते बल्कि वक्त के साथ थोड़े से और एनहांस ही होते हैं। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपका संडे आज एकदम मस्त शुरू हुआ है लेजी लेजी मॉर्निंग, एंड लेजी मॉर्निंग में शामिल होते हुए ये गाने जो आपको थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक, थोड़ा सा हैप्पी वाली फीलिंग दे। और मॉर्निंग में आपके जो भी प्लान्स हैं, यानी कि आज तो जो प्लान है वो यही होने वाला है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा चिलैक्स कर पाएं। और जब आप रिलैक्स करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट प्ले करता है वो होता है गाना, यानी कि गुड सॉन्ग्स चलते रहे तो माइंड भी आपका अच्छे से फंक्शन करेगा, जहां पर आज आपको आराम के कुछ पल एंजॉय करने को मिलने वाले हैं। सो इन्हीं पलों को हम खास और स्पेशल बना रहे हैं। अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ दोस्तों, एंड योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस आप हम तक पहुंचा सकते हैं हमेशा की तरह ऑन 5499 1294। मॉर्निंग मॉर्निंग में अपनी स्वीट विशेस लेकर आई है वनेसा।

और विशिंग एवरीवन अ ग्रेट संडे. चाय के साथ अपना मॉर्निंग टाइम एंजॉय कर रही हैं और कहती हैं दैट पूरा परिवार इस वक्त साथ है. रिवान जो जा रहे हैं फॉर फुटबॉल ट्रेनिंग, हबी राजीव और आप जा रहे हैं मार्केट, और बेटी कायना स्टिल एंजॉइंग हर मॉर्निंग स्लीप, यानी कि अभी भी वो आराम कर रही है. सो वेल आई गेस दैट्स अ ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग, और आपका प्लान है आज मार्केट जाने का, वो भी अपने हबी डियरेस के साथ. सो एंजॉय योर शॉपिंग टाइम, और घर के लिए तो आप शॉपिंग कर ही रहे हैं लेकिन साथ साथ हमारे साथ भी कनेक्टेड है. सो इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग. मॉर्निंग तो खास रहेगी लेकिन पूरा दिन भी आपका ऐसे ही अच्छे से बीते अपने पूरे परिवार के साथ. सो गुड विशेस टू यू स्वीट हार्ट. साथ ही यहाँ पर हैप्पी संडे, और कहती हैं इट्स माय फेवरेट, सो थैंक यू सो मच. आप भी तो हमारी फेवरेट है, हमारी प्यारी सी झाना जी जो कभी भी साथ नहीं छोड़ती है, और इस वक्त फ्लैग से हमारे साथ आप कनेक्टेड हैं. स्वीट बातों को एंजॉय करते हुए कनेक्टेड है रेडियो मस्ती के साथ. अगला गाना आप डेडिकेट करना चाहते हैं पूरे परिवार के नाम, रीमा जनिता सेष्टा अंशिनी सिल्विया यूवी कृषि शिवसरन परिवार जो इस वक्त फ्लैग से हमारा साथ दे रहे हैं. सो हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग, गुड विशेस आप तक पहुंचा रहे हैं, और यहाँ पर आयशा आपका भी हम स्वागत करते हैं. दैट्स योर टाइमलेस तड़का. सो यहाँ पर खूबसूरत गाने शामिल होने वाले हैं परी का साथ दिन के 11 बजे तक.

So well friends, ये गाना रिलीज हुआ था इन द ईयर 2015, लेकिन इट ऑलवेज गिव्स द फील ऑफ द 90s. Yes, the magical voices of Kumar Sanu, Sadhana Sargam from the film Dam Laga Ke Harsha. भूमि पेडनेकर, आयुष्मान खुराना पर पिक्चराइज ये खूबसूरत गाना डेडिकेट कर रहे हैं हमारे सभी लिसनर्स के नाम. फेरी का साथ है दोस्तों, दैट्स योर टाइमलेस तड़का, और आपके वंडरफुल ब्यूटीफुल मैसेजेस का कर रहे हैं वेलकम 5499 1294 पर.

0: Plus Tadka.
1: RM2.
2: तो चलिए दोस्तों, टाइमलेस तड़का ये था गाना फ्रॉम द फिल्म बाजीराव मस्तानी. टू गॉर्जियस एक्ट्रेसेस प्रियंका चोपड़ा एंड दीपिका पादुकोण, उन्हीं पर पिक्चराइज किया हुआ ये गाना. और इसी गाने के साथ एक बार फिर आए हैं हम आपके साथ प्यार भरी गुफ्तगू करने. और वेल दोस्तों, संडे मॉर्निंग है, सो आई एम श्योर कि आज की वो वाली मॉर्निंग है जहां पर आप अलार्म से नहीं बल्कि गुड मूड के साथ उठे हैं, जहां पर कोई आपको कहता नहीं है कि भाई अब उठने का टाइम हो गया है. आप बिल्कुल अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कर सकते हैं. एंड आई गेस दैट्स द बेस्ट रिवॉर्ड जो आपको पूरे हफ्ते की मेहनत के बाद मिलता है. तभी तो लगता है कि संडेज जो हैं वो इतने खास, इतने स्पेशल होते हैं, स्पेशली वीकेंड्स जिनका हम इतना बेसब्री से इंतजार करते हैं. वीकेंड में अगर काम भी होना, फिर भी वीकेंड वाली जो फीलिंग है वो अलग सी ही होती है, और ये अलग वाली फीलिंग ही हमें अच्छी लगती है. तो दोस्तों, हमें उम्मीद है दैट आपकी ये जो संडे मॉर्निंग्स है एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त स्टार्ट हुई है. और आपका प्यार, आपका साथ ये तो बना हुआ है ऑन 5499 1294. यस, दैट्स अ मैजिकल नंबर जहां पर आप अपने स्वीट मैसेजेस हम तक पहुंचा सकते हैं, और फिर इन मैसेजेस को हम ब्यूटिफुल गानों के साथ सजाकर आपके अपनों तक पहुंचाते हैं. सो वेल, ये कहते हैं यहाँ पर जो अगला गाना है इसे आप जरूर डेडिकेट करें हमारे पूरे परिवार के नाम. रिविदा गाली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं और आप है, कहती है कि आज मेरे जीजू ओके विनेसन पद्याची अपना बर्थडे सेलिब्रेट

कर रहे हैं शमा ग्रैनी रहते हैं और उनके लिए प्यार आशीर्वाद ये है फ्रॉम मामा देवगी उनकी पत्नी है चीना और साथ में स्वीट विशेस ये है उनके पूरे परिवार की ओर से मैसेज यहां पर आया है लेकिन जैसे हम कहते हैं अगर आप मैसेजेस व्हाट्सएप के जरिए हमें पहुंचा सकते हैं तो इट्स वेरी नाइस बिकॉज कभी कभार आपके जो मैसेजेस हैं नॉर्मल मैसेजेस वो कम्प्लीटली यहां पर नहीं पहुंचते हैं कुछ नाम अधूरे रह जाते हैं सो रहेगा इंतजार ऑन व्हाट्सएप सो दैट वी कैन सेंड सम वंडरफुल विशेस आपके अपनों तक चलिए यहाँ पर स्पेशल विशेस लेकर आए हैं ये है फ्रॉम महेन संध्या कृतेश क्रिस्टन और सभी परिवार जो प्यार पहुंचा रहे हैं कविता जी हमारा साथ दे रही हैं आप सो आपका भी हम वार्म वेलकम कर रहे हैं ऑन 5499-1294 यस ये है आपका रेडियो मस्ती जहाँ पर टाइमलेस तड़का प्रोग्राम अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक मेरे यानी कि परी के साथ और वेल यहाँ पर कहते हैं दैट व्रत चल रहा है और सभी लिसनर्स के नाम एक स्वीट सा गाना आप जरूर डेडिकेट करें स्पेशली डेडिकेट करना चाहते हैं गाना फॉर योर स्वीटेस्ट मामा तो वेल यहाँ पर जो नेक्स्ट गाना है होगा फॉर योर लव्ड वंस और आज सलिल गोकुल सिंह अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं बेस्ट विशेज उनके लिए यह है फ्रॉम वाइफ प्रियंका उनके बेटे हैं नमीश बेटी पूर्वी साथ में है आरती विशाल अवनीश मामा पूर्णिमा डैडीश्वर लाल एशले आशनी आरोही अनवी आर्या है राकेश रूपा लीना ऋषि हेमा चांद हरीस और सभी उनके नीस नेफ्यूज देवू एंड सुखा परिवार उन्हें विश कर रहे हैं अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड वेल थैंक यू सो मच यू एंजॉयिंग द सिलेक्शंस ये जानकर अच्छा लगा अभी के लिए जो अगला गाना है वो होगा आपके नाम ऑल द वे फ्रॉम लाल माची आए हैं डेविसन सो गाना आपके नाम भी एंड विशिंग यू अ वंडरफुल वंडरफुल संडे मॉर्निंग ओबिगाडू हमारा साथ दे रही हैं और आज आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं ये हैप्पी वाला बर्थडे आपको प्रीति जी और आपके लिए स्पेशल विशेस हस्बैंड गविन बेटा शयन एंड गिरशा की ओर से और साथ ही साथ तमाम लोग जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं स्पेशल विशेस आप तमाम लोगों के नाम हैव अ ग्रेट वन स्पेशल विशेस के साथ साथ यहाँ पर आपका साथ भी बना हुआ है सो बस ऐसे ही आपके जो वंडरफुल मैसेजेस है रहेगा इंतजार ऑन 5499-1294

0: Shameless तड़का
1: RM2
2: And well, that was the happiness का तड़का जो आपको चाहिए every morning, be it Monday या फिर Sunday. कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी में खुशियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है और खुशी की छोटी सी वजह यह है RM2 रेडियो मस्ती जहां पर आपके चेहरे की मुस्कुराहट आपके दिल की खुशी इसका हम बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं तो चलिए अभी के लिए तो हम बढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट ट्रैक की ओर उसी के साथ हम बढ़ेंगे समाचारों की ओर लौट कर आएंगे दैट्स योर टाइमलेस तड़का मैं हूं परी आपके साथ आज सुबह के 11 बजे तक साथ ही यहां पर किशन रघुनाथ जी सुरनाम से हमारा साथ दे रहे हैं कहते हैं गाना हो जाए फॉर वाइफ माला और प्यारी सी बेटियां हैं जिया एंड रिया सभी रघुनाथ परिवार आप उन्हें याद कर रहे हैं सो वेल ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर योर स्वीट फैमिली सभी सी तोहल परिवार आप भी हमारा साथ दे रहे हैं सो कहीं मत जाइए स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ

एंड वेल जैसे हम कहते हैं एवरी मॉर्निंग इज स्पेशल, लेकिन संडे वाली मॉर्निंग थोड़ी सी और खास होती है, जहां पर आप कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स कैप्चर कर पाते हैं और ऐसे ही कुछ स्वीट मोमेंट्स के साथ सनराइज देखने के बाद लौट रहे हैं लिसनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती. सो वी हैव मौसमी दी, वी हैव सिरुपा, कुणाल, महक, दमन. इस वक्त आप बेलमा से वापस आ रही हैं. सो विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल संडे और कनेक्टेड हैं आप रेडियो मस्ती के साथ. एंड वी ऑल्सो हैव आवर डियरेस्ट सुमी. सो दिस वन गोज आउट फॉर यू एंड हैव अ वंडरफुल संडे. एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी के नाम. सब कुछ

0: टाइम चेक सुबह के ठीक 9 बजे हैं देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं अभी उदय आपको नमस्कार
1: नमस्कार परी श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं मॉरिशस ने साल 2026 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 50वां स्थान प्राप्त किया है ये वैश्विक रैंकिंग दुनिया भर की 139 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन को मापती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस वैश्विक इनोवेशन रैंकिंग में 3 स्थान ऊपर चढ़कर साल 2025 के 53वें स्थान से अब 50वें स्थान पर पहुंच गया है साल 2019 में ये 82वें स्थान पर था यानी तब से अब तक इसमें 32 स्थानों का सुधार हुआ है ये देश सब सहारन अफ्रीका में इनोवेशन रैंकिंग में पहले स्थान पर बना हुआ है और उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में 6 से 5वें स्थान पर पहुंच गया है इस प्रगति का मुख्य कारण मानव पूंजी और अनुसंधान मूल ढांचा तथा व्यावसायिक परिपक्वता के सेक्टरों में बेहतर प्रदर्शन है ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि हमारे जलाशयों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है महोवाकवा में पानी का स्तर वर्तमान में केवल 36.8% है जबकि पिछले साल की तुलना में इसी अवधि में जल स्तर 90% था हमारे पानी के भंडार को सुरक्षित रखने और पानी के को यथासंभव लंबे समय तक चलाने के लिए अधिक सख्त उपाय अपेक्षित है एक क्राइसिस कमेटी का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री पत्रिक आस्यावादन कर रही है बैंक ऑफ मॉरिशस ने चलन में बताए जा रहे जाली नोटों के खिलाफ सतर्कता बरतने की अपील की है विशेष रूप से करेंसी नोट्स को के प्रभावित होने की आशंका है सेंट्रल बैंक ने किसी नोट की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए सही तरीकों की याद दिलाई है और जनता से आग्रह किया है कि वे किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दें विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार देर रात फ्लाइट के हीरो भारतीय पायलट कप्तान स्मित मछार से फोन पर बात की इस दौरान कप्तान स्मित मछार ने 30 सितंबर को कॉकपिट के अंदर बीते खौफनाक पलों के बारे में बताया जब ओमान के उनके को पायलट ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था कप्तान स्मित मछार ने बताया कि उन्हें पहले लगा कि

0: विमान को कोई नुकसान पहुंचा है, परंतु फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनका कोपायलट ही उन पर हमला कर रहा है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। पुआवर गली बुबासे में 63 साल के 63 years old के जनाब मोहम्मद निजाम बही खान जिन्हें सब लोग निजाम के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घर पुआवर गली बुबासे से निकालकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 11:15 AM। रॉयल रोड क्रेव क्योर में 76 साल की 76 years old की श्री सरधानन सिबोगत जिन्हें सब लोग सरधानन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम के चार बजे उन्हीं के घर रॉयल रोड क्रेवक्यूए से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए क्रेवक्यूए की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU.
2: Timeless Tadka.
3: RM2.
2: Timeless Tadka.

0: Shameless तड़का RM2
1: एग्जैक्टली दोस्तों, जिंदगी भी तो बिल्कुल इसी गाने की तरह है, यानी कि मोमेंट्स स्पेशल होते हैं और वीक भर हम चीज़ों को शेड्यूल करते हैं, काम, मीटिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन संडे कहता है कि थोड़ा सा अनशेड्यूल्ड ही रहने दो, जो वक्त मिल रहा है उसे फिल करने की ज़रूरत नहीं बल्कि उसे फील करने की ज़रूरत है. सो एन्जॉय योर संडे मॉर्निंग, जहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हैं एंड ऑफकोर्स कुछ ब्यूटिफुल मेमोरीज बना सकते हैं. ऐसे ही कुछ वंडरफुल मेमोरीज बनाकर लौट रहे हैं हमारे कुछ प्यारे दोस्त. So thank you so much and आप इस वक्त connected हैं. I guess you are lucky people जिनको आज मौका मिला कि सुबह आराम से उठे, उसके बाद जाकर sunrise को enjoy करें और चाय की चुस्कियों के साथ अपने इस Sunday को आप welcome कर सके. So इस वक्त we have मौसमी दी, we have सिरुपा, कुनाल, महक, दमन और sunrise तो आपने enjoy कर लिया है, तो हमारे साथ कुछ गानों को भी enjoy करें. हमारी प्यारी सी, हमारी sweet सी, हमारी ever smiling Sumi, आप भी तो हमारा साथ दे रही हैं. So ये जो अगला गाना है goes out for you and for your unbreakable friendship. कहते हैं कि जिंदगी में हर रिश्ता खास होता है, लेकिन दोस्ती का रिश्ता जो है वो एक्स्ट्रा स्पेशल होता है. So this one goes out for you all. Have a wonderful morning. Stay connected. RM2 Radio मस्ती के साथ. सभी listeners जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, not to forget आपके messages, आपके dedications 5499-1294 पर.

कनेक्टेड हैं आप RM2 रेडियो मस्ती के साथ. सो आई डू होप दैट आज की मॉर्निंग भी आपकी मस्ती के साथ ही शुरू हुई है. और कहते हैं ना दोस्तों के लाइफ में थोड़ी सी मस्ती तो ज़रूरी है, वरना लाइफ जो है काफ़ी फीकी फीकी सी लगती है. कहते हैं कि आपका इनर चाइल्ड, उसे आपको हमेशा अपने साथ रखना होता है, क्योंकि लाइफ में हम तो बड़े हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, लेकिन लाइफ को खुलकर जीना, थोड़े खुशी के पल इन्जॉय करना, और जैसे बच्चों में वो इनोसेंस होती है, वो हर एक चीज़ को इन्जॉय करने की जो एंथुजियाज़म होती है वो हमारे अंदर हमेशा रखनी चाहिए. सो आई डू होप दैट आज का संडे आप खूब एंजॉय करने वाले हैं, और आपके जो प्लान्स हैं वो तो ऑलरेडी बन चुके होंगे. सो अभी के लिए जो भी प्लान्स हैं बस उसमें शामिल हो रहे हैं RM2 रेडियो मस्ती के गाने. टीना, हमारी प्यारी सी टीना यहाँ पर हमारा साथ दे रही हैं, एंजॉयिंग द सॉन्ग्स, आई हैं अपनी वंडरफुल स्वीट मैसेज के साथ, और कहती हैं दैट वंडरफुल मॉर्निंग तो है ही, रेडियो मस्ती ऑन हाई वॉल्यूम, हैप्पी संडे टू ऑल द लिसनर्स, और कहती हैं आज इट्स अ वेरी स्पेशल डे, दीदी कमला इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे, उनके लिए बेस्ट विशेस, गुड हेल्थ, वेल्थ, लोड्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स. ये है फ्रॉम अ क्यूट आरोही एंड ऑल लव्ड वंस. प्यारा सा गाना होगा फॉर योर वंडरफुल लवली दीदी कमला, और हम भी उन्हें विश कर रहे हैं वेरी हैप्पी बर्थडे. साथ ही यहाँ पर आई हैं हमारी प्यारी सी रोशनी, अपनी रोशनी लेकर एंड ऑफ कोर्स अपनी स्वीट स्माइल लेकर टू एंजॉय द वंडरफुल सॉन्ग. सो अगला गाना होगा आपके नाम रोशनी एंड विशिंग यू वंडरफुल संडे. आई डू होप दैट आज आपके भी कुछ खास प्लान्स जरूर बने होंगे, और उसमें से एक प्लान है रेडियो मस्ती के गानों को एंजॉय करना. सो गाना होगा आपके लिए एंड थैंक यू फॉर दिस सुपर स्वीट मैसेज एज ऑलवेज. ललिता जीत ने कहती है मैं तो गर्मा गर्म इलायची चाय एंजॉय कर रही हूँ, घर पर हूँ परिवार के साथ, फुल वॉल्यूम पर सुन रहे हैं हम रेडियो मस्ती. गाना आप डेडिकेट करना चाहती है फॉर श्याम एंड कुमार देवीचंद, ललिता जी सभी जीतन परिवार के नाम भी आप डेडिकेट कर रही हैं गाना जो साथ दे रहे हैं लव वॉचर से. सो ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, अपनी स्वीट विशेज हम तक पहुंचाते रहिए, और स्पेशल विशेज उन तमाम लोगों के नाम जो आज ऑन 4th ऑफ अक्टूबर सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे. हैव अ ग्रेट ग्रेट वन. स्पेशल विशेज हमारी पूरी रेडियो मस्ती टीम की ओर से.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
1: So, well, that's your timeless tarka. और लेकर चलते हैं आपको down memory lane with this beautiful track. उदित नारायण अलका याग्निक की आवाजें. जब सुबह enjoy करने की बात होती है, so I guess ये गाना एकदम perfect feel देता है. Enjoying the sunrise, enjoying the beautiful morning, enjoying the wonderful time जो आपको मिला है. हर एक पल को आप बनाए खास हमारे साथ बिकॉज आपके लिए लेकर आए हैं गुड म्यूजिक. तो चलिए दोस्तों, आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस का रहेगा इंतजार 5499 1294 पर. फरी का साथ दिन के 11 बजे तक RM2 रेडियो मस्ती पर.

0: म्यूजिक ऑल डे लॉन्ग रेडियो मस्ती सुनते रहो।
1: So, well, जैसे हम कहते हैं एवरी सॉन्ग इज स्पेशल एंड दिस वन गोज आउट फॉर आवर डियरेस्ट रोशनी इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं आप सो हैप्पी संडे विशेस के साथ सॉन्ग सो दैट यू कैन कीप स्माइलिंग अभी के लिए तो हम गुड विशेस आप तक पहुंचा रहे हैं एंड टू ऑल द लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं साथ ही गाना

होगा फॉर लिटिल सन शिवांश, और बस उन्हें कहना है दैट मामा आपसे बहुत प्यार करती है. इक्वली गोज आउट फॉर हस्बैंड विमल जो इस वक्त फिलिंग स्टेशन मोटा ब्लॉन्श काम कर रहे हैं, और आप है विदुषा सेबास्टोपोल से हमारा साथ दे रही हैं. सो वेल, साथ देने के लिए शुक्रिया. आपकी संडे को स्पेशल बना रहे हैं एंड ऑफकोर्स डेडिकेटिंग दिस ब्यूटिफुल ट्रैक फॉर ऑल योर फैमिली ऑल योर फ्रेंड्स. हमारी प्यारी सी कमला जी, कहाँ छुपी हुई थी आप? आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आई एम गेटिंग योर मैसेज. कमला दीनू जी मोहतबा से साथ दे रही हैं और कहती है कि आज खास खास दिन है और आज आरोही शी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे, और सभी दिनों और रामधनी परिवार की ओर से उनके लिए बहुत सारा प्यार. सो स्वीट प्यारी क्यूट सी आरोही, हमने तो आपको काफ़ी छोटा सा देखा था लेकिन धीरे धीरे यू आर ग्रोइंग अप. सो आपके लिए बहुत सारा प्यार आरोही, आपके लिए स्पेशल विशेज, और तहे दिल से बस यही कामना करते हैं दैट लाइफ की जो भी बेस्ट थिंग्स हैं वो आपको मिले. सो लॉट्स ऑफ लव टू यू आरोही, और साथ ही यहाँ पर जितने भी लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं. दैट्स योर टाइमलेस तड़का, योर मैसेजेस, योर डेडिकेशन 5499-1294 पर. जावेद अली जो की आवाजें फ्रॉम द फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी. एंजॉय दिस वन, स्पेशली गोज आउट फॉर यू रोशनी.

0: US Tadka.
1: RM2.
2: And well, friends, morning.

टाइम जहां पर आप हमारा साथ दे रहे हैं. कहते हैं ना दोस्तों कि हर दिन प्रोडक्टिव रहना जरूरी नहीं होता, कुछ दिन होते हैं सिर्फ रिलैक्स करने के लिए. और कभी अगर आप कुछ अचीव नहीं भी कर पाते हैं तो इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज इट्स सिंपल दैट आपने खुद के लिए टाइम निकाला है, खुद को थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस दी है. और कभी कभार कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन्हें बस जी लेना चाहिए, और आज का संडे जो है शायद ऐसा ही है. एंड आई एम श्योर दैट संडे हो या मंडे, जैसे हम हमेशा कहते हैं एवरी डे इज स्पेशल, लेकिन मंडे टू फ्राइडे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाँ जी हाँ हम जानते हैं, सुबह उठते ही भाग दौड़ में हम सब लग जाते हैं, बिकॉज वी नो दैट बहुत सारे सपने देखे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें कंप्लीट करना है, और उसके लिए काम करना तो बनता है. लेकिन फिर जब दो दिन मिलते हैं तो उसे आप थोड़ा सा यूटिलाइज कीजिए, यूटिलाइज जहां पर आप उसे अपनी तरह से जी सकते हैं, खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकते हैं, खुद को थोड़ा सा पैम्पर कर सकते हैं, वो चीजें जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं. सो मेक इट स्पेशल. और जैसे हमने कहा कि जो संडेज होते हैं, स्पेशली जो वीकेंड्स होते हैं, वो टाइम फिल करने के लिए नहीं बल्कि टाइम फील करने के लिए होते हैं. सो एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट. और अभी के लिए तो हमारे जो लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, होप यू हैविंग अ नाइस टाइम. मैं हूं परी आपके साथ इन योर टाइमलेस तड़का अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक. वेल यहाँ पर विश्वन एंड विंती दोमा हमारा साथ दे रही हैं, आप मेलरोज से हमारा साथ दे रही हैं आप मेलरोज से. और डेडिकेट करना चाहते हैं गाना फॉर ऑल दोमा फैमिली ऑफ मेलरोज, राम गुलाम फैमिली ऑफ गोशनोआ, एंड विशिंग एवरीवन अ ब्लेस्ड संडे. और सभी हमारी टीम के नाम भी, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच. चलिए सो गुड विशेज आपके नाम. अपनी जो अपना जो दिन है, अपना जो संडे है, उसे आप खास जरूर बनाएं. सुदेश जी और उनकी बेटर हाफ आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी, आप है होशनुआ से, और बेस्ट विशेज आपके लिए, दैट्स कमिंग फ्रॉम ऑल कृतिका फैमिली. हम भी आपको विश कर रहे हैं वंडरफुल टाइम, और कुछ साल आपने साथ गुजारे हैं लेकिन अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, और जैसे हम कहते हैं कि सात जन्मों का साथ है और इसे खास बनाना तो बनता है. सो गुड विशेज ऑन योर स्पेशल डे. यहाँ पर प्रीति साथ दे रही हैं आप भी, गुड मॉर्निंग डियर. आप तो आई हैं अपनी स्वीट विशेज के साथ एंड ऑफकोर्स दैट स्वीट स्माइल के साथ. सो अगला गाना आपके नाम, फॉर योर हैप्पी डियरेस्ट, फॉर योर सन एंड सभी आपके डियर फैमिली के नाम जो यहाँ और इंडिया में है. साथ ही यहाँ पर कविता जी आप भी हमारा साथ दे रही हैं. चलिए सो यहाँ पर जो अगला गाना है होगा आपके नाम भी, फॉर एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. दिस वन गोज आउट फॉर यू, टाइमलेस तड़का ऑन द वेव्स ऑफ आरएमटू रेडियो मस्ती, परी का साथ दिन के 11 बजे तक, एंड इंतजार आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस का ऑन 5499 1294.

और चलिए दोस्तों इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर लौट कर आएंगे दैट्स योर टाइमलेस तड़का ऑन रेडियो मस्ती अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म भूल चूक माफ एंजॉय दिस वन

0: Time check, 10 a.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें अभी उदय से. आपको नमस्कार.
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है. शुक्रवार 2 अक्टूबर को मोगोवा का जलाशय का जल स्तर 36.6% पर आ गया है. जैसे जैसे पानी का स्तर कम हो रहा है, सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने परिवारों को वाटर टैंक और एंड डोमेस्टिक वाटर पंप ग्रांट स्कीम की याद दिलाई. इसका उद्देश्य है पानी के भंडारण के लिए वाटर टैंक और घरेलू पंप लगाने में मदद करना. ये योजना डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा चलाई जा रही है और वे परिवार इसका लाभ उठा सकते हैं जिसकी कुल आय 60,000 रुपये या प्रति माह से अधिक नहीं है. इसके लिए आवेदन डीबीएम की वेबसाइट पर ऑनलाइन या फिर देश भर में स्थित उनकी शाखाओं के माध्यम से किए जा सकते हैं. तो इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है. मॉरिशस ने साल 2026 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 50वां स्थान हासिल किया है. ये वैश्विक रैंकिंग दुनिया भर की 139 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन को मापती है. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस वैश्विक इनोवेशन रैंकिंग में 3 स्थान ऊपर चढ़कर साल 2025 के 53वें स्थान से अब 50वें स्थान पर पहुंच गया है. ये देश सब सहारन अफ्रीका में इनोवेशन रैंकिंग में पहले स्थान पर बना हुआ है और उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में 6ठे से 5वें स्थान पर पहुंच गया है. इस प्रगति का मुख्य कारण मानव पूंजी और अनुसंधान मूल ढांचा तथा व्यावसायिक परिपक्वता के सेक्टरों में बेहतर प्रदर्शन है. ट्रूडेडुसा पुस्तक महोत्सव के पांचवा संस्करण इस रविवार को संपन्न होने जा रहा है. सुबह 10 बजे से छोटे और बड़े सभी लोगों के लिए इमेजेस यानी कि छवियों से जुड़ी कई गतिविधियां आयोजित की जा रही है और वास्तव में इस वर्ष चुना गया विषय छवि का सम्मान यानी कि छवि पर विशेष ध्यान है. साल 2026 का ये संस्करण रात के 7 बजे से होने वाले एक चित्रित संगीत कार्यक्रम के साथ समाप्त होगा. विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि इराक की सरकारी ऑयल टैंकर कंपनी ने हमज जलमार्ग के एक बहुत बड़े क्रूड कैरियर से 20 लाख बैरल इराकी कच्चा तेल भेजा है. कंपनी के महानिदेशक ने शनिवार को बताया कि दशकों में पहली बार कंपनी ने इस प्रकार का ऑपरेशन किया. इसका मतलब ये है कि कंपनी कच्चे तेल को सिर्फ बसरा बंदरगाह तक पहुंचाने के बजाय सीधे हमज जलमार्ग भेज रही है. इसी से सरकारी तेल कंपनी सोमो को तेल की बिक्री और उसके लिए बेहतर कीमत तय करने में ज्यादा विकल्प

0: कल पर मिलेंगे। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। सावन रोड नोवेल फ्रांस में 64 साल की 64 years old की श्रीमती शर्मा कुमारी रामकरण पैदाइशी नाम उदीन और जिन्हें सब लोग शर्मा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। गांधी रोड लालमाटी में 87 साल की 87 years old की श्रीमती रेशमी ननलोल पैदाइशी नाम मौगा और जिन्हें सब लोग चंपा बिजुचे के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सपेर के तीन बजे उनके बेटे श्री सुरेंद्र कुमार ननलोल के घर गांधी रोड लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाटी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 3। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU.
2: Timeless Tadka.
3: RM2.
2: Timeless Tadka.

तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका हम साथ दे रहे हैं एंड दैट्स योर टाइमलेस तड़का वार्म वेलकम इन दिस आवर 10:10 परफेक्ट टाइम एंड आई गेस दैट यू आर गोइंग टू मेक योर संडे इतना ही परफेक्ट. वैसे संडे है खास और आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक्स. सो अभी के लिए दूल्हा मिल गया, उसी फिल्म का ये गाना आप सभी के नाम. फॉर द लिसनर्स, परी का साथ है दिन के 11 बजे तक का. इस आवर में कुछ स्पेशल सेगमेंट्स भी होने वाले हैं, सो कहीं मजा आइए. स्टे वेल कनेक्टेड.

0: 2 Radio Musti.
1: और चलिए यहां पर कहते हैं संडे की हवा कुछ कह जाती है, दिल की थकान को ले जाती है, जो बोझ था पूरे हफ्ते से उसे आराम से बहला जाती है. वेल दैट्स कमिंग फ्रॉम आकाश चेतन मनसुख बॉम्बू से हमारा साथ दे रहे हैं. विशिंग एवरीवन अ लवली संडे एंड विशिंग एवरीवन लव एंड हैप्पीनेस. सभी मनसुख परिवार के नाम स्पेशल विशेज बॉम्बू से हमारा साथ दे रहे हैं. तो चलिए ये जो स्वीट सा गाना है इसे हम आपके लिए डेडिकेट कर रहे हैं. हैव अ वंडरफुल टाइम आकाश एंड थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल मैसेज. साथ ही आज शिवानी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, आप बोना कैसे. एंड बेस्ट विशेस दैट्स कमिंग फ्रॉम अमन देविका सभी कीरू एंड बीचू परिवार आपको विश कर रही हैं हैप्पी वाला बर्थडे. सो हैव अ ग्रेट वन स्वीट हार्ट ऑन योर स्पेशल डे. कुछ प्यारे गाने हम आपके लिए डेडिकेट कर रहे हैं. स्पेशल विशेस कमिंग फ्रॉम योर फैमिली ऑल योर फ्रेंड्स और दोस्तों परी का साथ. एंड दैट्स योर टाइमलेस तड़का अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक.

0: 2 Radio Musti. Timeless Tadka.
1: RM2
0: Timeless Tadka.

0: और चलिए दोस्तों, वीकेंड फैशन के बारे में हम बात करेंगे। वीकेंड फैशन इज सिंपल, थोड़ा कंफर्ट, थोड़ा कॉन्फिडेंस और बिल्कुल अपना स्टाइल। वीकेंड का मूड तो आउटफिट पर डिपेंड करता है, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि आज क्या पहनने का आपका मूड है वो आपको खुद डिसाइड करना होता है। और मंडे टू फ्राइडे वाला मूड हम क्यों ही रखें, थोड़ा सा आज कलरफुल, थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ, आप फुल ऑन पर्सनैलिटी के साथ अपने आउटफिट को अपने अंदाज में ढाल सकते हैं। फैशन का मतलब सिर्फ ट्रेंड फॉलो करना नहीं होता, जो पहनो उसमें खुद को कंफर्टेबल एंड फैशनेबल फील करना भी तो जरूरी होता है। सैटरडे संडे आउटफिट्स का एक अलग ही फ्रीडम होता है, नो रूल्स, नो रश, बस जो आपको अच्छा लगे वो आप पहने। अगर आपको शॉर्ट स्कर्ट्स पहनना पसंद है आप पहन सकते हैं, अगर आपको शॉर्ट्स पहनना पसंद है आप पहन सकते हैं, अगर लॉन्ग ड्रेस, जीन्स, जो भी आज का मूड है, जो भी आज मौसम का इशारा है, तो बस उसी हिसाब से आप अपने आप को स्टाइल करें। कभी जीन्स और स्नीकर्स, कभी ड्रेस और हील्स, एंड वीकेंड वार्डरोब का बेस्ट पार्ट होता है कि आपका मूड जो करे वो आप पहन सकते हैं। ट्रेंड कल बदल जाएगा लेकिन आपकी जो पर्सनल स्टाइल है वो हमेशा आपके साथ रहेगी। और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है कि आपकी जो पर्सनालिटी है उस हिसाब से आप अपने स्टाइल को फॉलो करें, और आपकी पर्सनालिटी जो है वो हमेशा इंप्रेशन छोड़ती है। सो कीप इट स्टाइलिश, कीप इट ग्रेसफुल एंड स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हरकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: RM2
3: Radio Musti.
2: Feel the Musti.
0: और चलिए यहाँ पर फैशन टिप्स के बाद म्यूजिक कंटिन्यूज। इट्स योर टाइमलेस तड़का, एक और टाइमलेस क्लासिक आपके लिए। कुमार सानू, साधना सरगम की आवाज, ये फ्रॉम द फिल्म कृष्णा। एग्जैक्टली, मूड भी तो कुछ ऐसा ही है, यानी कि हैप्पी हैप्पी मूड ऑन दिस संडे मॉर्निंग। टाइमलेस तड़का ऑन RM2 रेडियो मस्ती, परी का साथ, मैसेजेस, डेडिकेशंस 5499-1294 पर।

0: RM2 Radio Musty.
1: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Décor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Décor, pour ne pas manquer nos offres exclusives.
0: RM2 Radio Musty.
2: Timeless Tadka.
0: RM2
2: Timeless Tadka.
3: एंड जाते जाते दिस टाइमलेस क्लासिक आपके लिए इसी गाने के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय. परी तो चली लेकिन आ रही है नीलमणि लेकर योर बॉली ब्रंच. जाते जाते यहाँ पर रेखा जी हमारा साथ दे रही हैं और डेडिकेटिंग गाना फॉर बेटा अंश ऑफ पोमोजे. सभी अपनों के नाम, सभी परिवार के नाम प्रकाशपति जी ऑल द वे फ्रॉम बेल्जियम लेकर आई हैं अपनी गुड विशेज. तो चलिए आपको छोड़े जा रहे हैं विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. अलविदा तो नहीं कहेंगे, बस वादा करके जा रहे हैं कि मुलाकात होगी कल 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, एंजॉय योर संडे एंड हैव अ ग्रेट टाइम रेडियो मस्ती के साथ.

0: गुड मॉर्निंग, सुबह के 11 बजे हैं। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अभी नमस्कार।
1: नमस्कार निलमनी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बैंक ऑफ मॉरिशस ने चलन में बताए जा रहे जाली नोटों के खिलाफ सतर्कता बरतने की मांग की है। विशेष रूप से करेंसी नोट के प्रभावित होने की आशंका है। सेंट्रल बैंक ने किसी नोट की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए सही तरीकों की याद दिलाई है और जनता से आग्रह किया है कि वे किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दे दें। अल्जीरिया से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक तकनीक अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान ले ली है और अब महिलाएं इस बदलाव के केंद्र में रहना चाहती हैं। अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं, इसके बावजूद कई पहल युवतियों को तकनीकी क्षेत्र की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं और ये भूमिका निभाता है वुमेन इन टेक, एक ऐसा अभियान जिसका उद्देश्य है तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं का समर्थन करना और उनके कौशलों को विकसित करना और उन्हें डिजिटल दुनिया में अधिक अवसर प्रदान करना। ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि हमारे जलाशयों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। महोवाकुआ में पानी का स्तर वर्तमान में केवल 36.8% है, जबकि पिछले साल की तुलना में इसी अवधि में जल स्तर 90% का था। हमारे पानी के भंडार को सुरक्षित रखने और पानी को यथासंभव लंबे समय तक चलाने के लिए अधिक सख्त उपाय अपेक्षित है। एक क्राइसिस कमेटी का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आसियावादन कर रही हैं। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के महानिदेशक श्याम तानू द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पहली बैठक अगले सप्ताह होने की उम्मीद है। इस स्थिति से निपटने के लिए CWA ने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में जलापूर्ति बढ़ाने की दिशा में एक आपातकालीन योजना भी तैयार की है। इसमें शामिल मुख्य उपाय हैं निजी पानी के टैंकरों की मदद करना, पेत्रें और रिविया पापाई का पानी सीधे लामारी ट्रीटमेंट प्लांट में भेजना और मोलों जलाशय तथा कुछ बोहोल का उपयोग बढ़ाना। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरामको की एक सुविधा को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। हूतियों का कहना है कि ये हमला यमन की राजधानी सना और दूसरे प्रांतों पर सऊदी हमलों के जवाब में किया गया है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। पुली वर्जिनी स्ट्रीट वैली दु प्रेट में, पुली वर्जिनी स्ट्रीट वैली दु प्रेट में 81 साल के 81 years old के श्री विष्णु मोहन जिन्हें सब लोग पंडित विष्णु के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के ढाई बजे उनके पोते श्री विष्णु मोहन के घर पुली वर्जिनी स्ट्रीट वैली दु प्रेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रूली वैली दु प्रेट की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM किस्ट्रेल रोड बुनमेयर फ्लैक में 64 साल के 64 years old के जनाब अनवर हुसैन रामदीन जिन्हें सब लोग बाई के नाम से भी जानते थे, वह इंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज दोपहर के दो बजे उनकी माँ मिसिज जुबीदा रामदीन के मकान किस्ट्रेल रोड बुनमेयर फ्लैक से निकालकर दफनाने के लिए रिश्मा फ्लैक का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM रोजल में 85 साल के 85 years old के श्री ईरानन गंगाराम जिन्हें सब लोग भाई राम के नाम से भी जानते थे और जो नंबर सात

0: Site and Services कॉन्लुविए रोजिल के निवासी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे सेंट्रल फ्यूनेरिया डे कॉन्लुविए रोजिल से निकाल कर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Your news on MBC Play and MBC.mu.
2: Body Brunch RM2 Radio Masti.

0: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: बॉडी ब्रंच में दिल को धड़कने दो यार, क्योंकि टाइम हो गया है फॉर सम संडे फन। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू RM2 रेडियो मस्ती। अभी से ही बॉडी ब्रंच का सफर शुरू हो गया है और वो 2 बजे तक नमनी यही पर होगी आपके लिए। तो चलिए अभी के लिए हमारे लिसनर्स जो लेट चाय या कॉफी को एंजॉय कर रहे हैं, ये नेक्स्ट गाना करते हैं आपके नाम।
0: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: टू रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799378। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और क्वालिटी।
2: La fin d'année des costés, tu ne parais
3: pas ici l'année, et ta dépense aussi.
2: Mais Rogers Capital la même. Tansa, jusqu'à 31 décembre, tout nouveau client code Rogers Capital pégaye 500 roupies rabais l'aux autres premiers mensualités.
3: Financement, et te paye 500 roupies en moins, top net ça.
2: Application facile, Zis avec ton code identité.
3: Astez à mon faire l'année sans tracas.
2: Attendez, fais ou application premier crédit code Rogers Capital. Offre valable jusqu'à 31 décembre. Conditions applicables. Rogers Capital Credit. Au père sous licence de la FSI.
0: RM2
4: Radio Musty.

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: वैसे संडेज को पजामा पार्टी क्रू तो हमेशा रेडी रहते हैं, एंड आई एम श्योर आप में से कुछ लोग अभी भी पजामा पहनकर ब्रेकफास्ट के लिए बेकरी तक निकल गए होंगे, लेकिन अभी लंच टाइम होने को है, तो बॉडी को भी एक्स्ट्रा फ्यूल दीजिए और एनर्जी को पीक पर लाइए। कुछ अच्छा टेस्टी और फिलिंग सा खा लीजिए, घर का स्पेशल लंच हो, फेवरेट टेक अवे हो या कुछ हेल्दी सा, पजामा मोड ऑन रखिए, लेकिन पेट को भी एम्प्टी मत रखिए। अभी के लिए द गुड म्यूजिक कंटिन्यूज विद नर्मनी आपके ही RM2 रेडियो मस्ती पर।
0: Body Brunch RM2 Radio Masti.

0: Holly Branch
1: RM2 Radio Masti
2: बरसों रे मेघा बरसों, वैसे कहीं पर बारिश हो रही है और कहीं पर धूप खिली हुई है। मॉरिशस का वेदर भी आज मूड स्विंग्स कर रहा है क्या? आपके यहाँ वैसे मौसम कैसा है? रेनी डे वाइब्स है, सनी संडे वाइब्स है, या फिर दोनों का कॉम्बो पैक है? हमें बताइएगा जरूर कि आपके एरिया में क्या हाल है। 5499124 पर एंड ऑफकोर्स आपके मैसेजेस और डेडिकेशन के साथ फुनाह झट से जिशु मूवी के गाने के साथ आगे बढ़ते हैं।

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: And that was Nacho Meri Jaan Ka Gaana, क्योंकि जिंदगी का नाम ही होता है फुली से जीना, पूरी तरह से जीना. तो राज, कुछ टेंशन आपका सारा एनर्जी खा रहा है, उसे फीड मत करो, फील करो और जाने दो, क्योंकि ये होता है वन ऑफ द ब्रेवेस्ट फॉर्म्स ऑफ सेल्फ केयर. ऊपर से इट्स संडे, सेल्फ केयर तो बनता है. अभी के लिए फुली वाइब करते हैं विद द अपकमिंग सॉन्ग. गाने के ट्यून से आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सा गाना है.

0: ऐसे ही पहला हवा हमारा यूं गुजर गया. मिलते हैं जल्द ही संक्षिप्त समाचार के साथ. फॉर नाउ आखिरी गाना हो जाए इस हवा का.
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: व्यवस्थाओं के नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन को मापती हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस वैश्विक इनोवेशन रैंकिंग में 3 स्थान ऊपर चढ़कर साल 2025 के 53वें स्थान से अब 50वें स्थान पर पहुंच गया है। ये देश सब सहारन अफ्रीका में इनोवेशन रैंकिंग में पहले स्थान पर बना हुआ है और उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में 36 से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इस प्रगति का मुख्य कारण मानव पूंजी, अनुसंधान मूल ढांचा और व्यावसायिक परिपक्वता के सेक्टरों में बेहतर प्रदर्शन है। और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर तिशान बाहोरन के अनुसार ये प्रगति मॉरिशस के लिए एक सकारात्मक संकेत है। शुक्रवार 2 अक्टूबर को मोहवाक्वा जलाशय का जलस्तर 36.6% पर आ गया है। पानी का स्तर कम हो रहा है। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने परिवारों को वाटर टैंक एंड डोमेस्टिक वाटर पंप ग्रांट स्कीम की याद दिलाई है। इसका उद्देश्य है पानी के भंडारण के लिए वाटर टैंक और घरेलू पंप लगवाने में मदद करना। ये परियोजना डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा चलाई जा रही है और वे परिवार इसका लाभ उठा सकते हैं जिनकी कुल आय 60,000 रुपये प्रति मास से कहीं अधिक नहीं है। इसके लिए आवेदन DBM के वेबसाइट पर ऑनलाइन या देश भर में स्थित उनकी शाखाओं के माध्यम से किए जा सकते हैं। इस परियोजना का लाभ उठाया जा सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में जलापूर्ति बढ़ाने की दिशा में एक आपातकालीन योजना भी तैयार की है। इनमें शामिल मुख्य रूप से निजी पानी के टैंकरों की मदद लेना, पेतरें और रिविया पापाए का पानी सीधे लामारी ट्रीटमेंट प्लांट में भेजना और मोलोंग जलाशय तथा कुछ बोहोल्स का उपयोग बढ़ाना है। थुदोदुस पुस्तक महोत्सव का 5वां संस्करण इस रविवार को संपन्न होने जा रहा है। सुबह के 10 बजे से छोटे व बड़ों सभी लोगों के लिए छवि यानी कि इमेजेस से जुड़ी कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं और वास्तव में इस वर्ष का विषय है छवि का सम्मान। साल 2026 का ये संस्करण रात के 7 बजे से होने वाले एक चित्रित संगीत कार्यक्रम के साथ समाप्त होगा। विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट, दुबई की फ्लाइट में ओमानी को पायलट द्वारा कैप्टन मछार पर जानलेवा हमले की जांच के दौरान इजराइल के परिवहन मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि देश में आने वाले विदेशी विमानों के पायलटों की बैकग्राउंड चेक करना उसका काम नहीं है। ऐसी उड़ानें कभी भी 100% सुरक्षित नहीं हो सकती हैं। खबरों के अनुसार परिवहन मंत्री ने बताया कि चालक दल के सदस्यों की पहचान और उनकी जांच करने का काम सुरक्षा अधिकारियों का है, न कि परिवहन मंत्रालय का। तो ये थी अब तक की खबरें। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। पुलेविया जिनी गली वैली दु प्रेत में 81 साल के 81 years old के श्री विष्णु मोहन जिन्हें सब लोग पंडित विष्णु के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के ढाई बजे उनके पोते श्री विष्णु मोहन के घर पुलेविया जिनी गली वैली दु प्रेत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रूले वैली दु प्रेत की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM लालू सिरोई बेले रिवेशेस में 77 साल की 77 years old की मिसिस बीबी हातेज मुचियालू जिन्हें सब लोग छोटी मुचियालू के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज शाम के चार बजे उन्हीं के मकान लाली सुरोई बेले रिवेशेस से निकालकर दफनाने के लिए दुफ्रिया का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: On MBC Play and MBC.mu.
2: Body Brunch RM2 Radio Masti.

0: बटा लव इश्क बबुआ।
1: बॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
2: एंड यस, मस्ती के साथ ही आगे बढ़ते जा रहे हैं RM2 रेडियो मस्ती पर। चैन तो वैसे ही वीकडेज उड़ा ले जाता है, आज तो वीकेंड है भाई, ये संडे का दिन है, आज तो चैन की सांसें लीजिए, आराम से अपने काम निपटाइए। अगर घूमने का दिन है, नीचे वॉक्स पर जा रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, हर काम नो आसानी से आराम से कीजिए और खूब सारा रेस्ट है। डू नॉट फॉरगेट टू टेक खूब सारा रेस्ट है। नर्मनी तो यहीं पर है 2 बजे तक आपके इस आफ्टरनून को अमेजिंग बनाने के लिए। सो हियर वी गो बैक टू द गुड म्यूजिक।
1: Body Branch RM2 Radio Masti।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती
2: भविष्य खातिर हमनी लगे हर मेसा कोनो न कोनो योजना रहेला। लैका के पढ़ाई, एगो वायाज, घर के रेनोवेशन, यानी एगो पूरा जीवन जिए के। सिकुम अपन प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट प्लान्स के माध्यम से तोहरा तोहर आर्थिक भविष्य के विस्तार पर कोसे ये करी। आर जब रिटायर हुए के बखत आए त सिकुम के निजी पेंशन योजना से सकबा जीवन के ई नवा पराव के नवा सांस दे। तोहर भविष्य तोहर आज पर निर्भर करेला, इनकरा आज ही से तैयार करे के चाही। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाइह। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
3: सिकुम ग्रुप, ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Bolly Brunch RM2 Radio Masti.
1: And yes, Bolly Brunch ke saon mein good vibes ki saath saath who's racing we had jahan par hamare listeners connect kar payenge and also get the updates. Abhi ke liye big hello to Jana ji jo saath de rahi hai flag se khoobsurat gana dedicate kar rahi hai apni betiyon ke liye Rima, Janita, Sheshta, UV, Krishi, Anshini, Sylvia. शिवशंकर फैमिली के लिए एंड वी ऑल्सो हैव लीना जी जो कनेक्टेड है साथ दे रहे हैं प्लेन दे गौर से एक गाना मांग रहे हैं अपनी प्रिंसेस जिया के लिए और अपने हस्बैंड राजीव के लिए जीना जी भी कनेक्टेड है साथ में बिग हेलो टू यू एंड वी हैव हेलो हैप्पी संडे आप है प्रीति जी अमोगी से और आप गाना मांग रहे हैं अपने फैमिली के लिए और मेरे लिए भी थैंक यू हाउ स्वीट ऑफ यू तो चलिए आप ये ही पर रहना है कनेक्टेड आर एम टू वीडियो मस्ती के साथ नेक्स्ट गाना करते हैं आप सभी सुनने वालों Okay now.
0: Bolly Brunch RM2 Radio Masti.

0: ओके बाय।
1: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
2: मस्ती आफ्टरनून कंटिन्यूज राइट ही आपके ही बॉलीवुड ब्रंच में विद नर्मनी। एंड संडे आफ्टरनून में बॉलीवुड की थोड़ी गॉसिप और मसाला ना हो तो ब्रंच ना इनकम्प्लीट लगता है। अभी बॉलीवुड में सबसे बड़ा बर्ज है अजय देवगन की मूवी दृश्यम 3। एंड यस, फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका किया है। एंड गॉसिप कोना में देखे तो गोविंदा और कोमल रानी को लेकर जो रूमर्स चल रहे थे, कोमल जी ने क्लैरिफाई किया है कि उनकी पब्लिक अपीयरेंस फिल्म प्रमोशन का हिस्सा थी, रोमांटिक अफेयर नहीं। तो बताइए, आप बॉलीवुड गॉसिप सुनते हो या कहते हो मुझे तो बस गाने सुनते हैं, गॉसिप बाद में करेंगे। तो चलिए अभी नेक्स्ट गाना वॉट्स यू मूवी से आपके नाम।

0: भली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: चलिए भली ब्रंच में अभी के लिए संडे क्वेश्चन है आपके लिए। आपको अगर अभी इसी वक्त एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ लंच करने का मौका मिलता तो कौन होता आपका लंच पार्टनर? लेट अस नो व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए 5499124 पर रफना हुआ यार को पुकारते हैं ध्वनि भानुशाली के साथ।
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

एंड यस रेस ट्रैक से लेकर बॉलीवुड ट्रैक तक एंटरटेनमेंट रुकनी नहीं चाहिए, उसी को एंजॉय कर रहे हैं। अगली रेस के लिए रेडी रहिए, 1:05 पर होगा, और तब तक बॉलीवुड के साथ अपनी संडे को बनाइए फुल ऑन मस्ती भरा।

0: Good afternoon, it's 1 p.m. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अशिता। नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। हम इस दोपहर के समाचार बुलेटिन की शुरुआत देश में पानी के भंडार की लगातार बिगड़ती स्थिति से करती है। वर्तमान में मॉरिशस समय पानी की उपलब्धता में

करीब 30% की कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश की संभावना नहीं है, जिससे पानी की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इस बीच सप्ताह संकट प्रबंधन समिति की बैठक होगी। आज मनाया जा रहा है विश्व पशु दिवस, जो हमें हर जीव के प्रति

आज का दिन हमें बेजुबान जीवों को देखभाल और सम्मान की याद जीवों की देखभाल और सम्मान की याद दिलाता है। इस वर्ष के लिए थीम रखा गया है सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आईज, यानी उनकी आंखों से दुनिया को देखें। हर जीव ईश्वर की सृष्टि का हिस्सा है और उसे भी प्यार, सुरक्षा, सम्मान, समान अधिकार है। बेजुबान जानवरों की भावनाओं को समझना और उनके प्रति दया दिखाना हमारी इंसानी जिम्मेदारी है। और इसी संदर्भ में ही रोजेल में जानवरों के सम्मान और उनके प्रति करुणा को समर्पित एक समारोह का आयोजन किया गया। 4 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व पशु दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में जानवरों के लिए विशेष आशीर्वाद दिया गया ये आयोजन जानवरों के संरक्षक माने जाने वाली सेंट फ्रांसवा दासीज को भी समर्पित था। कई वर्षों से मॉरिशस सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर पशुओं के कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बेजुबान जानवरों को सुरक्षित और बेहतर जीवन देने के साथ साथ संस्था लोगों में उनके प्रति दया, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए भी काम करती है। मॉरिशस 7 अक्टूबर को अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के आधिकारिक शुभारंभ की मेजबानी करेगा। ये अफ्रीकी संघ की पहल है जिसका उद्देश्य अफ्रीकी वित्तीय बाजारों को मजबूत करना और महाद्वीप में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर अफ्रीकी संघ और संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। बुरुंदी के प्रधानमंत्री नेस्टो एंताउंतुई भी लॉन्च में शामिल होंगे। अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के मुख्यालय के लिए कई देशों के बीच प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया के बाद मॉरिशस का चयन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय पायलट कप्तान स्मित मचार को इसराइल के अगले स्वतंत्रता दिवस पर जश्न की मशाल जलाने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने फ्लाई दुबई के कप्तान से कॉकपिट के अंदर 30 सितंबर को हुई घटना के बारे में बात करने के बाद इनविटेशन दिया है। नेतन्याहू ने स्मित मचार की हिम्मत और सूझबूझ की तारीफ की और कहा कि वे भारत और इसराइल के बहादुर लोगों के असली हीरो और कप्तान स्मित की पूरी दुनिया के हीरो हैं। और उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मैकोनी ने स्वीकार किया है कि उनकी सरकार ने अमेरिका की ओर से संभावित हमले की स्थिति के लिए भी तैयारी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के कनाडा पर हमले का खतरा कम है और इसकी संभावना बेहद कम मानी जाती है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में हर संभावना पर विचार करना उनकी जिम्मेदारी है। डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को लेकर 51वां राज्य बनाने की बार बार की इच्छा और अमरीकी टैरिफ नीतियों के बीच दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ा है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान की धन्यवाद। साथ रहिए प्रत्येक शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। नंबर 7 साइट्स एंड सर्विस कॉन ले व्यू रोजेल में 85 साल के 85 years old की श्री हीरानंद गंगाराम जिन्हें बायराम के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी रोजेल कॉन्लेव्यू सेंट फ्यूनेरिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए 1:30 बजे गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमिश्नर ट्री एट 1:30 PM लालू सिरो बेलेर विशेष में 77 साल की 77 years old की बीबी हतेज मुचियालू जिन्हें छोटी मुचियालू के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज शाम 4 बजे उनके घर बेलेर विशेष से उठाकर दफनाने के लिए दुफ्रे का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM कैस्ट्रेल रोड बनमेयर फ्लैक में 64 साल के 64 years old के जनाब अनवर हुसैन रामदीन जिन्हें बाई के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज 2 बजे उनकी माँ जुबीदा रामदीन के घर
बुनमेया

फ्लक से उठाकर दफनाने के लिए रिश्मो का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल टुडे एट 2 PM. पुलिवेजनी स्ट्रीट वाले दीपत में 81 साल के 81 years old के श्री विष्णु मोहन, जिन्हें पंडित विष्णु के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके नाती विष्णु मोहन के घर वाले दीपत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए 2:30 बजे सिपाही भूले वाले दीपत की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. कमीशन टुडे रहा ऑफ पॉस्ट 2 PM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है. On

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: वैसे चल तो हम पहले से ही रहे हैं आपके साइड टू साइड RM2 रेडियो मस्ती पर। वेलकम बैक टू द लास्ट आवर आपके ही ब्लॉग ब्रंच का। आशा करते हैं कि आपने लंच कर लिया है। अगर नहीं, प्लीज जो आप यो फूड ऑन टाइम, क्योंकि गाने जो हम लेकर आ रहे हैं ना, उसके साथ तो आप पक्का वाइब करने वाले हो। एनर्जी तो चाहिए ना वाइब करने के लिए। सो हियर वी गो बैक टू द गुड म्यूजिक।
0: Body Brunch RM2 Radio Masti.

0: और M2
1: रेडियो मस्ती
2: भविष्य खातिर हमनी लगे हरमेशा कोनो न कोनो योजना रहेला। लैका के पढ़ाई, एगो वायाज, घर के रेनोवेशन, यानी एगो पूरा जीवन जिए के। सिकुम अपन प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट प्लान्स के माध्यम से तोहरा तोहर आर्थिक भविष्य के विस्तार पर कोसे ये करी। आर जब रिटायर हुए के बखत आए तब सिकुम के निजी पेंशन योजना से सकबा जीवन के ई नवा पड़ाव के नवा सांस दे। तोहर भविष्य तोहर आज पर निर्भर करेला, इनकरा आज ही से तैयार करे के चाहे। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जय। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
3: सिकुम ग्रुप, ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: swagger.
1: Bolly Brunch RM2 Radio Masti.
2: बॉली ब्रंच में स्वाग से ही चल रहे हैं और स्वागत है आपका वंस अगेन बॉली ब्रंच की इस मस्त सफर में। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग खास दिन और उनमें से एक है चेंज योर लाइट डे। बत्ती तो हम सब जलाते हैं लेकिन कभी सोचा है थोड़ा अपनी लाइट भी चेंज करें? रूम की लाइट डिम से ब्राइट करना आसान है लेकिन जिंदगी में जब मूड थोड़ा लो हो तो लाइट का स्विच हम खुद बन सकते हैं। तो आज एक छोटा सा चेंज करिए, कर्टेंस खोलिए, सनलाइट अंदर आने दीजिए, फेवरेट गाना चलने दीजिए और अपना मूड को ब्राइट कीजिए क्योंकि संडे अवर्स सब बत्ती भी ब्राइट, मूड भी ब्राइट और बॉली ब्रंच का स्वैग भी फुल ऑन ब्राइट है आपके लिए।
1: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: करनी है गंदे
1: और एम टू
2: रेडियो मस्ती
3: Chez Lolo, lait en poudre. Lolo 1 kg, full cream, à 199,50 €. Milo sachet de 400 grammes, 174,95 €. Max Fly, cola 1 litre, à 56,50 €.

0: Joy Branch RM2 Radio Masti.
1: You gotta figure it out and make your own way. और सच कहूँ तो कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते हैं, वो मूड भी चेंज कर देते हैं, एनर्जी भी बढ़ा देते हैं और कभी कभी मोटिवेशन भी दे जाते हैं. जैसे ये मैं सुनते ही वाइब ऑटोमेटिकली थोड़ी अपबीट हो गई. तो आज जो बॉलीवुड ब्रंच में हम ऐसे ही गुड वाइब्स वाले गाने लेकर आ रहे हैं जो आपको स्माइल कराए, थोड़ा नचाए और याद दिलाए कि अपना रास्ता भी खुद बनाना पड़ता है. तो वॉल्यूम को अप कीजिए और चलिए नेक्स्ट सॉन्ग भी गुड वाइब्स से भरा हुआ है आपके नाम करते हैं ऑन दिस ब्यूटीफुल संडे.
0: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती.

0: गुनगुनाते चलो साथ निभाते रहो वक्त हो गया है फनल मनी टू साइन ऑफ होप यू हैड अ ग्रेट टाइम विद योर बॉली ब्रंच आप यहीं पर रहना क्योंकि नेक्स्ट है प्लग एंड प्ले शो आपके लिए एंड हंसनी आने वाली है साथ निभाने के लिए सो स्टे सेफ ड्राइव सेफ एंड हैव अ ग्रेट संडे
1: Brunch RM2 Radio Masti

0: Wish you all a very good afternoon. I check your time. It's at 2 p.m. आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अशिता के साथ. आपको नमस्कार अशिता.
1: नमस्कार हंसिनी, श्रोताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है. 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 157वीं जयंती उसकी मनाई गई. इतने साल बाद आज भी उनके सिद्धांत दुनिया भर में सत्य अहिंसा और दयावान जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करने के प्रासंगिक बने हुए हैं. बापू

को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए परंपरानुसार इस बार भी लावांचुया गांधी भवन में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। आपको हम याद दिला देते हैं कि लावांचुया गांव में पिछले 1947 से ये परंपरा कायम है। अहिंसा के दूत माने जाने वाले महात्मा गांधी की जयंती हर साल की तरह एक भव्य समारोह के साथ मनाया गया। उनके आदर्शों को याद करते हुए उनकी अर्ध प्रतिमा पर पुष्प माला

0: शाला उन्होंने कहा कि गांधी जी के सिद्धांत विशेषकर विविधता के प्रति सम्मान, लोकतंत्र और आपसी सद्भाव जैसे मूल्य मॉरिशस जैसे बहुसांस्कृतिक समाज की ताकत बने हुए हैं। और आज जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI कुछ ही सेकंड में एक कहानी तैयार कर सकती है, ऐसे में सवाल उठता है कि लेखक के लिए क्या बाकी रह जाता है, उसकी कल्पना, उसके अनुभव और उसकी संवेदनशीलता और शायद वह जुड़ाव पैदा करने की क्षमता जिसे कोई मशीन पूरी तरह दोहरा नहीं सकती। पूरे विश्व में आज आयोजित पुस्तक महोत्सव में लेखक, प्रकाशक और पाठक एक ऐसी चीज के इर्द गिर्द जुटे जो अब भी पूरी तरह डिजिटल दुनिया के सामने कायम है, वह है किताब। मॉरिशस 7 अक्टूबर को अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के आधिकारिक शुभारंभ की मेजबानी करेगा। ये अफ्रीकी संघ की पहल है जिसका उद्देश्य अफ्रीकी वित्तीय बाजारों को मजबूत करना और महाद्वीप में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर अफ्रीकी संघ और संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। बुरुंडी के प्रधानमंत्री नेस्टो एंताहोंतुई भी लॉन्च में शामिल होंगे और अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के मुख्यालय के लिए कई देशों के बीच प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया के बाद मॉरिशस का चयन किया गया है। रोजेल में जानवरों के सम्मान और उनके प्रति करुणा को समर्पित एक समारोह का आयोजन किया गया। 4 अक्टूबर को यानी कि आज मनाए जाने वाले विश्व पशु दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में जानवरों के प्रति विशेष आशीर्वाद दिया गया। ये आयोजन जानवरों के संरक्षक माने जाने वाले सेंट फ्रांसवा दासीज को भी समर्पित था। कई वर्षों से मॉरिशस सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर एमसो पशुओं के कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बेजुबान जानवरों को सुरक्षित और बेहतर जीवन देने के साथ साथ संस्था लोगों में उनके प्रति दया, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए भी काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्राजील में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण में लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा चौथी बार राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 4 दशक पहले पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले लुला के नाम पर ये 7वीं बार मतदान हो रहा है। 2022 में जीत के बाद उन्होंने कहा था कि उनका तीसरा कार्यकाल आखिरी होगा और वह नए नेताओं के लिए रास्ता बनाएंगे, लेकिन इस बार वह दक्षिण पंथी उम्मीदवार फ्लाविओ बोल्सोनारो के खिलाफ मैदान में है। चुनाव से पहले सर्वेक्षणों में दोनों उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर दिखाई जा रही है। और ब्राजील में आपको हम बता देते हैं कि कड़े राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच मतदाता राष्ट्रपति, राज्यों के गवर्नरों और संधीय तथा क्षेत्रीय सांसदों का चुनाव कर रही हैं। देश भर में 158 मिलियन से अधिक पंजीकृत मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शुभ समाचारों की ओर।
1: Your news on MBC Play and MBC.mu.
0: शुभ समाचार सुनिए। रॉय रोड रिविया जोंगपा में 88 साल की 88 की रसूल बी अली बोकस पैदाश नाम फरीदान और जिन्हें रसूल बी के नाम से ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज शाम 3:30 बजे इनके बेटे अहद अली बोकस के मकान रिविया जोंगपा से उठाकर दफनाने के लिए पुएलास्को का कब्रिस्तान ले जाएगा। फ्यूनरल जूडियर हॉफ फॉर 3 PM पास बनियों पायोत फाकुआ कैट्रोबोन में पास बनियों पायोत वाकुआ कैट्रोबोन में 52 साल के 52 के श्री राजीवी रामखिलावन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 5 बजे उनके घर पायोत वाकुआ कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे एट 5 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
2: You're listening to RM2, a Radio Masti. Radio Masti, dil ki frequency. Plug and play.
3: RM2.
2: Plug and play.

0: track and play.
1: RM2.
2: नमस्कार, 12 मिनट हो चला है. हेलो एंड विश यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों. यहाँ पर आगे है आपके साथ हंसनी और संडे को डेफिनेटली हम सेलिब्रेट करने वाले हैं. इट्स आवर वीकेंड शो, इट्स प्लग एंड प्ले. और वैसे आज का संडे तो और भी स्पेशल हो गया है. और मौसम की बात करें तो ऑन माय वे टू MBC मोका में बारिश शुरू हो गई थी. अभी कुछ थम से गई है या फिर जारी है बारिश, ये तो आप बताने वाले हो क्योंकि हम तो स्टूडियो में आ गए हैं और आप लोगों का साथ हम देने वाले हैं ऑफकोर्स टिल 4 PM. सो यहाँ पर बाहर बारिश का मौसम छा गया है कई जगहों पर और हवा में एक अलग सी ठंडक है. और मूड कह रहा है जी बस चाय हो, पकौड़े हो और कोई अच्छा सा गाना हो जाए तो बात बन जाएगी. इसीलिए यहाँ पर हम सेट करने वाले हैं एक ऐसा सफर, एक ऐसा कलेक्शन हम लेकर आए हैं जिससे थोड़ा सा और एंटरटेनमेंट रहेगा. और साथ में जो सुवेनियर्स है वो डेफिनेटली हम वापस ले आएंगे इन आवर प्लग एंड प्ले. और आज तो घूमने का टाइम भी तो आया है. कुछ ही पल में यहाँ पर इशारा है कि विल बी हेडिंग टुवर्ड्स शॉर्ट मॉस सपोर्ट रेस. हम बढ़ेंगे फॉर द रेसेस जहाँ पे लगने वाला है द नेक्स्ट रेस, दैट विल बी आज का रेस 4. तो यहाँ पर अपडेट्स के साथ कुछ आपकी तरफ से हालचाल. यहाँ पर हालचाल ठीक ठाक हो. यहाँ पर गुड विशेस सबके लिए हम लेकर आए हैं. यहाँ पर शेयर करें अपने मैसेजेस को क्योंकि शेयर करने से जो खुशियाँ हैं वो बस बढ़ेंगी और आपकी जो दिल की बातें हैं वो भी तो पहुँच जाएंगी सही सलामत. सो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई. यहाँ पर हंसनी है ना, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर डेडिकेशंस एंड मैसेजेस. इस 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट हम करने वाले हैं आपके साथ ऑन 5491294.
0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: रेडियो मिस्टी पर आप सभी का वेलकम है. हम बन गए हैं आपके साथ म्यूजिक के हम सफर. इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑन रेडियो मिस्टी. आपका RM2 जो यहाँ पर सेट कर रहा है आज का ये प्लग एंड प्ले प्रोग्राम और संडे आफ्टरनून और जहाँ पर बारिश हो रही है, ये जो कम्बिनेशन है वो कुछ अलग ही होता है. वैसे कुछ लोग इस मौसम में घर से बाहर जाने का प्लान तो बना रहे होंगे. जहाँ पर धूप खिली हुई है, मे बी आज आपने प्लान किया है डे आदि सी साइड या फिर घूमने जाना है हफ्ते भर के लिए. कितना सारा काम होता है तो ये जो वीकेंड आता है, मे बी यू आर गोइंग फॉर अ विजिट. परिवार के यहाँ आप जा रहे हो फॉर अ नाइस कर्टेसी विजिट, जहाँ पर हाल चाल पूछने के लिए बिल्कुल आप जाएंगे खुद. ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल तो हम कितने बिजी रहते हैं कि टाइम ही नहीं मिलती है, फुर्सत ही नहीं मिलती है परिवारों से मिलने के लिए, बातें करने के लिए, गपशप करने के लिए. सो मेक द मोस्ट ऑफ योर वीकेंड. और कई हमारे दोस्त बस घर की साफ सफाई तो कर ही रहे हैं सुबह से. इतना सारा काम हो रहा है, घर की साफ सफाई बस जारी है. और अगले वीकेंड से हम माता रानी का धूमधाम से स्वागत तो करेंगे और नवरात्रि जो शुरू होने वाली है अगले वीकेंड को, तो अभी से ही तैयारियां चल रही हैं साफ सफाई करने के लिए. घर आंगन की पूरी साफ सफाई हो रही है सुबह से और काफ़ी कुछ थके हुए हैं, ये तो हमें पता है. सुबह से इतना सारा जो काम हो रहा है, इतने सारे एनर्जी को आपने बस ड्रॉ कर लिया है, तो यू नीड सम मोर एनर्जी, राइट. सो इसी के लिए यहाँ पर RM2 पूरा इंतजाम कर लिया है टू ब्रिंग सम मोर एंड मोर एनर्जी यहाँ पर गानों के साथ. हेलो टू रीना डुकारन एंड प्लेजर टू वेलकम यू इन द शो. और जैसे हमने कहा है, हमारी प्यारी सी जो दोस्त है सुबह से बस बिजी है, साफ सफाई में लगी हुई है, तो एक गाना तो बनता है ना टू मेक इट हैप्पी वीकेंड उनके लिए. यहाँ पर ऑफ कोर्स बनता है. सो रीना, यहाँ पर आपके लिए चल पड़ेगा नेक्स्ट गाना एंड फॉर यू सभी डुकारन परिवार के लिए, स्पेशली फॉर योर लवली डॉटर्स के लिए. नाम है पूर्वी, दिशा, मामा है अमृता और भाई है केविन. और सभी दुकान परिवार के लिए भी वी हैव गॉट विशेस. सभी को हम विश करेंगे अ वंडरफुल वीकेंड. तो आप भी अपने परिवारों को याद करें, वहाँ पर क्या हो रहा है. यहाँ पर शेयर करने से जो प्यार का बंधन है वो कुछ और खास हो जाएगा. सो व्हाई नॉट, यहाँ पर कोशिश कर लीजिए टू ब्रिंग इट अ बिट मोर स्पेशल. यहाँ पे है आपके साथ हंसनी और रहेंगे बस साथ साथ चलेंगे 4 बजे तक. सो अगर अभी कुछ फुर्सत मिली है, मोबाइल फोन आपके हाथों में है, सो जल्दी से सेंड अ मैसेज ऑन 5499-1294.
0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: वेलकम अगेन इन द म्यूजिकल वर्ल्ड ऑन RM2 रेडियो मस्ती. और बेशक जहाँ पर आपने थोड़ा सा टाइम निकाला है टू सेंड योर मैसेजेस, वहीं पर हम तो आएंगे आपके डेडिकेशंस को आगे बढ़ाने के लिए. राइट ऑन 5499 12 94. हेलो हंसनी. हेलो जी, हाउ आर यू डूइंग? मैं तो बिल्कुल मस्त. जब भी यहाँ पर आती हूँ तो एकदम मस्त हो जाती हूँ, क्योंकि आप सब तो है ना यहाँ पर. तो हमारी प्यारी सी एक दोस्त है जो अपनी गरम गरम चाय को एंजॉय कर रही है इस बरसाते मौसम में. वैसे आप कहाँ के हो, यहाँ पर आपने तो नहीं बताया है, लेकिन आपका जो प्यार है ना वो तो सही सलामत पहुँच गया है, ये बहुत खास बात है. थैंकिंग यू सो मच एंड डू एंजॉय योर चाय टाइम. इट्स आफ्टरनून तो ये चाय तो बनती है डेफिनेटली. We have Shalil from Bod, Australia, celebrating his birthday. We have wishes coming from wife Priyanka, beta Namish, beti Purvi. We have Arti, Vishal, Avnish, and baki sabhi parivar aaye hue hai to convey the love and to convey the good wishes unke liye. Happy birthday aapko and enjoy your weekend. Hello Hansani. Hello G. Kaise ho sab? Enjoying the Sunday selection in the kitchen aur cocktail tour ka ek gana. Ye to hum chalayenge. I'll try it for you, Anu. Thank you for sharing your love. Yahan par jo hai hamare saath in the kitchen, chahe kuch kaam ho raha hai. So to add some more taste, to add some more love, chahe aap bana rahe ho kuch khane peene ka jo time hai aa gaya hai. It's afternoon time for a weekend, so why not? Yahan par first set aapko mili hai apne parivaron ke saath kuch waqt bitane ke liye. So isse को और भी इससे पल को और भी स्पेशल बनाने के लिए आपको पता है ना आपका रेडियो मस्ती आपके साथ ही रहने वाला है. सो वी आर हियर आपके साथ 12:04 PM फॉर द वंडरफुल ब्लेंड ऑफ म्यूजिक इन आज का प्लग एंड प्ले. सो स्टे वेल कनेक्टेड. अभी इशारा भी तो है कि कुछ ही पल में हम बढ़ेंगे एक बार फिर से पोर्ट रेस की तरफ, शॉन्डमर्स की तरफ, जहाँ पे लगने वाला है द रेस 5.
0: प्लग एंड प्ले.
1: RM2.
0: प्लग एंड प्ले.

A wonderful Ghana on our way to Masti, and ऐसे ही आप गुनगुनाते रहिए with the Plug and Play program for this lovely weekend. यहाँ पर है आपके साथ हंसनी और जी हाँ इशारा तो था ही और अभी भी है कि कुछ ही पल में ना हम बढ़ेंगे शॉन डेमोस की ओर जहाँ पे लगने वाला है the next race.

0: सुरक्षा की। पैदल चलने वाले हों या यात्री, बच्चे सड़क पर सबसे संवेदनशील उपयोगकर्ताओं में शामिल हैं। मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और ट्रैफिक मैनेजमेंट रोड सेफ्टी यूनिट जल्द ही एक ऐसा ऐप शुरू करने जा रहा है जिसका उद्देश्य कम उम्र से ही बच्चों में सड़क पर सुरक्षित व्यवहार की आदत विकसित करना है। फिलहाल देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में हर सप्ताह 50 मिनट बच्चों को सड़क सुरक्षा के बुनियादी नियमों की जानकारी दी जाती है। हमारी वयस्क दिनचर्या में कुछ पल रुकना हमारे व्यस्त दिनचर्या में कुछ पल रुकना, कुछ नया बनाना और एक दूसरे के साथ समय बिताना हमेशा आसान नहीं होता। पीएफओ में रविवार को आयोजित कॉल्म की चौथी कलात्मक मुलाकात ने प्रतिभागियों को ऐसे ही कुछ सुकून भरे पल दिए। ये दिन सिर्फ मिलकर कुछ बनाने का नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ने और साथ होने का अवसर भी बना। यहाँ हर कोई अपनी रचनात्मकता और अपने अंदाज के साथ पहुंचा। कई हाथ मिलकर कार्डबोर्ड से एक घर तैयार करते, कोई काटता है, कोई जोड़ता है तो कोई दूसरों की मदद करता है और इस पूरी गतिविधि के दौरान बातचीत और आपसी मेल जोल भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 187वीं जयंती उसकी मनाई गई। इतने साल बाद आज भी उनके सिद्धांत दुनिया भर में सत्य, अहिंसा और सद्भावना जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं। बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए परंपरा अनुसार रविवार इस बार भी लावांचिया गांधी भवन में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। लावांचिया गांव में पिछले 1947 से ये परंपरा कायम है। अहिंसा के दूत माने जाने वाले महात्मा गांधी की जयंती हर साल की तरह एक भव्य समारोह के साथ मनाया गया। उनके आदर्शों को याद करते हुए उनकी अर्ध प्रतिमा पर पुष्प मालाएं चढ़ाई गई। इस अवसर के मुख्य मेहमान भारतीय उच्चायुक्त ने वर्तमान मॉरिशस समाज में महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गांधी जी के सिद्धांत विशेषकर विविधता के प्रति सम्मान, लोकतंत्र, सहनशीलता और आपसी सद्भाव जैसे मूल्य मॉरिशस जैसे बहुसांस्कृतिक समाज की ताकत बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कोनी ने स्वीकार किया है कि उनकी सरकार ने अमेरिका की ओर से संभावित हमले की स्थिति के लिए भी तैयारी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के कनाडा पर हमले का खतरा कम है और इसकी संभावना बेहद कम मानी जाती है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में हर संभावना पर विचार करना उनकी जिम्मेदारी है। डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बार बार की इच्छा और अमेरिकी टैरिफ नीतियों के बीच दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ा है। हालांकि 2025 में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका द्वारा कनाडा के खिलाफ सैन्य बल इस्तेमाल करने की संभावना बेहद कम है और वह अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आर्थिक दबाव जारी रखेंगे। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के धन्यवाद और नमस्कार।
1: Plug and play. RM2. Plug and play.

0: track and play.
1: RM2.
2: जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सेट करेंगे ये म्यूजिकल शो जहाँ पर इश्क फॉरएवर जैसा फील होता है आप की दोस्ती की जो स्पेशल रंग है वो बस छा जाती है. एंड वी आर हियर लेकर ये म्यूजिकल सफर फॉर द सेकंड आवर. इट्स अ प्लग एंड प्ले, इट्स अ वीकेंड, इट्स अ फैबुलस संडे आफ्टरनून जो यहाँ पर हम बिता रहे हैं आपके साथ. विशिंग यू ऑल अ ग्रेट आफ्टरनून एंड वेलकम वंस अगेन इन आवर म्यूजिकल शो. एंड यहाँ पर है आपके साथ हंसनी. रियली होप कि सब ठीक है, एंजॉइंग द आफ्टरनून वाला शो. और अभी सिटी टाइम, कई हमारे फ्रेंड्स अपनी चाय को एंजॉय कर रहे हैं. वेरी नाइस, अपने परिवारों के साथ कुछ वक्त तो बिता ही लीजिए. एंड वैसे कल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही खुश होने वाले हैं क्योंकि कल धूमधाम से जो मनाने वाले हैं हम सब टीचर्स डे. सो जितने भी हमारे टीचर्स इस समय स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है विद द रेडियो स्टेशन RM2 रेडियो मस्ती, यहाँ पर इन एडवांस हम आपको विश कर रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द अमेजिंग टीचर्स. वैसे आप सिर्फ हमें बुक्स और लेसन्स नहीं सिखाते हो बल्कि लाइफ में सही डिसीजंस जो

साथ देते हो, चैलेंजेस फेस करने के लिए आप हमेशा खड़े रहते हो और हमेशा हम सबको और भी बेहतरीन बनाने के लिए आपका मोटिवेशन यहाँ पर रहता है। सो हम सब जो आए हैं अपने गुरुओं को, टीचर्स को बस शुभकामनाएं देने के लिए, क्योंकि उनके जो पेशेंस रहती है, गाइडेंस एंड सपोर्ट जो वो हम सबको देते रहते हैं, उन्होंने दिए हैं इन द पास्ट और सिखाते रहते हैं, सदर से उन सभी को थैंक यू तो कहेंगे ऑन योर बिहाफ। वैसे उन जैसे टीचर्स स्टूडेंट्स की लाइफ में सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि हम तो कहेंगे कॉन्फिडेंस और ब्यूटीफुल मेमोरीज भी एकदम ऐड कर लेते हैं। सो विशिंग ऑल द टीचर्स हैप्पी टीचर्स डे। आप हमेशा इसी तरह हम सब की लाइफ को इंस्पायर और ब्राइट करते रहिए, ये हमारे गुड विशेस है फॉर ऑल द टीचर्स। तो आप भी अपने टीचर्स को याद करें, ये जो मौका है हम आपको देते हैं ऑलवेज उन सभी स्पेशल इवेंट को कैप्चर करने के लिए, और वो भी सुपर सुविनियर्स के साथ। हंसनी है एंड वी आर वेटिंग फॉर यू राइट ऑन 5499 12 94।

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: और हम तो कहेंगे लेट अस फील द लव अराउंड, यहाँ पे कुछ और रोमांटिक फीलिंग्स को हम बढ़ाते हैं। कभी कभी प्यार को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, बस किसी अपने का साथ चाहिए। कुछ रिश्ते इतने खास होते हैं कि उनके करीब आते ही दिल को सुकून मिलने लगता है और सारी दुनिया कुछ पल के लिए थम सी जाती है। And we have waited for a beautiful couple, Samantha and Yashke.

जहाँ पर धड़कने सुबह बन जाती है, कहते हैं सच्चा प्यार वही है जहाँ खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है और दूरियाँ भी पास होने का एहसास देती है. Enjoy this beautiful one, बाहों के दरमियान. और इसके साथ हम बढ़ेंगे अब शोले मॉस की ओर for the next race.

0: Tag and play.
1: RM2.
2: अच्छा जी, यहाँ पर ऐसा है कि प्यार हो गया है, दैट्स वेरी नाइस, और हम तो बस यही दुआएं करेंगे अल्लाह मियां से कि जहाँ पर आपका सच्चा प्यार है ना, उसमें बस डरा ना आए, वो दूरियां ना आए, स्टे स्ट्रॉन्ग टुगेदर। तो यहाँ पर अब पारे है तो शेयर सम गुड वाइब्स, वी आर हियर लेकर कुछ आपके मैसेजेस। लीना जी, हेलो, कैसी हो? वेलकम ऑन रेडियो मस्ती। आप हो फ्रॉम प्लेन दी रोश, आप तो आई हो टू विश योर फ्रेंड फातिमा हैप्पी बर्थडे, गुड विशेस टू योर दोस्त, और ऐसे ही आपकी दोस्ती हमेशा कायम रहे, गॉड ब्लेस यू। और इसके बाद लेट्स गो टू फ्लैक, वहां पर चलते हैं, थोड़ा सा घूमना भी होता है। रेडियो मस्ती के साथ एज ऑलवेज, तो जना जी का साथ और रेडियो मस्ती के साथ वो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है, क्या बात है, एंजॉय कर रही है। तो यहाँ पर गाना फॉर बेटी रीमा, जीनिता, शिस्तान, शिनी, सिल्विया, यूवी और कृषि भी है, और फ्लैक से सियोसरन परिवार जुड़े हुए हैं, जस्ट टू एंजॉय दिस वंडरफुल वीकेंड, थैंकिंग यू सो मच। और इतने खुश हो रहे हैं हमारे भाई साहब ऑल द वे फ्रॉम स्विट्जरलैंड जो आए हैं टू मॉरिशस, लगता है आज का सफर तो बहुत ही प्यारा है, राइट अंतिश जी, आपका वार्म वेलकम। वेली होप कि वैसे खाना पीना हो गया है, अभी एंजॉयिंग द आफ्टरनून इन मॉरिशस, एंड वेलकम टू यू टू ऑल योर परिवार। वी हैव गॉट अ स्पेशल गाना कमिंग अप, थैंकिंग यू सो मच एज ऑलवेज, जो यहाँ पर आप साथ निभाते हो। हैप्पी बर्थडे टू लवली मॉम, और नाम है सविता, सविता जी जो रहती है सेंट जूलिया विलाज, और आज आपकी प्यारी सी मॉम इज सेलिब्रेटिंग हर 51 इयर्स। हैप्पी बर्थडे टू योर लवली मामा, और विशेष उनके लिए आई है फ्रॉम अंशी, फ्रॉम कृष्णा, कविष्णी, विहा पापा कुमारन, दादी माया लक्ष्मी, और सभी परिवार है जो सेंट जूलिया विलाज से है, और सविता जी को विश कर रही है अ वेरी हैप्पी वाला बर्थडे। सब मिलकर धूमधाम से मनाएंगे आपके इस 4th of October को, जहाँ पर भी आपका साथ जारी है, मिलकर हम इस स्पेशल डेट को और भी खास बनाने वाली है। और जो हम सिटी विद यू ऑल अटिल 4 PM।
0: प्लग एंड प्ले
1: RM2,
0: प्लग एंड प्ले।

0: मेरी जान, ये था एक स्पेशल वन हमारे सभी लवर्स के लिए जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। वैसे कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और जिंदगी ही बदल जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसे फीलिंग्स हम लेकर आ रही हैं ऑन आवर ऑरेंज रेडियो मस्ती इन आज का प्लग एंड प्ले, जहाँ पर हंसनी है ना आपके साथ अप टिल 4 पीएम।
1: RM2 Radio Musti.
2: Hit music only.

That was a great show आज. That was a great musical journey for आज का plug and play. इतने सारे अच्छे अच्छे गाने जो हम लेकर आए. उम्मीद है कि आपने पसंद किए होंगे और बिल्कुल जो magical weekend है बस उनको जारी रखेंगे with a special musical mood. अभी 4 बजे सुनेंगे समाचार और इसके बाद आएंगे RJ संजय लेकर आज का next show. That will be आज का Bollywood टक टका टक with great entertaining songs जो आपके इंतजार में है. Wishing you all a happy weekend. Stay safe and take very good care. मिलेंगे जल्द.

0: शाम के 4 बज रहे हैं। सुनते समाचार अर्शिता जी के साथ नमस्कार।
1: नमस्कार संजय, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता कुछ ही सेकंड में एक कहानी तैयार कर सकती है, ऐसे में सवाल उठता है कि लेखक के लिए क्या बाकी रह जाता है, उसकी कल्पना, उसके अनुभव और उसकी संवेदनशीलता और शायद वह जुड़ाव पैदा करने की क्षमता जिसे कोई मशीन पूरी तरह दोहरा नहीं सकती। तुरदुस में आज आयोजित पुस्तक महोत्सव में लेखक, प्रकाशक और पाठक एक ऐसी चीज के इर्द गिर्द जुटे जो अभी भी पूरी तरह डिजिटल दुनिया के सामने कायम है, वह है किताब। अब बात करते हैं बच्चों की नजर से सड़क सुरक्षा की। पैदल चलने वाले हों या यात्री, बच्चे सड़क पर सबसे संवेदनशील उपयोगकर्ताओं में शामिल हैं। मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और ट्रैफिक मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी यूनिट जल्द ही एक ऐसा ऐप शुरू करने जा रहा है जिसका उद्देश्य कम उम्र से ही बच्चों में सड़क पर सुरक्षित व्यवहार की आदत विकसित करना है। फिलहाल देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में हर सप्ताह 50 मिनट बच्चों को सड़क सुरक्षा के बुनियादी नियमों की जानकारी दी जाती है। हमारी व्यस्त दिनचर्या में कुछ पल रुकना, कुछ नया बनाना और एक दूसरे के साथ समय बिताना हमेशा आसान नहीं होता। पीएफओ में आज रविवार को आयोजित कॉर्न की चौथी कलात्मक मुलाकात ने प्रतिभागियों को ऐसे ही कुछ सुकून भरे पल दिए। ये दिन सिर्फ मिलकर कुछ बनाने का नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ने और साथ होने का अवसर भी बना। यहाँ हर कोई अपनी रचनात्मकता और अपने अंदाज के साथ पहुँचा। कई हाथ मिलकर कार्डबोर्ड से एक घर तैयार किए। कोई काटता है, कोई जोड़ता है तो कोई दूसरों की मदद करता है और इस पूरी गतिविधि के दौरान बातचीत और आपसी मेल जोल भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। रॉसल स्थित एम्सो में जानवरों के प्रति संवेदना और सम्मान को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज 4 अक्टूबर को मनाए जा रहे विश्व पशु दिवस के अवसर पर आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया। ये समारोह जानवरों के संरक्षक माने जाने वाले संत फ्रांसवा दासीज की स्मृति से भी जुड़ा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय पायलट कप्तान स्मित मचार को इसराइल के अगले स्वतंत्रता दिवस पर जश्न की मशाल जलाने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने फ्लाई दुबई के कप्तान से कॉकपिट के अंदर 30 सितंबर को हुई घटना के बारे में बात करने के बाद इनविटेशन दिया है। नेतन्याहू ने स्मित मचार की हिम्मत और सूझबूझ की तारीफ की और कहा कि वे भारत और इसराइल के बहादुर लोगों के असली हीरो हैं और कप्तान स्मित पूरी दुनिया के हीरो बन गए हैं। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।

पिछले संडे को जाते जाते हमने आपसे वादा किया था कि आपसे मिलने अवश्य फिर आएंगे नेक्स्ट वीकेंड नेक्स्ट संडे और लीजिए निभाने आ चुके हैं हम ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती हमारे सभी ब्यूटीफुल लवली लिसनर्स को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेलकम ऑन रेडियो मस्ती म्यूजिक तक शाम के 7 बजे तक

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: जाने मेरे दिल को क्या हुआ, दिल को थामे रखिए फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। आशा करते हैं दैट यू नॉट गोइंग टू ज़ैप एट ऑल, यू गोइंग टू स्टे टू लिसन टू ईच एंड एवरी सॉन्ग। और बेशक आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा ऑन 5499294। ये मैसेज है टुडे शालिल गोकुल सिंह का जन्मदिन है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। विशेस कमिंग फ्रॉम वाइफ प्रियंका, बेटे नमीश, बेटी पूर्वी, आरती, विशाल, अवनीश, मम पूर्णिमा दाद, ईश्वरलाल, आश्लिया, आशनी, आरोही, अनवी, आर्या, राकेश, रूपा, लीना, ऋषि, हिमा, चांद, हरीश एंड ऑल नीसेस एंड नीफ्यूज ऑफ द डी यू एंड सुखा फैमिलीज विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जितने भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, यू आर शेयरिंग योर बर्थडे विद एक्ट्रेस सुहा अली खान, जिनको हमने देखा था इन द फिल्म दिल मांगे मोर, जिस फिल्म का गाना आप अभी सुन रहे हैं।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: विंदोली की बात तो काफी दूर है क्योंकि हम सब इस समय पितृपक्ष मना रहे हैं और अगले सप्ताह से ऑन संडे इस समय देवपक्ष भी शुरू हो जाएगा, दुर्गा पूजा भी शुरू हो जाएगी, नवरात्रि धूमधाम से हम मनाने लगेंगे और फिर उसके समाप्ति के बाद फिर शादी का मौसम छाएगा। अभी लेते हैं ये मैसेज। रिपाई की नवेदा और उनकी मामा हमें याद कर रही हैं, हमें सुन रही हैं। रिपाई, जहाँ से मैं अभी अभी गुजर कर आ रहा हूँ, नुवेल डे कुवैत, ओबुई, ले मारियान और कहाँ कहाँ पर मैं गया उस और बेलवेदेर, काव दे दे कोंगोमा के रास्ते पर भी मैं गया, फिर बेलवेदेर काव दे, बेलवेदेर काव दे पोंबों ड्यू, हाँ वहाँ पर से मैं आ रहा हूँ। वेरी नाइस प्लेस, वेरी मच ऑफ ग्रीनरी और बहुत सारे खेत वहाँ पर, बहुत सारे लोग खेतों में काम भी कर रहे थे और थोड़ी बारिश भी हो रही थी, दैट्स गुड। इन रास्तों पर से गुजरते हुए बहुत अच्छा लगता है, लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान सी होती है। सो सभी रिपाई के रहने वालों को हम करते हैं सलाम एंड थैंक यू फॉर बीइंग ट्यून इन ऑन टू

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: चलिए चर्चा करते हैं अपकमिंग फिल्म रामायण की। आफ्टर द ह्यूज सक्सेस ऑफ हनुमान अंश, जो अभी तक स्क्रीन किए जा रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, अब सबों की नजरें इज ऑन द रामायण ऑफ रणबीर कपूर एंड साई पल्लवी। और ये भी देखना है कि हाउ रावण की भूमिका यश निभाने वाले हैं सनी देओल साहब, किस तरह से हनुमान के अवतार में हमारे सामने आएंगे। इट्स ऑल वी ऑल वेरी थ्रिल्ड ये देखने के लिए कि ये फिल्म कैसे निभाएगी एट द बॉक्स ऑफिस, और किस तरह से लोग इस फिल्म को स्वीकार करेंगे। आपको याद होगा कि एक फिल्म आई थी जो उतनी चली नहीं थी सम टू इयर्स बैक। So we are already expecting high expectation on Ramayana Part 1 and scheduled to be released this Diwali around 5th of November

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: Of course, lots of events coming up. Kal, it will be Teacher's Day. Or fair next week, starting of Durga Puja. Like in today, aaj ki tarikh, what is special about today's 4th October? Today is World Animal Day. Yes, World Animal Day. Or काफी गतिविधियां आज की तारीख को आयोजित की गई, जिसके बारे में आपने न्यूज़ में सुना हुआ होगा. हम तो विल बी जॉइनिंग इट, विल बी कपलिंग इट विद बॉलीवुड. बहुत सी ऐसी फिल्में आई हैं इन बॉलीवुड जहां पर एनिमल्स हैव केप्ट सेंटर स्टेज. आपको याद होगा धर्मेंद्र वाली फिल्म जहां पर एलिफेंट को सेंटर स्टेज दिया गया था. और एक फिल्म आई थी मिथुन की, जिसमें एक कुत्ते तेरी मेहरबानियाँ, उस फिल्म में भी एक एनिमल को सेंटर स्टेज दिया गया था. सो वर्ल्ड एनिमल डे इज अ डे फोकसिंग ऑन एनिमल राइट्स एंड वेलफेयर, क्योंकि उनके भी हक होते हैं. एंड दे टू हैव राइट्स टू बीइंग ट्रीटेड वेल, बीइंग गिवन फूड, गिविंग प्रॉपर केयर, और साथ ही साथ एक अच्छी जगह रहने के लिए, और साथ ही साथ जब वे बीमार हो तो उनका इलाज भी उनका हक बनता है. और इसीलिए हर 4 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एनिमल डे.

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: शाम के 5:10 हुए हैं। नमस्कार आदाब एंड वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ म्यूजिक टकटकाटक। हम जानते हैं कि हर संडे को आप बहुत ही बेकरार होते हैं टू जॉइन इन दिस म्यूजिकल सफर एंड आई डू होप यू आर लविंग द कंपनी, यू आर लविंग द सॉन्ग सिलेक्शन। फील फ्री टू ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन 5499294। पोर्ट्री से नाशन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हैप्पी टीचर्स डे टू यू नाशन जी।

0: सेक्टर कटर
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: बाकी मैसेजेस। और ये मैसेज आया है इनकी ओर से, वीना जी फ्रॉम गजबस, हमेशा की तरह आपके आने से संडे हमारी बहुत ही खूबसूरत खुशी से भर जाती है। थैंक यू वीना जी। लेते हैं ये अगला मैसेज। मैं श्रेष्ठा हूँ,

रोशनी जी की ओर से जो फोन चिसा के रहने वाली हैं फॉर डैनी एंड साथ ही साथ फॉर द होल फैमिली. हेलो संजी, लवली संडे प्लेलिस्ट, प्लीज प्ले नेक्स्ट सॉन्ग फॉर मी. मैसेज है अनु जी की ओर से और ये मैसेज है कृष्ण जी की ओर से फ्रॉम कॉन्फू को लिखती हैं जय सिया राम, शी रियली लव दैट सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म रामायणा. And for all those working right now, we're wishing you all a bon courage. And I'm going to wish a very happy birthday to Choti Divisha, John ki pausada Vlal Machi. Which is coming from Dad Kevin, Mom Varsha, Bhai Jasveer, Dada Mahen, Dadi Vishwani, Chacha Kunal, Nana Ashore, Nani Anila and the whole K2 family. Happy, very happy birthday to little lovely Divisha.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ अभिषेक प्रमाणिक ब्यूटीफुल नेम एंड ब्यूटीफुल मैसेजेस हमारे लिसनर्स की ओर से भरद्वाज विदेशी फ्रॉम तयाक आपको हमारा सलाम और हमारे दोस्त अरविंद अलकोगी ने हमें एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज लिखा है प्लीज डेडिकेट नेक्स्ट सॉन्ग टू माय लाडली श्रेया हु एंजॉयज योर प्रोग्राम एंड योर सॉन्ग सिलेक्शन हेलो श्रेया बेटी वेरी नाइस डॉटर अरविंद साहब बेटी का ख्याल रखें There's a corner in our hearts always reserved for our daughter. और हमें भी आपकी बेटी बहुत अच्छी लगती हैं प्यारी बेटी हम सबों को अपनी बेटियों को एक एक्स्ट्रा लव देना चाहिए एक्स्ट्रा केयरिंग देना चाहिए And this next one goes for all the lovely beauties of Mauritius. चले लेते हैं ये नेक्स्ट मैसेज गुड इवनिंग हेलो संजी कैसे हैं आप हैप्पी संडे टू एवरीवन एंजॉयिंग योर वंडरफुल शो

Merci Etienne Chénard, Jogi Tiki aussi from Virgin Report. A nice song for all my dears, of course. Or ये message, Sachita Budhu Tiki also from Cambridge. कैसे हैं आप? I'm a big fan of Radio Masti. समुद्र पार रहकर भी मैं हमेशा Radio Masti के साथ जुड़ी रहती हूँ. लाजवाब गाने सुनने के लिए ऐसे ही entertain करते रहना. क्या आप मेरे लिए ये गाना चला सकते हैं? I'm sure you're going to love this next one, Sachita Ji. And thank you for sending us your beautiful messages from across the ocean.

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: म्यूजिक टकटकाटक
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: आज के स्पेशल सेगमेंट पर बात करने से पहले लेट मी टेल यू दैट स्टाइलिंग इंडियन वेयर रिलाइज ऑन बैलेंसिंग ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप विद मॉडर्न प्रोपोर्शंस कंफर्ट एंड पर्सनल रेस्ट्रेंट। इसको स्पष्ट रखने के बाद आज का थीम होगा सिलुएट एंड प्रोपोर्शंस, और इन पर वी गॉट फोर मेन टिप्स टू गिव यू। One is how to create negative space. Second, elongating the neck. Thirdly, how to streamline the color flow. Or chauthi, how to define the waist. In sab vichar karne par hi, you can enhance the silhouette and the proportions. So let's talk about creating negative space. Ye kaise hota hai? You allow your ankles to show with straight cut or A-line kurtas to make the silhouette feel lighter and taller. Second aspect, how to elongate the neck. Choose V-neck or elongated necklines instead of closed round collars to build a balanced vertical line. You say it will give an enhanced

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: 5:48 and you're listening to Music Tak Tak Tak Sanjay के साथ। कुनल की ओर से, कुशल की ओर से ये मैसेज आया है। कुशल जो कातुसियों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, wishing happy teachers day to all teachers। और साथ ही साथ I was just checking out some very nice quotes, and this one जो आया है मावा कोलिंस की ओर से, जो लिखती है the essence of teaching is to make learning contagious, to have one idea spark another. And you can tell me कौन सी teacher centered film आपको अच्छी लगी हो। I know many will talk about Sir, but if you have seen the film Special 30, if you have watched the film Special 30, आप हमें बता सकते हैं what are your opinions, आपको फिल्म कैसी लगी, and खासकर the role of Hrithik Roshan in the film।

शाम के 6 बजने में सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। समाचारों के बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी संगीत की दुनिया में। थैंक यू डियर लिसनर्स, जहां पर भी से आप रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हुए हैं। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी सूदिंग, रिफ्रेशिंग एंड नाइस संडे आफ्टरनून आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन पर।

रविवार 4 अक्टूबर 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पौना चौल के आसपास चलाई जा रही खोज कार्रवाई सातवें दिन पर पहुंच गई है। एनसीजी की टीमें उस 26 साल के भारतीय नागरिक को खोजने में लगी हुई है जो पिछले रविवार को देश के दक्षिण में स्थित पौना चौल में एक चट्टान से गिर गया था। शुक्रवार 2 अक्टूबर को लंदन में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और बरतानी राष्ट्रीय सलाहकार जोनाथन पावल के बीच शागुस मुद्दे पर हुई बैठक आज कई अखबारों की सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री के एक बयान का हवाला देते हुए लेक्सप्रेस जिमाश और वीकेंड ने अपने लेखों में कहा है कि अगर उचित समय सीमा के अंदर शागुस संधि को मंजूरी नहीं दी गई तो मॉरिशस कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपना सकता है। तवांग के लामीवा इलाके के रहने वाले लोग अपने आसपास पैडल और टेनिस कोर्ट 24 विला और 45 हाउसिंग यूनिट्स जैसी परियोजनाओं के कारण चिंता जता रहे हैं। उन्हें खास तौर पर संभावित परेशानियां और बाढ़ की समस्या के बिगड़ने की चिंताएं हैं जिनका सामना वे पिछले कई सालों से कर रहे हैं। स्पेन के कतालोनिया प्रांत में भारी बारिश के चलते भयानक बाढ़ उतर आई है। कई नदियां उफान पर हैं, दो लोगों के मारे जाने की खबर है और कई अन्य लापता बताए जा रहे हैं। पौना चौल के आसपास चलाई जा रही खोज कार्रवाई सातवें दिन पर पहुंच गई है। एनसीजी यानी नेशनल कोस्ट गार्ड की टीमें उस 26 साल के भारतीय नागरिक को खोजने में लगी हुई है जो पिछले रविवार को देश के दक्षिण में स्थित पौना चौल में एक चट्टान से गिर गया था। लुशालों की एक टीम आसपास के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और पर्यटकों को खाई के बहित खरी के करीब जाने से रोकने के लिए तैनात हैं। शुक्रवार 2 अक्टूबर को लंदन में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और बरतानी राष्ट्रीय सलाहकार जोनाथन पावल के बीच शागुस मुद्दे पर हुई बैठक आज कई अखबारों की सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री के एक बयान का हवाला देते हुए लेक्सप्रेस सीमांश और वीकेंड ने अपने लेखों में कहा है कि अगर उचित समय सीमा के अंदर शागुस संधि को मंजूरी नहीं दी गई तो मॉरिशस कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपना सकता है। के लामीवा इलाके के रहने वाले लोग अपने आसपास चल रहे रियल एस्टेट और मूल ढांचा परियोजनाओं को लेकर चिंता जता रहे हैं। पैडल और टेनिस कोर्ट 24 विला और 45 हाउसिंग यूनिट्स जैसी परियोजनाओं के कारण लोगों की आशंकाएं बढ़ रही हैं। उन्हें खास तौर पर संभावित परेशानियां बाढ़ की समस्या के बिगड़ने की चिंताएं हैं जिनका सामना वे पिछले कई सालों से कर रहे हैं। देश में जल भंडार की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश का कोई अनुमान नहीं है। अगर ये सही साबित हुआ तो पानी के वितरण में भारी बाधा पैदा होंगी। इस सिलसिले में इस हफ्ते एक क्राइसिस कमेटी की बैठक लगेगी। CWA के महानिदेशक शांतानु कल रात MBC के फ्रेंच बुलेटिन में मौजूद हुए थे। उन्होंने आपातकालीन योजना का ऐलान किया जिसमें जलापूर्ति सारिणी में बदलाव शामिल है। उनको

करते हैं। श्याम तानू ने कहा, एक आपातकालीन योजना है, अभी संबंधित प्रतिबंध योजना पर कार्य कर रही है। इस बात को रेखांकित करना चाहेंगे कि संकट स्थिति का सामना कर रही है। सरकार की ओर से एक समिति का गठन हुआ है जिसकी अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री कर रही है। अगले हफ्ते क्राइसिस कमेटी की बैठक लगेगी, संबंधित कदम उठाए जाएंगे, जैसे कि गंभीर प्रतिबंध और लोक

0: भंडारण हो घर पर ताकि दैनिक इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त पानी रहे। ये प्रश्न पूछे जाने पर कि अगर नवंबर दिसंबर महीने तक भी वर्षा न हो तो ऐसे में स्थिति का सामना कैसे किया जाए, इसके जवाब में श्यामतानु ने कहा कि माहो वाकवा में अभी स्थिति बहुत गंभीर है। दो नदियां हैं पितरे और पापाए, सीधा लामागी से वाटर फिल्टर स्टेशन से पानी पंप किया जाएगा। सामान्य स्थिति में माहो वाकवा को लामागी को करीब 1,10,000 क्यूबिक मीटर पानी पहुंचाता है, शुक्रवार तक लगभग 71,000 और शनिवार को 69,000 क्यूबिक मीटर पानी था। स्थिति काफी चिंताजनक है, ऐसे में प्रतिबंध लागू करने ही है। ये भी सुनिश्चित करेंगे कि समय सारणी निर्धारित हो, जनता को सूचित किया जाएगा ताकि लोग नकारात्मक तरीके से प्रभावित न हो।
1: जैसे कि हम आपको कुछ देर पहले बता रहे थे कि तमागे के लमीवा इलाके के रहने वाले लोग अपने आसपास चल रहे रियल एस्टेट और मूल ढांचा परियोजनाओं को लेकर चिंता जता रहे हैं। पैडल और टेनिस कोर्ट, 24 विला और 45 हाउसिंग यूनिट जैसी परियोजनाओं के कारण लोगों की आशंकाएं बढ़ रही हैं। उन्हें खास तौर पर संभावित परेशानियां और बाढ़ की समस्या से स्थिति बिगड़ने की चिंताएं हैं जिनका सामना वे पिछले कई सालों से कर रहे हैं। अंजू राम गुलाम की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
2: तमाहे में मुसलमान रामदीनी के लामीवा में बाशिंदे परेशान हैं। उनकी नाक के नीचे कानों को तकलीफ देने वाली और शांति भंग करने वाले टेनिस और पैडल कोर्ट्स बनाए जाएंगे। पैडल के लिए 80 से 100 डेसिबल की सीमा निर्धारित है, जबकि आवासीय इलाकों में ये सीमा सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक 60 डेसिबल है। जो इलाका अब तक हरियाली से घिरा था, वहां बारिश के बाद उगने वाले मशरूम की तरह तेजी से रियल एस्टेट परियोजनाएं सामने आ गई हैं, और अभी और बाकी हैं। यहां 24 विलास बनाए जाने वाले हैं।
3: On demande nous à ce qu'on nous écoute, à ce qu'on nous aide et à ce qu'on comprenne ce qui se passe.
2: यही नहीं, एक अन्य प्रमोटर ने 45 आवासीय इकाइयों वाले एक प्रोजेक्ट के लिए आवेदन दिया है। इनमें ग्राउंड फ्लोर 2 मंजिलें, तीसरे स्तर पर पेंट हाउस होंगे, नदी से कुछ ही कदमों की दूरी पर। निवासियों ने कई निर्वाचितों से संपर्क कर अपनी चिंता व्यक्त की। सांसद जुआना बेरोंजे ने उनके स्थल पर आने की मांग की। ये एक आवासीय इलाका है, पर्यावरण आदि को ध्यान में नहीं रखा गया है। आने जाने की एक ही सड़क है, पानी की कमी, सुरक्षा की कमी। जो लोग ये अपार्टमेंट खरीदेंगे वे नहीं जानते कि ये बाढ़ संभावित इलाका है। पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी औपचारिक ब्रीफ के अनुसार इस स्तर पर 3 स्थलों में कोई वेटलैंड शामिल नहीं। हालांकि लॉट 22 पर प्रस्तावित 45 आवासीय इकाइयों वाली परियोजना के मामले में अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। परमिट पर अभी विचार किया जा रहा है और मंत्रालय एक प्रारंभिक पर्यावरणीय अध्ययन की मांग करने की योजना बना रहा है। वेटलैंड हो या न हो, इस रियल एस्टेट परियोजना से लामीवा के निवासी बाढ़ की समस्या का सामना कर रहे हैं। सबूत के तौर पर उन्होंने वीडियोस भी साझा किए। उनके अनुसार पिछले 15 सालों से अधिक समय तक ऐसी स्थिति कभी सामने नहीं आई थी। पीबीएमसी समिति काम करके सलाह देती है। वे एप्लीकेशन पर काम करके देखते हैं कि सभी मापदंडों का पालन हो रहा है या नहीं। अलग अलग मापदंड हैं, जैसे पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि के लिए क्लियरेंस, सीईबी,
4: सीडब्ल्यूडी।
2: लामीवा के निवासी अभी भी अपनी आवाज उठाने का प्रयास जारी रखेंगे, अपने इस छोटे से हरे भरे इलाके को बचाने के लिए, जहां कंक्रीट का फीका रंग धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहा है।
1: और जैसे कि आपको बताया गया था कि पोनाचुल के आसपास चलाई जा रही खोज कार्रवाई 7वें दिन पर पहुंच गई है। एनसीजी की टीमें उस 26 साल के भारतीय नागरिक को खोजने में लगी हुई हैं, जो पिछले रविवार को देश के दक्षिण में स्थित पोनाचुल में एक चट्टान से गिर गया था। विशालों की एक टीम आसपास के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और पर्यटकों को खाई के करीब जाने से रोकने के लिए तैनात हैं। कुणाल गुजी की रिपोर्ट।
4: यहाँ मॉरिशस में रहते हैं, पहली बार इधर आए हैं
5: जी? पहली बार
4: मैं आपको बता दूँ, अब जहाँ आप जहाँ जा रहे थे

0: उधर भाई बहुत खतरा है। इधर आप जैसे देख रहे हो यहाँ एक ब्रिज है, देखने के लिए बहुत अच्छा है, बट यहाँ बहुत लोग अपने जान गंवा दिया है। ऐसे मैं बोलूँगी आप इधर ही से देखना, उधर मत जाना। जैसे आप देख सकते हो वहाँ पर भी बहुत सारे वेव्स आ रहे हैं। ऐसा सेल्फी ले रहे हो तो कभी एक वेव आकर पीछे से आपको ले सकता है, और यहाँ से भी बहुत चांस होता है आपको फिर ऊपर लाने के लिए, देख सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी उधर जाना ही नहीं, जो फ़ोटो लेना है इधर ही से लेना।
1: थैंक यू।
0: एंड आप जाओगे अपने फ्रेंड्स लोग को भी बोल देना जो यहाँ आना चाहते हैं, ताकि हम जितने चाहे आप लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि पोनाचुरल इज़ वेरी नाइस टू सी, बट यहाँ बहुत खतरा है। यहाँ आना है तो बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है।
1: ओके मैम,
0: थैंक यू। इधर से आप फोटो लो।
1: ओके थैंक यू।
2: ओके, मेरा एक दोस्त आया था इधर, वही जाके बताया वो जगह बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग आए इधर घूमने। हाँ, यहाँ पे बहुत सावधानी लेना चाहिए, नहीं तो आपको जान को भी खतरा हो सकता है।
3: हमारे दोस्त भी पहले आए थे, वो भी लोग बोले थे आप जाइए वहाँ पे घूम के आइए, बहुत अच्छा जगह। हम लोग आए, हमको यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा जगह है सेल्फी लेने के या फोटो लेने के लिए या घूमने के लिए, ये बहुत अच्छा जगह है। ये चीज़ को हमको ध्यान में रख के हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, जो डेंजर एरिया है उधर हम लोग नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए गार्ड भी हैं, हम लोग को मना कर रहे हैं इधर नहीं जाना है, वहाँ पे हम लोग उस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं।
4: सरकार अपने इकोलॉजिकल ट्रांजिशन रोडमैप की रफ्तार बढ़ाना चाहती हैं। स्थानीय बायोमास उत्पादन की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए पिछले 24 सितंबर को कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल की अध्यक्षता में एक राउंड टेबल चर्चा लगी। मॉरिशस के इंडस्ट्री अथॉरिटी की पहल पर आयोजित इस बैठक में इस सेक्टर से जुड़े साझेदार एक स्पष्ट मकसद के साथ एकत्र हुए। 2035 तक राष्ट्रीय ऊर्जा मिश्रण में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी 60% तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य के केंद्र में खेती से जुड़े नए तरीके, वन विभाग और आर्थिक आर्बिट्रेशन जैसे पहलू शामिल हैं। माधवी जगन्नाथ, रजनी विकर।
5: हमारे स्थानीय बायोमास के इस्तेमाल के लिए ठोस समाधान ढूंढना मॉरिशस केन इंडस्ट्री अथॉरिटी MCIA की ओर से पहल की गई है, और इसके लिए यही अहम मुद्दा। गन्ना प्राधिकरण की तरफ से ईख के एक गन्ने की एक नई किस्म प्रस्तावित की जा रही है, ताकि देश के ऊर्जा ट्रांजिशन में ये सहायक सिद्ध हो। मॉरिशस केन इंडस्ट्री अथॉरिटी के CEO डॉक्टर सुमन सिरतन ने कहा, बहुत से ईख के खेत त्याग दिए गए थे। 4 वर्षों की एक बड़ी परियोजना है जिसके तहत 1500 हेक्टेयर त्यागी हुई जमीन पर फिर से खेती की जाएगी। ऐसा करते हुए मौका से फायदा उठाते हुए क्लासिकल वैरायटी की तुलना में अधिक फाइबर वाली किस्म पर ध्यान केंद्रित करेंगे। गन्ने के संबंध में गन्ने के पत्तों को भी जमा करने की बात शामिल है। कुल 500 गीगावाट से 2030 प्रति घंटे तक का लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन इस ट्रांजिशन में केवल गन्ना ही नहीं है, एक अन्य अहम मुद्दा भी है, वो है हमारे जंगल। कृषि उद्योग मंत्रालय के फॉरेस्ट कंजर्वेटर पूजन राज खरन ने कहा, उद्देश्य है अनुकूल पेड़ों के साथ फिर से जंगल को व्यवस्थित करना, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी की योजना पूरा कर सके। प्रतिवर्ष 100 टन लकड़ी है अभी। इन दिनों सरकार ईख के पत्तों और बायोमास के लिए ₹3.50 किलोवाट प्रति घंटे के हिसाब से पैसे चुका रही है। बिजली के स्वतंत्र उत्पादक इस टैरिफ के बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। बिजली के इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के प्रवक्ता ग्रेगोरी बाथफील्ड ने कहा, इससे आयात की जाने वाली ऊर्जा पर कम निर्भर होंगे, जो कि मुद्रा के हिसाब से ज्यादा महंगा है। अभी दाम पर गौर करने की दिशा में काम कर रही है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। स्थल की हकीकतों के चलते कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल व्यावहारिक होना चाहते हैं। स्थानीय उत्पादन काफी नहीं होगा। 9 वर्षों में 60% मिक्सर एनर्जी तक पहुंच पाने के वास्ते बायोमास आयात से नहीं बचा जा सकेगा, उन्होंने कहा।
6: बायोमास इन एन रोल बियान अपोर्टर अवेक लेज़ बायोमास।
5: अन्य बायोमास की तरह बागास की एक अहम भूमिका है। MCIA का एक शेड है जिसे परिवर्तित किया जाएगा। सख्त सैनिटरी नियम है, एक तरफ ईख के गन्ने होंगे तो दूसरी तरफ बायोमास, और कोई विकल्प नहीं। धीरे धीरे बायोमास बढ़ाएंगे तो आयात कम करेंगे। इस ट्रांजिशन से स्पष्ट संकेत, रेजवी में बायोमास के लिए समर्पित एक प्रयोगशाला का उद्घाटन, जहां पर इस्तेमाल किए

0: आने वाले पदार्थों का विश्लेषण किया जाएगा। जहाँ तक वार्ता की बात है तो बहुत जल्द सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी ताकि स्थानीय शाखा की आर्थिक एवं लॉजिस्टिक आर्बिट्रेशन निर्धारित हो, जो कि मॉरिशस के लिए ऊर्जा संबंधी रोडमैप के लिए अहम है।
1: कई हफ्तों की बातचीत के बाद सेंट्रिक्स के 300 से अधिक कर्मचारियों और कंपनी के प्रबंधन के लिए एक स्वीकार्य समझौता आखिरकार तय हो गया है। कॉन्सेंट्रिक्स के बंद होने से मॉरिशस में बीपीओ सेक्टर के भविष्य पर एक बार फिर चर्चा हो गई है। एक अंतर मंत्री स्तरीय समिति वर्तमान में नई चुनौतियों का सामना कर रहे इस सेक्टर के पुनर्गठन पर काम कर रही है। यासीन दिल मोहम्मद की रिपोर्ट पर पूजा सुकालू का विवरण।
2: अस्थिरता में जीना ज्यादा मुश्किल होता है। कई हफ्तों तक श्रमिक संघ, कंपनी के प्रशासन और श्रम मंत्रालय के समझौतों के बीच कॉन्सेंट्रिक्स के कर्मचारी बिना जवाब ही रह गए। आखिरकार शुक्रवार को ग्रुप के शेयर होल्डरों की बदौलत उम्मीद की किरण नजर आई। दो महीनों का समझौता तय हुआ है। वेतन, सालांत का बोनस, कैजुअल लीव, वैकेशन आदि की भरपाई अलग से की जाएगी। मंत्रालय ने इस फैसले की सराहना की। श्रम मंत्री बताते हैं,
3: कंसेंट्रिक सोसी पाचीना कास पू पे ट्रावायर एक्शनियर एन रिकॉग्निशन ले ड्यू ट्रावाय टूट सा लॉन्ग लानी सैक्रिफाइस।
2: कॉन्सेंट्रिक्स के पास कर्मचारियों के वेतन के लिए पैसे ही नहीं थे। शेयर होल्डर कर्मचारियों की कड़ी मेहनत को ध्यान में रखकर पैसे चुकाने को राजी हुए हैं। कॉन्सेंट्रिक्स से परे पूरा बीपीओ क्षेत्र कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और वेतन को लेकर बढ़ी हुई उम्मीदों के कारण एक अंतर मंत्रालय समिति सुधारों पर विचार कर रही है।
3: Parce que nous encore, il y a beaucoup à offrir en termes de qualité du service qui va nous ressembler. Le fait que nous
2: रणनीतियों पर फिर से विचार किया जाना होगा। बहुभाषी होने के नाते हम विदेशी कंपनियों को सहयोग दे सकते हैं। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव्स के साथ आगे आना पड़ेगा। समिति का काम शुरू हो चुका है। रिपोर्ट कैबिनेट को सुपुर्द की जाएगी।
1: ओम्बड्सपर्सन फॉर चिल्ड्रन दफ्तर ने शुक्रवार को कोरा आर्ट सेंटर में अपनी 2025-2026 रिपोर्ट प्रस्तुत की। लगभग 200 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में कई अध्याय शामिल हैं, जो मुख्य रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों के अधिकारों, गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बच्चों, ऑटिज्म और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तथा अन्य विषयों को समर्पित हैं। याद रहे कि जुलाई 2025 और जुलाई 2026 के बीच ओम्बड्सपर्सन दफ्तर ने 363 मामले दर्ज किए, जिनमें से 6 रोड्रिग्स के थे। इनमें 167 मामले स्कूल से जुड़ी समस्याओं के रहे, जिनमें बुलिंग शामिल रहा। 63 मामले पारिवारिक समस्याओं से जुड़े थे और 11 मामले दिव्यांग बच्चों से संबंधित रहे। ओम्बड्सपर्सन फॉर चिल्ड्रन ने अपनी 2025-2026 रिपोर्ट में मॉरिशस में ऑटिज्म बच्चों की स्थिति पर एक अध्याय शामिल किया है। दफ्तर में दर्ज की जाने वाली शिकायतों की संख्या से पता चलता है कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए अच्छे किस्म की और समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सिंचामुत्यु यचना मिश्रा।
2: मॉरिशस में ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों की देखभाल और शिक्षा व्यवस्था में मौजूद कमियों की पहचान करने तथा उनके अधिकारों और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अधिक समावेशी शिक्षण के लिए ओम्बड्सपर्सन फॉर चिल्ड्रन ने संबंधित साझेदारों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया। प्रमुख बाधाओं पर विशेष रूप से चर्चाएँ की गईं। कई बच्चे समस्याओं से जूझ रहे हैं, माता पिता परेशान हैं, हमने सिफारिशें की हैं। कानूनी स्तर पर ऐसे बच्चों की देखरेख के लिए कई कमियां पाई जाती हैं, खासकर 3-5 साल की उम्र के बच्चों के लिए। प्रमुख मुद्दों में ऑटिज्म के बारे में सीमित जानकारी, जो भेदभाव को बढ़ावा देती है, शामिल हैं। इसके अलावा कई कक्षाएं बच्चों की जरूरतों के अनुरूप नहीं और आवश्यक संसाधनों तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी कमी है। दिव्यांग बच्चों या ऑटिज्म जैसी बीमारी में जी रहे बच्चों के लिए समावेश

0: शिक्षा को नियंत्रित करने वाले एक मजबूत कानूनी ढांचे का अभाव भी समस्याओं में शामिल है। विशेष देखभाल की जरूरत वाले बच्चों के लिए आवासीय सुविधाओं की कमी है। माता पिता और देखभाल करने वालों के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन और सहायता का अभाव भी है। इन बच्चों की शैक्षणिक देखभाल और सहायता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई प्रस्ताव रखे गए। ऑम्बुड्समैन दफ्तर चाहता है कि संबंधित अधिकारी इन सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
1: 2019 में होल्डेम सेन स्कूल विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले बच्चों और युवाओं की स्कूली शिक्षा और उनके विकास में सहायता कर रहा है। कैटरबोन में स्थित इसके दो संस्थानों में लगभग 100 छात्र पढ़ाई करते हैं, जहाँ पिसक से लेकर प्री वोकेशनल और वोकेशनल तक के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। उनकी क्षमताओं के अनुसार अनुकूलित शिक्षण पद्धति उन्हें अपनी गति से आगे बढ़ने में सहायता देती है। अश्विनता बंटू, पूजा सुकालू।
2: होल्डेम सेन स्कूल में लयका लोग के सहयोग दे के शुरुआत हर छात्र की क्षमता के निमन ढंग से समझे से होला। हर एगो लयका की क्षमता के मूल्यांकन करला के बाद शिक्षण के हर एगो छात्र के व्यक्तिगत जरूरत और ओकर सीखे के गति के अनुसार ढालल जाला। मेरिटेस बिहारी बोलेलन, कोनो लयका अकादेमिक स्तर पर कमजोर रहेलन सा, यही खातिर हमनी लोग थेरापी की कक्षा चलाइला सा गतिविधि के माध्यम से, जैसे कि खाना पकाए के, बागबानी। अब जो लयका में क्षमता भाव पैसा की परीक्षा दे के तो हमनी उ लोग के तैयार करीला सा, तब जाके ई लोग कोनो कॉलेज में दाखिला पाई सकेलन सा। दोनों संस्था में 33 कर्मचारी की एगो टीम बाटे, जेकर में खास करके शिक्षक सहायक और देखभालकर्ता शामिल बा। लयका के रोजाना सहयोग और मार्गदर्शन देवेलन सा, मगर सीखे के प्रक्रिया में व्यावहारिक और रचनात्मक गतिविधि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभावेला। हाल ही में आयोजित एगो ओपन डे में संस्थान छात्र लोग के एगो खास विषय पर काम करे के अवसर दिलक, जो डायनोजोर। इलाका लोग ई गतिविधि के माध्यम से अपन क्षमता दिखावेलन सा, उ लोग के रचनात्मकता, अभिव्यक्ति और आत्मनिर्भरता के विकसित करे में भी मदद करेला।
1: खबरों को आगे बढ़ाती हैं। 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 157वीं जयंती मनाई गई। इतने साल बाद आज भी उनके सिद्धांत दुनिया भर में सत्य, अहिंसा और सद्भावना जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं। बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए परंपरा अनुसार इस बार भी लामोचा गांधी भवन में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए पोर्ट लुइस के डायोसेस ने ड्रग्स का सेवन करने वालों और उनके परिजनों को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए एक अंतरधार्मिक समूह बनाने का आह्वान किया है। पिछले गुरुवार को रोजिल स्टेट इंस्टीट्यूट कार्डिनल जॉन मॉजेओ में प्रशिक्षण का दूसरा सत्र आयोजित किया गया। नशीले पदार्थों, तस्करी, खपत और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से जुड़े नवीनतम आंकड़े साझा किए गए। इस नर्क में फंसे लोगों की बेहतर सहायता करने के लिए अपने अपने समुदायों में लौटने से पहले अन्य चर्चाएं भी निर्धारित हैं। वालेरी काली, याचना मिश्रा।
0: रुचि के साथ लोग इस प्रस्तुति को सुनने आए। आर्य सभा मॉरिशस द्वारा संचालित उपचार और पुनर्वास केंद्र से विमला जदुनंदन ने तथ्यों को आधार बनाकर ड्रग्स की समस्या और उससे जीवन में उत्पन्न बाधाओं पर बात की। वे बताती हैं,
3: L'âge de prise de drogue peut baisser, hein? La quantité de personnes qui ont traitement, nous trouvons bien peu de dames, bien peu de filles là-dedans, plus de monsieur.
0: ज्यादा से ज्यादा कम उम्र के लोग और पुरुष लड़के आदि ड्रग्स लेते हैं। हमारा मस्तिष्क 25 साल की उम्र तक विकसित होता है और यदि इस उम्र की सीमा के अंदर ड्रग्स लिया जाए तो आप ही सोचिए कि मस्तिष्क पर इसका क्या प्रभाव होगा। इस संवाद की पहल पोटवी गिरजाघर की ओर से की गई। ये दूसरी बार है जब धार्मिक प्रतिनिधियों के साथ गैर सरकारी संगठनों के जिम्मेदार सदस्य और विशेषज्ञ एक साथ आए, ताकि वे राष्ट्रीय चुनौती बनी इस समस्या को समझे और अपने विचार बांट सके। क्या कोई भी मॉरिशन परिवार इससे बचा है? कोई ना कोई रिश्तेदार इसके चंगुल में है। धर्म शायद कुछ उम्मीदें लेकर आई, लेकिन मानवता का क्या? ड्रग्स किसी भी समाज को मानवताहीन बना सकता है।
4: peut-être une espérance, une parole, mais comment garde l'humanisation? Ben là, c'est ça. La drogue déshumanise une société.
0: सत्र के अंत में कैथोलिक चर्च को उम्मीद है कि धार्मिक प्रतिनिधि न केवल

0: अपने समुदाय में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे, बल्कि विभिन्न धर्मों के बीच आपसी सहयोग भी मजबूत होगा। हम अलग तरीके से जानकारी हासिल कर रहे हैं और अब हम जाकर सभाओं में ये संदेश देंगे। हम उन लोगों को सुनेंगे, उनकी स्थिति के बारे में ज्यादा समझेंगे।
1: Nous allons nous écouter autres, nous écouter autres qui autres problèmes, qui fait zone rentre là-dedans, qui a fait qu'une influence autre rentre ça dans la drogue là.
2: Sa mission et sa travail qu'il fait aujourd'hui, il permet nous capable de dire, mobiliser toi comme coup de main, you are the right resource person to talk to that target market. T'as vraiment pas t'as un exemple pour dire, moi dans pays, moi qui est une religion religieux musulman.
0: आज हमने ये जाना कि हम अपनों के बीच संदेश पहुंचाने के लिए सही माध्यम हैं। मान लीजिए पाई में मुसलमान होते हुए यदि मैंने किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को समझाना चाहा, तो शायद मेरी बातों पर उतना दम नहीं होगा जितना कि उस व्यक्ति के धर्म का कोई दूसरा जन। हम साथ मिलकर ये आश्वस्त कर पाएंगे कि हमारा देश स्नेह से ज्यादा भरा है। आने वाले सत्रों में अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाएगी ताकि धार्मिक प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के बीच इस संवाद का सकारात्मक प्रभाव पूरे समुदाय में देखने को मिले।
3: आज वे 104 वर्ष की होती सैतुबे में जन्मी लेडी सुशील राम गुलाम अपने परिवार की यादों में एक सतर्क माँ और ससिव सागर राम गुलाम के साथ एक शांत उपस्थिति के रूप में जीवित हैं। सुर्खियों से दूर उन्होंने अपनी सादगी और कर्तव्य की भावना से अपने आसपास के लोगों पर गहरी छाप छोड़ी। इस पर ज्यादा जानकारी अश्विनता भंटू की रिपोर्ट पर करुणा लालू के विवरण के साथ।
4: ससिव सागर राम गुलाम के साथ उन्होंने सदैव ही शांत और निरंतर मौजूदगी बनाए रखी। फर्स्ट लेडी को मुख्य रूप से उनके पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए याद किया जाता है।
5: Moi aussi, social, quand j'ai mon maman avec l'aide des pauvres cousines. Mais ce qu'à enfants, moi, ça l'a carré, mais c'est moi aussi, tous les temps, avec nous. Jamais, ils prennent des listes, nous. Son caractère, c'est un caractère super, c'est bien content enfants, c'est bien content famille, c'est bien simple.
4: Saint-Aubin, mais on a eu 2 octobre 1922, ce qu'on a eu.
6: C'est qu'il me connaît avec le docteur Ram Goulam, il est bien content, son maman. Son maman, c'est bien content, lui. Et que ce moment, ce bénédiction, tous les temps, lié en lit.
7: Le premier fait, c'est l'idée du Parti travailliste. Ça symbolise ça, une grande dame qui discrète le profil, mais c'est eux qui font succès de SSR.
8: Traditionnellement, nous ne célébrons ça l'événement-là aujourd'hui ici en mémoire de Lady Chouchil Ram Goulam, qui est née à Saint-Aubin.
9: Nous connaissons comment les Tibésains sacrifient en tant que maire et en tant qu'une madame Ndimoun quand les sommissiers les Tibésains allent de l'avant pour gouverner Maurice.
4: ससिव सागर राम गुलाम की सार्वजनिक छवि के पीछे एक महिला थी, एक पत्नी, एक माँ और साथ ही परिवार का एक मजबूत स्तंभ।
3: रॉसिल स्थित एम्सो में जानवरों के प्रति संवेदना और सम्मान को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 4 अक्टूबर को मनाए जा रहे विश्व पशु दिवस के अवसर पर आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया। ये समारोह जानवरों के संरक्षण माने जाने वाले संत फ्रांसवा दासीज की स्मृति से भी जुड़ा है। इस वर्ष की थीम है उनकी नज़र से दुनिया को देखिए, यानी सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आईज। उनके लिए बुबुना सिर्फ एक कुत्ता नहीं है। 15 साल की उम्र में यह वफादार साथी आमिर के जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। ये मेरे लिए सब कुछ है, मेरा प्यार है, ये हमेशा हमारे साथ आशीर्वाद की तरह रहे। आज उनके मालिक बुबुना को माइक्रोचिप लगवाने के लिए एम्सो लेकर आए। ये कुत्ते के लिए भी जरूरी है जिससे समाज में इसे पहचाना जा सके। कभी भी ऐसा हो कि ये गुम हो जाए तो इसके माइक्रोचिप के जरिए हमें इसके मालिक का पता चल पाएगा। लेकिन बुबुना अकेला ऐसा जानवर नहीं था जिसे आज खास ध्यान मिला। रॉसिल स्थित एम्सो में पिल्ले आपस में खेलते नजर आए और देखभाल करने वालों के करीब आकर प्यार और दुलार का आनंद लेते भी। उनकी आंखों में मासूमियत के साथ एक उम्मीद भी नजर आई।
10: और यहाँ पे मेरा काम बिल्कुल चेक करना पड़ता है, अगर सर्जरी करना है सर्जरी प्रिपेयर करके डॉक्टर को देना है, इसलिए ये काम करते हैं। उसको दुख में से निकालने के लिए।
3: विश्व पशु दिवस के अवसर पर आयोजित इस आशीर्वाद समारोह में चार अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्री अरविंद बुलेल और जूनियर मंत्री फाब्रिस दावित

0: तथा कई पशु प्रेमी मौजूद रहे। सभी ने जानवरों के प्रति संवेदना और सम्मान के महत्व पर जोर दिया।
1: परमात्मा ने बनाया अनेक प्रकार के प्राणी, इसमें मनुष्य आता है, चिड़िया आती है और इसमें चार पैर वाले जानवर भी आ जाते हैं। इसी कारण मनुष्य के कर्तव्य ये बनता है कि वह औरों के प्राणी के प्रति अपना जो प्रेम है, अपनी सेवा है, प्रस्तुत करे।
0: एम्सो के लिए जानवरों की सुरक्षा का मतलब ठोस कदम उठाना भी है। कुत्तों की नसबंदी को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि उनकी संख्या में बढ़ोतरी और आगे चलकर आवारा कुत्तों की संख्या को कम किया जा सके। ये स्थिति पर ध्यान देते हुए हम माइक्रोचिपिंग और कुत्तों के रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे जान पाए कि कितने कुत्ते हैं। इस विश्व पशु दिवस का संदेश सार्वभौमिक है, उनकी नजर से दुनिया को देखना सीखना, हमारे जीवन में उनके महत्व को समझना भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेन के कैटालोनिया प्रांत में भारी बारिश के चलते भयानक बाढ़ उतर आई है। कई नदियां उफान पर हैं, दो लोगों के मारे जाने की खबर है और कई अन्य लापता बताए गए हैं। बढ़ते हम अब मौसम संबंधी जानकारी की ओर रजनी बेकर के साथ।
2: दक्षिण पूर्व की ओर से जो बादल बढ़ रहे हैं वे रह रहकर हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि रात में आमतौर पर आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी ऊंचाइयों पर। रात के दौरान और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे और कुछ बारिश भी हो सकती है, मुख्य रूप से देश के पूर्वी इलाके, दक्षिणी इलाके और सेंट्रल प्लाटू पर। ऊंचाइयों पर कोहरे छाए रहेंगे। दिन के दौरान मौसम अच्छा रहेगा। दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। वर्षा होती रहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण में 2.50 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। फिर भी कल दिन के दौरान इसमें सुधार आने लगेगा। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 15 और 17 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 22 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 27 एवं 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 6:08 पर सूर्यास्त, सुबह 5:47 पर सूर्योदय।

तो इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। कंसल्ट पर हमारे सहयोगी शिव हैं, उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर। सुल्फिरिनु नंबर तीन वाकवा में 89 साल के श्री सत्यानंद दीपचंद जिन्हें माँ जोदालों के नाम से बहुत ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे किशन दीपचंद के घर सुल्फिरिनु नंबर तीन वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बालोंस नंबर 5 सुल्फिरिनु की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुमोरो 10 AM कावली सौरोद दुफ्रे में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री नीलाधर मंगल जिन्हें हरिदेव के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके घर दुफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए भूषों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुमोरो 9 AM अलीमोंग पोस्ट दिफ्लक में 57 साल की 57 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सविता जरी जिन्हें पिक पिक के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे उनकी माँ माहिनी जरी के घर पोस्ट दिफ्लक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुमोरो 9 AM थ्वाजियम अली गड मेबर्ग में 68 साल की

0: 68 years old की श्रीमती गोमती देवनारायण, श्रीमती गोमती देवनारायण पैदाशम रामफल और जिन्हें मदम रामफल के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके घर मेबक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो लेन मेबक के शमशान मुंह में ले जाया जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 11 AM। अविनीसियाकूफ कैट्रबोन में 63 साल के 63 years old के श्री संदेश कुमार सिलोचन जिन्हें चिबाई के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे लाशापेला ओदोंत दे मुगा पिछित रविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स के शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: On MBC Play and MBC.mu.
2: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, MBC.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
3: Music, Dr. Gutter. RM2, Radio Musty.

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: नमस्कार आदाब, जय सिया राम एंड वेलकम इन द लास्ट आवर ऑफ म्यूजिक टकटकाता संजय के साथ। थैंक यू साथ निभाने के लिए इतनी समय के बाद भी। दिस वन गोइंग फॉर मम सुरेखा, नानी लीलावटी के लिए, लवली डॉटर वर्षा की ओर से।

0: week, Dr. Gutter.
1: RM2, Radio Musty.
2: छः बजकर 48 मिनट एक काफ़ी दिलचस्प मैसेज आया है श्रीमान मिस्टर कमल दसानी की ओर से. लिखते हैं कि हाय, ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल एनिमल डे कैन यू प्ले अ सॉन्ग रिलेटेड टू ऑल द लवली एनिमल्स. प्रोग्राम के दौरान भाई कमल जी, आई डिड टॉक अबाउट ऑल द फिल्म्स दैट बीन मेड इन बॉलीवुड जिसमें एनिमल्स हैव प्लेड अ सेंट्रल रोल. And we can recall in the 70s we had a film Hathi Mere Saathi 1971 में featuring Dharmendra and an elephant. In 1989 we had Maine Pyar Kiya with Salman Khan and Bhagyashree with the Kabutar. और फिर we did have other films जैसे कि तेरी मेहरबानियाँ, मिथुन एंड दैट फेमस डॉग. सो अभी अभी जो गाना हमने चलाया बेजुबा, इनफैक्ट ऑल दीज एनिमल्स दे डोंट हैव एनी लैंग्वेज जिसके जरिए वे हमसे बात कर सकते हैं. दे कैन ओनली एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू देयर लव, थ्रू देयर बार्किंग, थ्रू देयर चर्पिंग. और किस तरह से वे रिलेट टू अस, हमको समझना है कि अगर कुछ तकलीफ पर से वे गुजर रहे हैं तो हाउ वीन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, देयर वॉन्ट्स एंड वदर इफ दे आर सिक, दे आर इल. तो इन बेजुबान जानवरों के प्रति हम किस तरह से

व्यवहार कैसा होता है, हाउ डू वी एक्ट, हाउ डू वी रिएक्ट एंड हाउ डू वी रेसिप्रोकेट देयर लव एंड देयर अफेक्शन. दिस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड एनिमल डे, क्योंकि उनकी भी एक व्यक्तित्व है, उनकी भी चाह होती है. एंड वी शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एनिमल्स दैट वी कीप इन आवर होम्स. Because after all our pets are part of the family.

शाम के 4 बजे से लेकर अभी तक आपने बहुत ही प्यार से हमारा साथ निभाया, आप सबको बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे बाद हमारे दोस्त निखिल आ रहे हैं, उनका साथ जरूर निभाएं। हमें आज्ञा दें, बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीक अहेड।

0: घड़ी मिलाते चलिए इट्स एग्जैक्टली 7 पीएम
1: आरएम2 रेडियो मस्ती.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू अनदर संडे नाइट हमारे साथ मैं हूं निखिल और अगले दो घंटे हम बात करेंगे उन गानों की जो सिर्फ हम सुनते नहीं बल्कि कभी कभी उनमें खुद को सुन लेते हैं हम वीक की भाग दौड़ धीरे धीरे पीछे छोड़ दो और दिमाग को फाइनली बोल दो कि चलो अब थोड़ा म्यूजिक हो जाए तो आज की रात कोई रश नहीं कोई डेडलाइन नहीं बस आप मैं और बॉलीवुड के बेहतरीन तराने और कुछ बीच बीच में आपके फलसफे आपके पैगाम वो तो होता रहेगा जस्ट टू टेल यू दिस इज बॉलीवुड सिज़ला ओनली ऑन रेडियो मस्ती

0: Radio Mass.
1: Bollywood Sizzler.
2: RM2, your number one Bollywood radio station.
3: जी हाँ, दिस वॉज हारिया फ्रॉम द मूवी मेरी प्यारी बिंदु. दिस मूवी केम आउट इन 2017. अभी 10 साल हो गए अरिजीत सिंह की आवाज़ को, उससे ज़्यादा हो गए. लेकिन ये हमें सोचने को मजबूर कर देता है कि यार टाइम इतनी जल्दी कैसे निकल जाता है. कल ही तो लग रहा था कि स्कूल में थे, फिर कॉलेज में, फिर काम, और देखते ही देखते कुछ साल आंखों के सामने निकल जाते हैं. और फनी बात यह है कि वक्त को गुजरते हुए हम कभी फील नहीं करते, हम बस मोमेंट्स कलेक्ट करते जाते हैं, उनको बटोरते जाते हैं. और एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो रियलाइज़ होता है कि भाई कितनी कहानियाँ बीत गई हैं.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: Chahta kitna tumko dil tum nahi jaante. Janna chahte hain bhai, aap bhi message bhej sakte ho hame janne ke liye. 5499-1294 is the magical number. Number wahi hai lekin paigham aaj aapke naye naye aa rahe hain. Jaise ki ye agla gana jo hum karne wale hain, especially Yalesh bhai ke liye from Suriname. ये खास आपके और आपके फैमिली के लिए, और साथ ही साथ ये गाना हम करेंगे तो दलगेश समीता एंड नीव फ्रॉम एंड दिस इज फ्रॉम द बिहाफ ऑफ श्रेष्ठा फ्रॉम फोजुसाक. गाने का टाइटल और गाने का नाम एक ही है, कल हो ना हो, सोनू निगम की आवाज़ में.

0: with Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: प्यार के बारे में एक चीज बताऊं, हम प्यार को एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश करते हैं कि ऐसे एक्सप्लेन होगा कि शब्दों में उसको ढालने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन जब कोई अच्छा गाना बजता है ना तो पता चलता है कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, बस कुछ सुर, बस कुछ साज कभी कभी वो कह देते हैं जो हम खुद नहीं कह पाते। सो टुनाइट अगर कोई खास इंसान याद आ रहा है या आ रही है, 5499-1294 इज द मैजिकल नंबर, शायद ये गाना उन तक पहुंच जाए। दिस इज बॉलीवुड सिज़ला, योर ऑन रेडियो मस्ती।

0: Hollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, आज है अक्टूबर का पहला संडे और प्यार मोहब्बत की बातें अभी हो रही थी। प्यार मोहब्बत की बातें जब करते हैं तो वी इमेजिन अ पर्सन, या तो एक ही होगा या शी होगा, लेकिन इट को इमेजिन नहीं करते। टुडे इट्स एक्चुअली वर्ल्ड एनिमल डे, जहाँ पर हम एनिमल्स के वेलफेयर और उनके क्वालिटी लाइफ के बारे में सोचते हैं, क्योंकि दे आर इक्वल पार्ट्स इस धरती पर रहने वाले। या उनके प्रति भी प्यार, उनके प्रति भी सेफ्टी, हाइजीन, ये सब हमें देखना पड़ता है। और ये जो वर्ल्ड एनिमल डे है, ये उसके बारे में सोचने के लिए है। तो खासकर उस एनिमल लवर्स के लिए जो आज सेलिब्रेट

कर रहे हैं उनके लिए ये अगला गाना जो कि हमसे मांगा है कमल दसानी और उनकी बेटी छवि दसानी ने. एक्चुअली उन्होंने ये बताया था कि आज इंटरनेशनल एनिमल डे है. थैंक यू वेरी मच कमल जी. और आपका जो गाना है वो हम चला नहीं पाएंगे, उसके बदले एंटरटेनमेंट मूवी का ये गाना.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ बंदे, आपने अभी अभी अपना रेडियो खोला है तो आपको बता दें दैट यू लिसनिंग टू बॉलीवुड सिज़ला। मैं हूं निखिल और अगला एक घंटा रह गया है हमारे इस बॉलीवुड सिज़ला में। हमारी जर्नी का दूसरा स्टेज शुरू हो चुका है। तो पर दोपहर की वो सर्द आसमां अब धीरे धीरे पीछे छूट रही है और हम आ गए हैं उस वक्त में जहां दिन का काम खत्म हो चुका है ना। जो करना है कर लिया, अब कोई डेडलाइन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, अब सिर्फ म्यूजिक। और इसके साथ साथ प्लेलिस्ट में भी थोड़ा सा चेंज लाते हैं। ये जो आखिरी एक घंटा रह गया है, इट्स गोइंग टू बी सॉन्ग्स दैट हम सुनते हैं फिर वक्त की अलमारी के एक कबर्ड में डाल देते हैं, उसको भूल जाते हैं। आपको याद दिलाने के लिए ही तो मैं यहां पर हूं। 5499-1294 अगर कुछ ऐसा गाना आप सुनना चाहते हो, नहीं तो मेरी सिलेक्शन काफी अच्छी है। अब इस पहले गाने

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जहाँ आपके सारे काफ़ी सारे पैगाम आ रहे हैं कि नाइस सिलेक्शन क्या बात है जहाँ ये 2009 का गाना है इट वॉज फ्रॉम द मूवी वीर और से याद आया कि पुराने गाने जो होते हैं वो एक्चुअली पुराने होते नहीं हम बदल जाते हैं गाना वही रहता है लेकिन जब हम कुछ साल बाद या कुछ बहुत अरसे बाद उससे दोबारा सुनते हैं तो उसका मीनिंग हमारे लिए बदल जाता है पहले जो लाइनें हमें रोमांटिक लगती थी आज फिलोसॉफिकल लगने लगती हैं जो गाना पहले हार्ट ब्रेक के लिए था आज वही हीलिंग बन जाता है दैट्स द मैजिक ऑफ म्यूजिक और इसीलिए कुछ साल बाद अगर कोई रिप्राइज वर्शन आ जाए या फिर कोई रिमिक्स वर्शन आ जाए जो उन मॉडर्न एस्पेक्ट्स को निहारे तो और ही बात हो जाती है Yeah, this is my segue to the next song, which is actually Dil Jhoom. Ab ye gana shayad kuch logon ko pata ho, lekin jinko nahi pata, unke liye bata dun ki

This is one of those reprises that I really love. जो कि है अली जाफर का ओरिजिनल सॉन्ग है अली जाफर का दिल झूम और इसको क्रैक मूवी में विशाल मिश्रा और श्रेया घोषाल की आवाज में फिर से बनाया गया

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जहाँ आपने अभी अभी अपना रेडियो ऑन किया है तो आपको बता दें यू लिसनिंग टू बॉलीवुड सिज़ला ही है रेडियो मस्ती और मैं हूं निखिल और अभी होने वाली है थोड़ी सी वियर्ड बातें वियर्ड इसीलिए क्योंकि ये उस तरह का प्रोग्राम नहीं है बट हियर मी आउट जी हाँ पितृपक्ष का जो वक्त हो रहा है और दिस इज़ द टाइम दैट हम पुरखों को याद करने करने में लग जाते हैं और उनको याद करने का मतलब सिर्फ पीछे मुड़कर देखना नहीं होता कभी कभी इसका मतलब आगे देखना भी होता है देखो हमने जो कुछ पाया है नाम जबान रिवाज जो हुनर कहानियाँ वैल्यूज जो ये पूरा जो अर्थ हमको मिला है उसमें हमसे पहले जीने वाले कितने लोगों का हिस्सा है और पितृपक्ष में हम उसी हिस्से को याद करते हैं और उसके साथ हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम अगले जेनरेशन्स के लिए क्या क्या छोड़कर जा रहे हैं कुछ अच्छी बातें छोड़कर जा रहे हैं या फिर कुछ है जो हमें इम्प्रूव करना है उनके लिए छोड़ना है इसी सोच के साथ ये अगला पेशकश

0: Hollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, ये था खूबसूरत उदित नारायण की खूबसूरत आवाज़ के में आप खूबसूरत लोगों के लिए. एंड दिस गोज आउट स्पेशली टू दोज हु आर स्टिल एट वर्क. जी हाँ, सहा नहीं जाता, आज भी कई लोगों से ये सहा नहीं जाता कि वीकेंड में उनको काम करवाया जाए, फिर संडे नाइट को उनको काम करवाया जाए. लेकिन बहुत बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं ताकि हम और आप आराम कर सकें. या उनके नाम हम करेंगे ये अगला तराना, धुरंधर द रिवेंज मूवी से आखिरी इश्क. मैं

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: Oh, no, that we are in the voice of, in the lovely voice of Atif Aslam from the movie Bol. और म्यूजिक की सबसे ब्यूटीफुल चीज शायद यही है कि इसका कोई फिक्स्ड मीनिंग है ही नहीं. एक ही गाना किसी के लिए लव स्टोरी बन सकता है तो किसी और के लिए हार्ट ब्रेक. एक ही गाना, एक ही प्लेलिस्ट जो है वो किसी को सुला सकता है और किसी को के जागने का जरिया बन सकता है और किसी के लिए बस एक ब्यूटीफुल मेमोरी बनकर रह जाता है एक गाना. और शायद इसीलिए बॉलीवुड म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक का इतना पर्सनल लगता है हमको. आप सुन रहे हैं बॉलीवुड सिलसिला और संडे नाइट अभी लंबी है. नेक्स्ट सॉन्ग रब्बा, मैं तो मर गया हूं.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: और दोस्तों संडे नाइट का ये म्यूजिकल सफर यहीं आकर रुकता है। दो घंटे बहुत सारे गाने, थोड़ी यादें, थोड़ा सा रोमांस, थोड़ी मस्ती और होपफुली कुछ ऐसे गाने जो आप अपने साथ लेकर जाएंगे जरूर। कल फिर मंडे है, फिर वही ट्रैफिक, फिर वही काम, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वही जिम्मेदारियां। लेकिन आज रात एक चीज याद रखेगा, जिंदगी हर वक्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऑर्डिनरी मोमेंट्स को भी ब्यूटीफुल बनाना, ये शायद म्यूजिक का काम है। और जब म्यूजिक ना हो तो आपका काम। इसी के साथ गुड नाइट दोस्तों, टेक केयर, कीप लिसनिंग टू रेडियो मस्ती, और म्यूजिक को लाइव से कभी दूर मत होने देना, ठीक है? अभी के लिए साइनिंग ऑफ, मैं निखिल, ये था बॉलीवुड सिज़ला एंड यू लिसनिंग टू रेडियो मस्ती।

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Masti.
2: नमस्कार, स्वागत आप सभी का लेडीज एंड जेंटलमैन RM2 पर। अब जब धीरे धीरे सन्नाटा छाता जा रहा है, ये समझ में आता जा रहा है कि जो चीज़ें होंगी वो सीधा दिल को महसूस होने वाली हैं, यानी कि म्यूजिक AM to PM हमेशा साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार। मैं विकास और प्रोग्राम है लेट नाइट ग्रूव्स
1: RM2
0: रेडियो मस्ती।
1: फील द मस्ती।

हो सकता है दिन में कुछ ऐसी चीजें हुई जो आपके हिसाब से ना हुई हों, कोई बात नहीं। अरे साहब कल तो फ्रेश मिलेगा ना, फ्रेश बिल्कुल पक्का एक नया पेज। एक बुरे दिन का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा। एक रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप इतने अच्छे नहीं हैं। एक गलती का मतलब ये नहीं कि आप

0: कभी ठीक ही नहीं हो सकते। अरे साहब, कभी कभी लाइफ में स्टॉप करके डायरेक्शन चेंज करने के चांस बहुत मिलते हैं, बस हमें तैयार होना चाहिए। सो आज की रात ब्रीथ कीजिए, रीसेट कीजिए एंड गेट सेट टू बिगिन अगेन।
1: You're listening to RM2, a Radio Mastery.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: आजकल सब कुछ परफेक्ट दिखना चाहिए, कोशिश तो यही रहती है, परफेक्ट करियर, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट होम, परफेक्ट हॉलीडेज। अरे सोशल मीडिया खोलते ही लगता है कि सबकी जिंदगी कितनी सॉर्टेड आउट है ना, और फिर आप कंपेयर करने बैठ जाते हैं। अरे साहब, जिंदगी की जो हाईलाइट रील है ना, वो आप ही की अपनी स्टोरी है। अपनी लाइफ को अपनी स्पीड से जियो, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, रियल होना जरूरी है।

0: कुछ लोग हमारी लाइफ से दूर हो जाते हैं पर दिल से कंप्लीटली कभी दूर नहीं होते। कभी एक सॉन्ग, एक कोई बात, एक जगह और सडनली दे बैक इन योर थॉट्स। अगर आज याद आप किसी को मिस कर रहे हैं तो इट्स ओके, जिंदगी इसी का नाम है। मिसिंग समबडी डजंट मीन कि आप कमजोर हैं, इट सिंपली मींस कि दे मैटर अ लॉट।
1: RM2 Radio Musti. Feel the Musti.

अच्छा, आपने कभी सोचा है कि हम बड़ी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, प्रमोशन हो, नई गाड़ी हो, नया घर हो, ग्रेजुएशन हो, लेकिन लाइफ की छोटी छोटी विक्ट्रीज भी बनती हैं सेलिब्रेट करने लायक। आज किसी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन को हैंडल किया, या फिर वर्कआउट कंप्लीट किया, एक छोटी सी खुशी किसी से मिलने की, डिफिकल्ट टास्क को ख़त्म किया, या सिंपली एक टफ डे सर्वाइव किया। अपने आप को क्रेडिट दीजिए, छोटी जीत भी एक जीत होती है, ये तो मानिए।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: कभी आपको ऐसी सिचुएशन लगी जहां पर आपको मना करना है लेकिन आप सेल्फिश नहीं बनना चाहते? अच्छा, कभी कभी ना अगर आप सोचें तो हर किसी को खुश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तो नहीं, यानी कि अगर आपको लगता है कि अगर आप हाँ करेंगे तो काम ठीक रहेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? अपने आप को प्रूव करना, लेकिन अपने आप को कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब करना, अपना पीस ऑफ माइंड खो देना। तो आज आप सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में वो लाइन कहाँ है जहाँ पर आप नहीं जाना चाहते या फिर किसी को मना करना चाहते हैं। छोटी सी कोशिश तो कर सकते हैं, ऑनेस्ट बनिए, चलिए अपने साथ ही
2: RM2 Radio Masti।

0: अच्छा, फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबकी प्रॉब्लम सुनते हैं, सबको एडवाइस देते हैं, मोटिवेट करते हैं, पर जब उनका खुद का मूड ऑफ होता है तो वो किससे बात करें। इसे जरूरी है आप ये ना सोचें कि नहीं वो तो बहुत स्ट्रांग है। अरे साहब, हो सकता है एक हेल्पिंग हैंड या फिर थोड़ा सा वक्त उनके साथ यही कमाल कर जाए, यही ट्रिक पूरी कर जाए। कभी कभी जैसे आपको किसी जरूरत होती है, उस इंसान को भी आपकी जरूरत हो सकती है। सोचा है कभी?
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

इंसान पैसे के पीछे भागता है। नहीं, पैसे जरूरी हैं, नो डाउट, बिल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्रीम्स हैं, बट एक पॉइंट पर इंसान खुद से पूछता है कि मैं पैसा कमा रहा हूँ बट क्या मैं लाइफ को भी जी रहा हूँ? अगर आपको वक्त नहीं मिलता खाने का, किसी को मैसेज भिजवाने का, किसी को याद करने का, या फिर अपनी ज़िंदगी जीने का, तो सोचिए इस बारे में। बैलेंस ईजी नहीं होता, बट मे बी हैप्पीनेस का मतलब खाली पैसा नहीं है, उसको ज़्यादा मीनिंगफुल मोमेंट्स में बदलिए। और देखिए साहब, ये जो खुशी है ना, दिल की खुशी, उसको आप महसूस कर पाएंगे।

करना दोनों सेम चीज नहीं होती। कभी एक कप चाय, फेवरेट म्यूजिक, डिम लाइट्स और थोड़ा सा साइलेंस, ये एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत है। कभी कभी अपनी कंपनी को भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं दुनिया की नॉइज थोड़ी सी कम इफेक्ट करती है। चलिए साहब, बातों में पहुंच गए हैं एंड ऑफ द प्रोग्राम तक, और यही चाहते हैं कि आप ऐसे ही RM2 रेडियो मस्ती के साथ जुड़े रहें। फिर जल्दी मुलाकात होती है, ध्यान रखिए, नमस्कार।

0: म्यूजिक ऑल डे लॉन्ग रेडियो मस्ती सुनते रहो।
1: चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न।